मीडियम वेव 396.8 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि तदनुसार 3 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
3: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम के आरंभ में देशभक्ति गीत।

ईश्वर पर भक्ति परमात्मा और आत्मा के बीच का वह अटूट और पवित्र प्रेम है जो जीवन से अहंकार को मिटाकर मनुष्य को विनम्रता और आत्मसमर्पण की ओर ले जाता है।

जिसके गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप सत्य हैं, जो केवल चेतन मात्र वस्तु है और जो एक अद्वितीय सर्वशक्तिमान निराकार सर्वत्र व्यापक अनादि और अंत है।

0: ये थी आज की वंदना। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज का चिंतन। आलेख और स्वर है शिव सागर त्रिपाठी का।
1: मानव जीवन के दो पक्ष हैं, बाह्य और आंतरिक। जीवन का बाह्य पक्ष जड़वादी पदार्थों का समन्वय है। वैज्ञानिक बाह्य पक्ष पदार्थों पर अनुसंधान प्रयोग कर सत्य का अन्वेषण करते हैं और इस सत्य को ही जीवन का सत्य मान लेते हैं। मानव के बाह्य पक्ष का विकास प्रकाश इसी सत्य पर आधारित है। मानव का आंतरिक पक्ष भाव संवेदना विचार नैतिकता व आध्यात्मिक जीवन मूल्यों का है, जिस पर ऋषि मुनि अपने ही शरीर को प्रयोगशाला बनाकर अनुसंधान व प्रयोग कर सत्य का अन्वेषण करते हैं। बाह्य पक्ष के सत्य में सुख विलास प्रगति तो है, पर शांति और आनंद नहीं है। शांति और आनंद मानवीय मूल्यों का उत्कर्ष तो आंतरिक सत्य में है। मानव की संपूर्णता उसके दोनों सत्यों का समन्वय ही है। वैज्ञानिक प्रतिभा और संत संवेदना का कुशल समायोजन ही वैज्ञानिक अध्यात्म है। सत्यान्वेषी संवेदनशील रहना वैज्ञानिक अध्यात्म का उद्देश्य है। वैज्ञानिक अध्यात्म को दो भागों में बांटा जा सकता है, वैज्ञानिक जीवन दृष्टि और वैज्ञानिक जीवन मूल्य। वैज्ञानिक जीवन दृष्टि में तर्कसंगत औचित्यनिष्ठ और उद्देश्यपूर्ण व सत्यान्वेषी भावों की ही मान्यता है। यहाँ प्रायोगिक क्रियाओं के परिणाम ही प्रामाणिक माने जाते हैं। वैज्ञानिक जीवन दृष्टि में पूर्वग्रहों मूढ़ताओं अंधविश्वासों भ्रामक मान्यताओं की कोई मान्यता नहीं होती है, केवल सत्य का ही महत्व होता है। वैज्ञानिक जीवन मूल्य में परिष्कृत संवेदनाओं का महत्व है। परिष्कृत संवेदनाएं ही समस्त आप गुणों का विकास होता है। सत्य की परिष्कृत संवेदना है, अध्यात्म संवेदनाओं का ही परिष्कार है। परिष्कृत संवेदना ही सत्य है, यहीं पर परमेश्वर का वास है। ईश्वर कोई विश्वास की वस्तु नहीं, बल्कि वो तो अध्यात्म के वैज्ञानिक प्रयोगों से प्राप्त होने वाली एक विशिष्ट अनुभूति है। जिस विज्ञान में प्रकृति की शक्ति और ईश्वर के सत्य की अभिव्यक्ति होती है, विज्ञान को आध्यात्मिक संवेदनाओं से स्पंदित होना चाहिए। मानव को अपनी संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए अध्यात्म ज्ञान और वैज्ञानिक कर्म के समन्वय की आवश्यकता है। वैज्ञानिक कर्मों से समृद्धि की लक्ष्मी तभी मुस्कराएगी जब आध्यात्मिक ज्ञान की गायत्री मुस्कराएगी। भगवान गौतम बुद्ध के शब्दों में, अध्यात्म विज्ञान के प्रयोग जीवन की प्रयोगशाला में करने होते हैं। दीर्घ काल तक निरंतर प्रयोग और इसके नियमित परीक्षणों से ऐसे सुनिश्चित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं जिनसे मानव जीवन के सभी दुखों को सदा के लिए निराकरण हो जाता है। वैज्ञानिक बिजामिन पियरे ने कहा है कि हाथों का उपयोग लौकिक कार्यों के लिए व मस्तिष्क का उपयोग दैवी विचारों के लिए करना चाहिए। वैज्ञानिक राजा रमन्ना भारत परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार थे, वेदांत दर्शन के मर्मज्ञ मनीषी व महान संगीतज्ञ थे। आप वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ नियमित आध्यात्मिक साधना करते थे। इसी प्रकार

0: डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा महान वैज्ञानिक ही नहीं, एक आध्यात्मिक मनीषी भी थे। उनके शब्दों में, विज्ञान जगत के लिए आवश्यक है कर्मशील सिद्धांत। धर्म व अध्यात्म दोनों में वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोग का क्रम समाविष्ट होना चाहिए। वैज्ञानिक अध्यात्म को राष्ट्रीय धर्म के रूप में अपनाना चाहिए। धर्म और विज्ञान दोनों का लक्ष्य सत्य और मानव कल्याण है। वैज्ञानिक अध्यात्म के प्रयोग और अनुसंधान समाज में आध्यात्मिक मानवतावाद की प्रतिष्ठा करते हैं। वैज्ञानिक प्रतिभा ऋषि संवेदना का समायोजन ही वैज्ञानिक अध्यात्म है। धर्म और विज्ञान में कोई विरोध नहीं है, दोनों ही सत्य मानव कल्याण पर बल देते हैं। कृष्ण जीवन विज्ञान के महान वैज्ञानिक थे। भारत ने विश्व को धर्म और विज्ञान का मानवतावादी संदेश दिया है।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। आलेख और स्वर था शिव सागर त्रिपाठी का। मीडियम वेब पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का गायन। स्वर है अनुराधा पौडवाल का। संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया।

आज प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का समापन प्रकरण, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास की विनय और रामायण के पारायण की फलस्तुति की गई है। भक्त कवि का कहना है कि इस कलिकाल में श्री राम स्मरण के अतिरिक्त योग, जप, तप, व्रत, पूजा आदि कोई भी दूसरा साधन नहीं है। स्वयं को संबोधित करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, हे मेरे मन, पतित पावन श्री राम का भजन कर किसने सदगति नहीं पाई। जो मनुष्य रघुकुल शिरोमणि का चरित गाते और सुनते हैं, उनके समस्त पाप और मन का मैल बिना परिश्रम के धुल जाते हैं, उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। जो रामायण की 5-7 मनोहारी चौपाइयों का अर्थ समझकर हृदय में धारण कर लेते हैं, उनका 5-5 प्रकार की अविद्या का अंधकार अर्थात अज्ञान श्री राम कृपा से मिट जाता है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंदबुद्धि तुलसीदास ने परम शांति पाई, उन श्री राम के समान कृपालु अन्य कोई नहीं। हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है, न ही आपके समान कोई दीन बंधु। ऐसा जानकर हे रघुवंश भूषण, आवागमन के मेरे भयानक दुख का हरण कीजिए। श्री रामचरितमानस पुण्य रूप, पापों का हरण करने वाला, कल्याणकारी, विज्ञान और भक्तिदायक है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन, स्वर था अनुराधा पौडवाल का, संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चुगोट।
1: खेतियार दादा भाई मन, आपन मन आप लोग बेड़ा नहाले बाड़ी मन ने कई प्रकार जो साग भाजी जो कमानी कर सास दखा असनी हमी आप लोग रोज दिन जो साग दार रान तो थाने गोंदरी हरदी अदरक और लहसुन के काम ने आनुसे ये जिनिस मन मसाला जो काम कर सोत साग दार नगत स्वाद लागो ये चुका जी हमी असन अदरक नहा लहसुन के लगाऊ से असनी लहसुन नहालो कहीं बल्ले साग पान नगत नी लागे आमट हो नहाले फिर लहसुन से चटनी हो नहाले दार भका थोड़ा लहसुन लागे से तखा असनी हम चो मछली नहाले मांस साग कच बल्ले असन लहसुन लागे से तो सपा ठाने लहसुन लाग तो काम होई से और हम चो जोन खोजा करी दादा भाई मात ये के औषधि मानसोत लहसुन ले कितर प्रकार चो दवाई बल बने से अपन मन जान सास की गाँव बाटे नन्नी पीला मन की लहसुन चो केरी चो माला बले पिंधान टोटा ने और बात ये चोले पिलामन चो जोड़ खोकली मन ने औषधि रूप ने काम ऐसी खेतियार दादा भाई मन आपन मन असन लहसुन चो कमानी कर सास्तो सबले नगत हो से लहसुन चो कमानी कर तो फसल ने बले कई प्रकार चो रोग रही झपसो हम के असन रोग के चितान भाती दवाई लगा लो ने हम चो लहसुन फसल के बचा सकू लहसुन फसल ने असनी दखा गोटोक मुख्य रोग हो सी ये के बलसोत थ्रिप्स ये गोटोक कीड़ी लहसुन चो पाना मन चो रस के चो खून बाती जे चो लेका पाना कमजोर हो से ये कीड़ी चोक जोन लगे चूक से हुन लगे पंडरी रंग चो पाना ऊपर गोल छापा दखा जगवाए जे चोले पाना पाछे आपने टूटते जाए से ये कीड़ी ले लहसुन के बचा का जे मोनोक्रोटोफास 1 मिलीलीटर के पानी ने मिसान छिस्तुराए जे चोले ये कीड़ी आपने घुस दे असनी दखा गोटोक लहसुन ने जुगी होतु बीती रोग हो से जे के बलसोत माइट ये रोग ने बल्ले कीड़ी पाना के नुकसान अमरासोत जे चोले पाना हरदिया रंग लिपाचे दखा हरदी रंग होन बाती आपने मोड़ी हुआ है ये कीड़े ले बचाव कर तो काजे घोल तो बीती गंधक 2 किलोग्राम बल्ले ने 2.5 एकड़ हिसाब ने नहाले फिर पेराथियोन 50 ईसी 500 मिलीलीटर के 2.5 एकड़ हिसाब ने छिड़काव कर लो ने अच्छा नगद लाभ हो इसे खेतियार दादा भाई मन असनी लहसुन के खोल लो पाछे कोनी ठान ने संगालो पाछे बोले रोग धरे से ये के बोले हम के जानतो रहे गोटो कसनी रोग हो से ये के बोलसोत भंडारण कीट असन रोग ने लहसुन के कीड़ी मन संगालो ठान ने खावन भाती नुकसान हमरास होत ये चोले बचाव काजे 1 ले 4 गोली फास्फिन प्रति घन मीटर चो हिसाब ने छिस्तो राय असन कर लो ने ये कीड़ी लहसुन के खाऊक नहीं सको तौर आपने गुचुआत असने कोटोक रोग हो से ये के बल सोत तुला सीता ये के चिंतो का जे दखा लहसुन चो पाना ने आपने कहा कि कुमटा धरुआ है और पंडरी चिन्हा मन बनाते जाए से पंडरी चिन्हा पाचे दखा बांगा फर असन रंग ने आपने फिर बदले से ये रोग के लिए हम के दखा बचाव करते हुआ जी मेनको जेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी ने मिशन भाती छिछलों ने ये रोग बोले गुचुआ है खेतियार दादा भाई मन असनी अपन मन लहसुन फसल कमानी कर तो पहल खिंडी का ध्यान दिया अक्टूबर नवंबर माह ने रोप लो जोन लहसुन हो से हुन फसल चो खोड़े की हामी मार्च नाल अप्रैल ने करतो राय लहसुन फसल तैयार हो तो समय ने पाना मन आपने हरदी रंग चो दखा जाए से और पाना मन बले आपने मुरस्ते जगवाई ये चोले हम के जानतो राय की लहसुन चो फसल तैयार होली तैयार होलो लहसुन चो कांदा के हिसाब ले खोड़क तराय और पाना मन के गुचान भाती घाम ने सुखातो रहे लहसुन चो कांदा के खुड़क तो समय गोटोक बात के जुगे हम के ध्यान देते रहे कि कांदा चूपरे गुड़ पातर असन झीली असन रुवाई ये के नुकसान नियम रू खेतिया दादा भाई मन असन रोग राई और खिंडी का नगद ध्यान ले कमानी कर लेन दखा हम की ये लहसुन चटनी का जी हो नाले साग का जी हो हम के मेरे से।
0: अभी आप सुन रहे थे कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुगोट। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:40 हुए हैं। हुलहुली कार्यक्रम में लीजिए सुनिए माउली माता पाड़। वादक कलाकार हैं पाखलू और साथी।

हुलहुली कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मावली माथापाड़। वादक कलाकार थे पाकलू और साथी। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। दोपहर 3 बजे विविध भारती के कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 9:55 और सुबह 11:55 पर प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर हम पेश करेंगे दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। आज के आकर्षण होंगे स्वास्थ्य की बातें कार्यक्रम में सुनिएगा सोशल मीडिया की काल्पनिक दुनिया का बच्चों पर प्रभाव विषय पर डॉक्टर ओपी रायचंदानी से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता होंगे दिनेश नामदेव। हल्बी समाचार बुलेटिन साथ ही फिल्मी गीतों की मधुरिमा। सुबह 8:30 पर सुनिएगा विभिन्न बोलियों में लोकगीत कार्यक्रम होगा लोकमंजरी। सुबह 9 बजे सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं आज की फिल्म है लव इन टोकियो। गुलशन कार्यक्रम में सुबह 10 बजे सुनिएगा शीर्षक फिल्मी गीत। आज का शीर्षक होगा इंतजार। गुरुदुम कार्यक्रम में सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे भत्रु कश्यप और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं आज का कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्माता निर्देशक महेश भट्ट पर। विभिन्न बोलियों के लोकगीत सुनिएगा सबरस कार्यक्रम में। प्रसारण समय सुबह 11:30। झुमझुमा कार्यक्रम में दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे बुदरी और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार सुनिएगा दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:10 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन कला और कलाकार। इस कार्यक्रम का प्रसारण समय दोपहर 2:30। सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आप सुनेंगे देशभक्ति गीत समूह स्वर में। युवाणी शाम 5:10 पर। गोंडी समाचार बुलेटिन शाम 6:30 पर। शाम 7 बजे होगा कार्यक्रम बस्तर के स्वर। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आम चौगांव सुनिएगा शाम 7:21 पर। रात्रि 8 बजे कुड़ई फूल कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कार्तिक बघेल और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। पीला मन का जिगोट हल्बी बोली में रात्रि 8:30 पर। प्रस्तुति होगी उर्वशी पानीग्राही की। 9:15 पर हम पेश करेंगे पुरानी फिल्मों से। रात्रि 9:30 पर होगा कार्यक्रम उवाट। इसमें आप सुनेंगे श्रम विभाग की योजनाएं विषय पर यशपाल सिंह ठाकुर से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता होंगे बलबीर सिंह कच्छ। रात्रि 10 बजे सुनिएगा कार्यक्रम परिचर्चा। विषय होगा विवाह संस्कार की परंपरा। प्रतिभागी होंगे सुमारू राम कौशिक और मंधर राम नाग। कार्यक्रम का संपादन होगा बलबीर सिंह कच्छ का। रात्रि 10:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का

ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार क्रमशः संस्कृत और फिर हिंदी में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। अथ वार्ताः। प्रशासनेन सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा ओएसएम इत्येतस्याः आंकिकीय मूल्यांकन प्रणाल्याः सेवानुबंध संबद्ध विषयाणां परीक्षणार्थं एक सदस्यीय समितिः संघटिता। समितेः अध्यक्षा क्षमता निर्माणायोगस्य अध्यक्ष पदारूढा एस राधाचौहानः भविष्यति। समितिः मासाभ्यन्तरे अन्तः कार्मिक प्रशिक्षण विभागाय स्वप्रतिवेदनं प्रस्तोष्यति। अत्रान्तरे परिषदा गतवासरे द्वादश कक्षायाः छात्राणाम् अंक सत्यापनार्थम् उत्तरपुस्तिकानां पुनर्मूल्यांकनार्थं च अन्तर्जालपटलम् आधिकारिकरूपेण सक्रियं कृतम्। अस्माकं वार्ताहरः अवदत् यत् एषा सुविधा तेभ्यः एव छात्रेभ्यः उपलब्धा अस्ति ये खलु स्वमूल्यांकितानां उत्तरपत्राणां स्कैन इत्येताः प्रतिलिपयः प्राप्तवन्तः। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया उक्तं यत् शिक्षा शक्तिकरणस्य महत्वपूर्ण साधनं वर्तते। शिक्षा एव जनान् आत्मनिर्भरान् जागरूकान् क्षमांश्च कारयति। गतवासरे नवदिल्ल्यां सा जनजातीय छात्रवृत्ति लाभार्थिनः सम्बोधयति स्म। अस्मिन् अवसरे सा उक्तवती यत् वास्तविकः विकासः तदा एव भविष्यति यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकार्थिक शैक्षिक रूपेण विकसिताः भविष्यन्ति। सा उक्तवती यत् सर्वकारस्य छात्रवृत्ति योजनया जनजातिवर्गेभ्यः उच्चशिक्षायाः अवसराणां प्रदानेन तेषां जीवनं परिवर्तितम्। द्रौपदी मुर्मू वर्या अवदत् यत् भारते प्रतिभासम्पन्नानां छात्राणां न्यूनता नास्ति, अपितु तेषाम् अभिज्ञानं पोषणं तेभ्यः उचित मार्गदर्शनं च आवश्यकं वर्तते।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपने जोड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः गतवासरे सर्वोच्च न्यायालयस्य पञ्च न्यायाधीशेभ्यः पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्। न्यायमूर्तिः शीलनागो, श्रीचन्द्रशेखरः, संजीव सचदेवा, अरुणपल्ली, वरिष्ठाधिवक्त्री वी मोहना च सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशत्वेन शपथवचनं स्वीकृतवन्तः। अवधेयं यत् केन्द्रेण सर्वोच्च न्यायालयीय न्यायविद समितेः अनुशंसाम् आलक्ष्य एव एतेषां नियुक्ति विषयणे स्वीकृतिः दत्ता। राष्ट्रिय पञ्चायत पुरस्कार समारोहः अद्य नवदिल्ल्याम् आयोजयिष्यते। एते पुरस्काराः देशस्य द्विचत्वारिंशत् संख्याकेभ्यः उत्कृष्ट पञ्चायतेभ्यः प्रदास्यन्ते। समारोहावसरे दीनदयालोपाध्याय पञ्चायत सतत विकास पुरस्कारः इत्यस्यां श्रेण्यां चतुस्त्रिंशत् ग्राम पञ्चायतेभ्यः, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पञ्चायत सतत विकास पुरस्कार श्रेण्यां च अष्ट पञ्चायतेभ्यः पुरस्काराः प्रदास्यन्ते। भारतीयर्थ विभागेन सूचितं यत् अद्य कर्णाटकस्य आभ्यन्तरीणेषु भागेषु, केरल माहे लक्षद्वीप तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु च तीव्रवृष्टिः भविष्यति। आगामी दिवसद्वय पर्यन्तं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमोत्तर प्रदेशेषु तीव्र झंझावातेन सह गर्जनस्य तडितपातस्य च संभावना वर्तते। अन्ते क्रीडा वार्तासु। महिलानां अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडा मालिकायां गतरात्रौ इंग्लैंड देशस्य टाउनटन नगरे काउंटी क्रीडांगणे आयोजिते तृतीये अन्तिमे च द्वन्द्वे इंग्लैंडेन भारतं षड्भिः क्रीडकैः पराजितम्। इत्थम् इंग्लैंडेन 2-1 इत्येतेन स्पर्धान्तरालेन श्रृंखला जिता। इति वार्ताः।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इस यात्रा से भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने असम के मूगा रेशम के लिए मिशन स्नेहजोरी का शुभारंभ किया। ये पहल असम के विशिष्ट मूगा रेशम उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सूरत के बारडोली कस्बे के पास कल महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन की 2 बसों की टक्कर में 8 लोगों की मौत और 15 से अधिक लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अध्यक्ष निर्वाचित होने पर डॉक्टर खलीलुर रहमान को बधाई दी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉक्टर रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। पेश है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को शिबा सिंह का स्नेहिल अभिवादन।

नमस्कार। जगदलपुर कार्यक्रमों में आज है आपके लिए स्वास्थ्य की बातें कार्यक्रम के तहत भेंटवार्ता, हल्बी समाचार बुलेटिन, साथ ही फिल्मी गीतों की मधुरिमा।

टुक नींद से अखियां खोल जरा, पल अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करण की रीत नहीं, जग जागत है तू सोवत है। तू जाग जगत की देख उड़न, जग जागा तेरे बंद नयन। यह जन जागृति की बेला है, तू नींद की गठरी ढोवत है। लड़ना वीरों का पेशा है, इसमें कुछ भी न अंदेशा है। तू किस गफलत में पड़ा पड़ा, आलस में जीवन खोवत है। है आजादी ही लक्ष्य तेरा, उसमें अब देर लगाना जरा। जब सारी दुनिया जाग उठी, तू सिर खुजलावत सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जी हाँ श्रोताओं, बंशीधर शुक्ल की इन लाइनों के साथ आइए शुरुआत करें नमस्कार जगदलपुर कार्यक्रम की। जैसा कि आप जानते हैं, आज है श्रोताओं 3 जून, और आज के इस दिन को हम मनाते हैं। और हर साल 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। यह दिन हर साल 3 जून को मनाया जाता है। इसे 2018 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य साइकिल को पर्यावरण के अनुकूल, टिकाऊ और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक परिवहन साधन के रूप में बढ़ावा देना है। विश्व साइकिल दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, लोगों को साइकिल के लाभों के प्रति जागरूक करना और इसे परिवहन के एक सरल, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल साधन के रूप में बढ़ावा देना है। यदि हम विश्व साइकिल दिवस का इतिहास जानें, तो इतिहास कुछ ये बताता है। विश्व साइकिल दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अप्रैल 2018 में सरकार की पहल पर घोषित किया गया था। इस विचार को सबसे पहले अमेरिका के मॉन्टगोगरी कॉलेज के प्रोफेसर लेजेस्के सिब्लिस ने यह एक याचिका के तौर पर रखा था। विश्व साइकिल दिवस मनाने का महत्व जो है, वो इस प्रकार से है कि विश्व साइकिल दिवस साइकिल के महत्व पर प्रकाश डालता है, जो न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि ये पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। श्रोताओं, यदि हम देखें तो साइकिल चलाने के हमारे जीवन में कई लाभ हैं। नियमित साइकिल चलाने से हृदय, फेफड़े और मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद मिलती है, जिससे हृदय संबंधी बीमारियों जैसे कि मोटापा, मधुमेह और गठिया जैसी कई बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। साइकिलिंग तनाव कम करने और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने में भी सहायक है। साइकिल एक शून्य उत्सर्जन परिवहन साधन है, जो वायु प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण को बचाने में मदद करता है। श्रोताओं, साइकिल ये जो है, यह परिवहन का एक सस्ता और सुलभ साधन है, जिसे हर वर्ग के लोग आसानी से उपयोग कर सकते हैं। साइकिल चलाना सामाजिक समावेशन और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देता है। श्रोताओं, ये थी एक आपसे छोटी सी चर्चा विश्व साइकिल दिवस पर। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में, जिसे हमने लिया है फिल्म अनाड़ी से।

0: तो श्रोताओं, आप भी साइकिल चलाएं और साइकिल चलाते हुए अपने जीवन में निरोग रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जगदलपुर AIR से जुड़े रहें और AIR जगदलपुर के कार्यक्रमों का मजा लेते रहें।
1: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
2: पवन के ठंडे झोंके के साथ
1: हिलोरे लेगी
2: आकाश की वाणी।
1: आकाशवाणी
3: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर
1: या फोन करें 222150 या 222400
2: 222150 या 222400।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
6: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
7: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
6: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
8: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 15102।
0: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। श्रोताओं, कार्यक्रम के क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य की बातें। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सोशल मीडिया की काल्पनिक दुनिया का बच्चों पर प्रभाव विषय पर डॉक्टर OP रायचंदानी से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता है दिनेश नामदेव।

0: श्रोताओं, पिछले कई दिनों से आप समाचार माध्यमों में ऐसी घटनाएं पढ़कर चिंतित होते रहे होंगे जिनमें बताया जाता रहा है कि अमुक अमुक गेम के प्रभाव में आकर छोटे छोटे बच्चे अब खुदकुशी करने लगे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हम अपने बच्चों को कैसा माहौल दे रहे हैं? दूसरी बात ये कि आखिर हमारे बच्चे या युवा या किशोर इन काल्पनिक दुनिया की बातों को इतना प्रभावी या वास्तविक क्यों मानने लगे हैं? ये बहुत ही चिंता का विषय है, हमारे और आपके लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए। तो बच्चे आजकल ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये इस तरह के गेम या दूसरी चीजें जो डिजिटल होती हैं, जो मोबाइल पर होती हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से होती हैं, वो बच्चों पर इतना प्रभाव क्यों डाल रही हैं? इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के मानसिक रोग विभाग के सह प्राध्यापक डॉक्टर ओपी रायचंदानी। डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्ते।
0: जैसा कि मैंने कहा कि आजकल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, किशोरों की तो बात ही छोड़ दीजिए, वे एक गेम जिसे को ब्लू व्हेल एक नाम है इस गेम का, ऐसे ना जाने कितने गेम होंगे जिनके प्रभाव में आकर घातक कदम उठाने लगे।

0: के बारे में किसी को पता न चले, इतना अकेला कर दिया जाता है ऐसे गेम के माध्यम से, और पूरी तरीके से हिप्नोटाइज किया जाता है व्यक्ति को। आप एक तरीके से उनके माइंड को कैच करते हुए उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और फिर मतलब इसके लेवल्स होते हैं गेम्स में, और हर एक लेवल के बाद आप उनके और काबू में आते जाते हैं, और फिर वहां से बच के आ पाना और बीच में छोड़ पाना ऐसे व्यक्तियों को बहुत ही मुश्किल लगता है। ऐसे लगता है उनकी जान को या उनके परिवार वालों की जान को खतरा है, तो वो विवश होते हुए एडिक्शन जैसा ये गेम को कंप्लीट करना चाहते हैं।
1: जी, ऐसा क्यों होता है डॉक्टर साहब? बच्चे उस ओर क्यों भाग रहे हैं, युवा उस ओर आकर्षित क्यों हो रहे हैं?
0: जैसे एक तो बच्चे के हाथ में अगर शुरुआत से ही मोबाइल दिया गया है तो अपनी जागरूकता को देखते हुए वो धीरे धीरे गेम में इन्वॉल्व होता है, और बच्चे क्यूरियस होते हैं तो उसको टास्क को कंप्लीट करना चाहते हैं। एक रीजन हो गया कि आपने कम उम्र में ही अत्यधिक मोबाइल या इंटरनेट की परमिशन अपने बच्चे को दे दी है, सबसे पहला कारण तो यही होगा। दूसरा कारण है कि ऐसे बच्चे को अगर वास्तव में कोई डिप्रेशन है या कोई उदासी है या किसी प्रकार का एडिक्शन है या कोई मान लीजिए ब्रेकअप हुआ है और उस ब्रेकअप को हटाते हुए इस तरीके के ग्रुप में आना चाह रहे हैं तो वो इसमें लिप्त होते जाते हैं।
1: जी जी,
0: मतलब दो ही कारण प्रमुख हुए। पहला, या तो आप अत्यधिक इसका यूज कर रहे हैं खुद से ही शुरुआत से ही हमेशा से, और दूसरा अचानक आपके लाइफ में कोई इवेंट आया है, या तो आप उदास हैं, या तो आप पढ़ाई से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, या तो कोई ब्रेकअप हुआ है। इन सब कारणों से भी बच्चा इस तरीके से एक काल्पनिक दुनिया में इन्वॉल्व होता जाता है।
1: डॉक्टर साहब, उसमें कहीं ना कहीं हम और आप दोषी हैं कि हम अपने बच्चों को अकेला छोड़ रहे हैं, या सामाजिक परिस्थितियां या पारिवारिक परिस्थितियां भी इसके लिए जिम्मेदार हैं?
0: हाँ, पेरेंट्स का जो सबसे ज्यादा काम है वो बच्चों के प्रति टाइम देना और उनके प्रति विजिलेंट रहना है। अगर बच्चा हमारा मोबाइल में खेल रहा है या हमने दिया है तो हमारा कर्तव्य है कि हम देखें कि वो किस किस साइट्स पे जा रहा है या कितना यूज कर रहा है। अव्वल तो 10वीं 11वीं के पहले तो कोई मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। दूसरा, अगर आप दे भी रहे हैं मोबाइल, आपको कनेक्ट होना है बच्चों से, तो ऐसा मोबाइल दें जिसमें स्मार्टफोन के फीचर्स ना हो, जिसमें कि आप उनसे एटलीस्ट कनेक्ट हो पाए, कॉल कर पाए। ऐसा 11वीं 12वीं के बाद ही आप, जितनी लेट आप मोबाइल देंगे बच्चे को, जितनी देर से, जितनी ज्यादा आयु में देंगे, उतना उसके दुष्परिणाम समझने की क्षमता उसमें आ जाएगी।
1: डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी आदतें या ऐसे कौन से लक्षण हैं जो हमें ये समझने में मदद करें कि हमारा बच्चा कहीं गलत दिशा की ओर जा रहा है?
0: सबसे पहला तो वो आपसे कट ऑफ होता जाएगा ना। जैसे मान लीजिए कि परिवार के कुछ नियम होते हैं कि एक टाइम खाना साथ में खाएंगे या दो टाइम खाएंगे, बच्चा डाइनिंग टेबल से विड्रॉ करने लगे, बोले मुझे रूम में ही खाना दे दो, और बातचीत का जो कम्युनिकेशन है घर वालों से कम होता जाए, ऐसे देखने में आए कि वो सोता नहीं है, देर रात तक जगता है, फिर अगर नींद पूरी नहीं तो देर तक सोता है। आजकल की जनरेशन ये नियम बनाए हुए हैं कि 2-3 बजे तक कंप्यूटर पे करते रहेंगे और फिर लेट लेट उठते हैं। कभी कभी अगर आपको लग रहा है कि बाथरूम में, या मतलब वो प्राइवेसी ज्यादा चाह रहा है, मतलब जितना पहले कम्युनिकेशन था, कनेक्शन था,
1: मिलजुल कर रहता था,
0: हाँ, वो सब कम होता जा रहा है। अब ऐसे लग रहा है जैसे वो प्राइवेट होता जा रहा है, वो कोई बातें शेयर नहीं कर रहा है, उसके चेहरे में डर है, हवाइयां उड़ी हुई हैं, और इवन उसके दोस्तों से भी हो सकता है वो कट ऑफ होता
1: जाए, कम बातचीत करता।
0: क्योंकि कई बार दोस्त आपको इन सब चीजों से निकालने में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। हमारे कुछ केसेस जो हमने अभी रिसेंटली देखे उसमें यही देखा गया कि परिवार वालों का ये कहना था कि मोबाइल के बिना बिल्कुल मचलता है, जैसे एक एडिक्शन होता है ना, मान लीजिए घर वालों को लग रहा है कि मोबाइल का इस्तेमाल वो ज्यादा कर रहा है, वो घर वालों ने ऐसे ही छुपा दिया तो उसमें जो उसका जो विचलन है, जो उसकी तड़प है, जो उसकी पीड़ा है, वो देखते बनती है कि इतना विड्रॉल्स कैसे आ सकते हैं किसी को मोबाइल।
1: डॉक्टर साहब, इस सब के लिए कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं।
0: हाँ जी,
1: जो बच्चे को खुश रखने के लिए मोबाइल फोन देते हैं, स्मार्टफोन देते हैं।
0: बिल्कुल
1: डॉक्टर साहब, इसके अलावा क्या ड्रग एडिक्शन की, जो बच्चे ड्रग्स लेने लगते हैं, क्या उनके कारण भी यही होते हैं?
0: ड्रग्स के कारण भी हैं, कोई भी एडिक्शन देख लीजिए, आप कोई भी एडिक्शन देख लीजिए, उसमें अगर कम उम्र में चालू हो रहा है तो उसके पीछे घर वालों का सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं कि हम अपने बच्चे पे कितना विजिलेंट हैं। दूसरा, दोस्तों और इनका तो असर आता ही है, जैसे आप किसी स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, वहां पे नयापन आता है, इसको ट्राई करने की ललक होती है, कोई जिज्ञासा रहती है। लेकिन अगर हम लोग विजिलेंट हैं, पेरेंट्स अगर विजिलेंट हैं,

0: पर वो हर लेवल पे बच्चे के साथ है, तो इस इन सब चीजों में बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने में आते हैं।
1: डॉक्टर साहब, इसके कुछ जो लक्षण बताए तो हम कह सकते हैं इससे बचने का पहला उपाय तो यही है जो आपने बताया, हम उन पर ध्यान दें, उन्हें अपने साथ रखें, बहुत ज्यादा एकांत में ना रहने दें, और यदि कुछ लक्षण देखें ऐसे हवाइयां उड़ रही हैं, डरे हुए हैं, तो उनसे बात करें, उनकी काउंसलिंग करें। लेकिन इन सब के बाद भी यदि हमें ऐसा लगता है कि बच्चा सुधर नहीं रहा है, उसमें अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है, तो क्या इसकी कोई दवाइयां या ऐसा कोई उपचार है?
0: जैसे इसको हम एडिक्शन के तौर पे अगर देखें या डिप्रेशन के तौर पे देखें या साइकोसिस देखें, इन तीनों के ही उपचार संभव हैं दवाई, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी के माध्यम से। अगर बच्चे में बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स हैं तो भर्ती करके भी आप रिहैबिलिटेट कर सकते हो किसी बच्चे को।
1: जी जी।
0: तीन चार केसेस हमने अभी ऐसे देखे हैं जो इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि अगर हमने टास्क पूरे नहीं किए हैं
1: तो हम मर जाएंगे
0: और उस टास्क को पूरा करने के लिए वो घर से भागने के लिए भी तैयार रहते हैं और अपना मोबाइल छुड़ाने के लिए, जैसे घर वालों ने छुपा दिया है मोबाइल, उसको छुड़ाने के लिए वो वायलेंट भी हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको वाकई एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत रहेगी और ये बहुत ही ट्रिकी काम रहेगा ऐसे बच्चों को इस तरीके के चीजों से निकालना, क्योंकि तो वो उसके काबू में रहते हैं, हिप्नोटाइज रहते हैं।
1: जी, तो ये पहला उपाय आपने बताया चिकित्सा के रूप में।
0: जी,
1: दूसरा?
0: दूसरा आगे के लिए रोकथाम, जैसे जो आज एक बार किसी ने गलती की है या बीमार हुआ है, ऐसे बहुत ही स्ट्रांग चांसेस हैं कि आगे के फ्यूचर में भी जब कभी भी उसके पास स्ट्रेस रहेगी, अकेलापन रहेगा या फिर उदासी रहेगी या फेल्यूर रहेगा लाइफ में, तो इस तरीके से स्यूडो कल्चर में, स्यूडो ग्रुप्स में जुड़ने के स्ट्रांग संभावना रहती है। और ऐसे ग्रुप में नेगेटिव कमेंट्स बहुत होते हैं। मतलब कई बार हमने देखा ऐसे ग्रुप का नाम ही ऐसे रहते हैं कि आई हेट ग्रुप, कम्प्लीटली नो मोर ग्रुप, इस तरीके के नाम भी दिए जाते हैं। तो हम लोगों को यही लगता है कि आप फ्यूचर में भी इस तरीके से निराशावादी ग्रुप में कभी जिंदगी में न शामिल हो। हम लोग डे टू डे लाइफ में भी बोलते हैं ना, जो आपके आसपास नेगेटिव एनवायरमेंट है उसको दूर करो, आप सकारात्मक लोगों के साथ जुड़े और इसी तरीके से इसका बचाव किया जा सकता है।
1: तीसरा आपने बताया था कि तीन बातें बताई थी आपने,
0: मेनली दवाइयां, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और सपोर्ट सिस्टम का एक्टिव होना।
1: जी, जी,
0: हमारा सपोर्ट सिस्टम, हमारा परिवार है,
1: जी, जी,
0: हमारे अच्छे मित्र हैं, इन सबके साथ टच में रहना जरूरी है।
1: डॉक्टर साहब, बच्चे जहां पढ़ते हैं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, शैक्षिक संस्थाएं हैं, क्या वहां पर भी कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं?
0: जैसे आजकल स्कूल में काउंसलर्स होते हैं,
1: जी,
0: तो सबसे पहला कनेक्शन बच्चे का काउंसलर के साथ थेरेपी के लिए किया जाता है।
1: जी, जी।
0: नहीं तो टीचर्स भी रोल मॉडल का रोल प्ले करते हैं।
1: जी, जी।
0: अगर कोई बच्चा टीचर से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है तो टीचर से भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है।
1: जी, जी। तो डॉक्टर साहब, आज आपने बच्चों की नकारात्मक मानसिकता के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, और ये हमारा कर्तव्य है कि बच्चों को एक तिलस्मी दुनिया में हम ना जाने दें, उनकी जो नकारात्मक सोच है उसको सकारात्मक सोच में बदलें। हमें विश्वास है कि आपकी बातों को हमारे सुनने वालों ने सुना होगा और वे अपने बच्चों पर पर्याप्त ध्यान रखेंगे, और यदि कोई ऐसी बात है, वे समझते हैं कि उन्हें खतरा है या उनके बच्चे इस दिशा में जा रहे हैं, तो वे उपाय जरूर अपनाएंगे जो आपने बताए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सोशल मीडिया की काल्पनिक दुनिया का बच्चों पर प्रभाव विषय पर डॉक्टर ओपी रायचंदानी से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता थे दिनेश नामदेव।
3: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
4: GST से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई GST नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह GST छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
6: 870-001-4242।
2: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। अब सुनिए हल्बी समाचार बुलेटिन।
7: आकाशवाणी जगदलपुर आए हल्बी समाचार बुलेटिन संगे मैं माधुरी यादव। आज जो मुख्य खबर, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश ले राष्ट्रव्यापी खेत बचाव अभियान के मूर करला। छत्तीसगढ़ ने बोले ये अभियान जो मूर बोले। सुशासन तिहार भीतरे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बड़े कनेरा ने 152 करोड़ रुपया ले आगर लागत बीती कैक विकास काम चो लोकार्पण और भूमि पूजन करला। प्रदेश ने नगरीय निकाय और उत्तरी स्तरीय पंचायत चो आम और उप चुनाव का जे 1 जून के होली मतदान और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा चो क्रियान्वयन का जे प्रदेश भर ने हो से प्रशिक्षण कार्यक्रम। एबर खबर सरसराले। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गेलो 1 जून के मध्य प्रदेश चो रायसेन जिला चो रायसिया गांव ले राष्ट्रव्यापी खेत बचाव अभियान के मूर करला। 1 महीना तक चलतो ये अभियान देश चो खेती भूई के बचातो और खेतिहार मन के खोजाकारी उवाट ले कमानी काजे जागरूक करतो हिसाब चो आए। समारोह के संबोधित करते कृषि मंत्री खेतिहार मन के बेड़ा ने संतुलित खत भात लगा तो गुहार करला। छत्तीसगढ़ ने भले प्राकृतिक खेती और माटी के बचान राखतो गोट के बढ़ावा देतो का जे खेत बचाव अभियान मूर होली से। कृषि मंत्रालय बाटले ये अभियान ने खेतिहार मन के प्राकृतिक खेती कमानी संतुलित उर्वरक चो उपयोग और माटी के बचान राखतो गोट मन का जे जानकारी देतो रहते। ग्राम पंचायत विकास खंड और जिला स्तर ने कृषक संगोष्ठी कृषि चौपाल और कैक प्रकार चो जागरूकता कार्यक्रम मन होते। जेथा खेती कमानी चो काम लागून खोजाकारी मन प्राकृतिक खेती बलो ने आपलो पुरखती हिसाब ले कमानी करतो के कसन लाभ होय दे ए गोट के सांग दे और जुगे उर्वरक दिलो ने माटी के काय नुकसान होय से ए गोट चो जानकारी बले दे दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्ला से कि सरकार देश जो पुरखती ठान बलो ने अमूल्य धरोहर मन के बचातो का जे कोशित करे से। आकाशवाणी ले गेलो इतवार के मन की बात कार्यक्रम ने हुन सांगला कि ज्ञान भारतम अभियान भीतरे छत्तीसगढ़ ने बिलासपुर जिला चो मल्हार ने 6वीं-7वीं शताब्दी चो पांडु वंश चो महर्षि बाला अर्जुन ले झूलो दुर्लभ तांबा चो 3 पट्टिका मिरले से। ये तांबा पट्टिका ने ब्रह्मलिपि अरु पाली भाषा ने लिखलोर आसे एचो ले हुन समयाचो शासन व्यवस्था धर्म अरु संस्कृति चो बारे ने जानकारी मिले से। प्रधानमंत्री रांची ने होलो राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता ने 100 मीटर दौड़ ने रिकॉर्ड तोड़तो खिलाड़ी जशपुर जिला चो घुईटांगर ने रतो अनिमेश कुजूर ले बोले गोठबात करला। श्री मोदी अभायक गरम ताप चो लागून लोग मन के सरकारी दिशा निर्देश चो पालन करते सुरक्षित रतो काजे गुहार करला। प्रधानमंत्री लोग मन ले गरम ताप घाम असन ले देह के बचातो काजे आमपना मही सत्तू बेलपना शरबत आमट असन तीज मन के आगर खातो काजे बल सलाय दिला। सुशासन तिहार भीतरे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गेलो 1 जून के कोंडागांव जिला चो बड़े कनेरा ने होलो समाधान शिविर ने 152 करोड़ 18 लाख रुपया चो लागत बीती कैक विकास काम चो लोकार्पण और भूमि पूजन करला। ये मौका ने मुख्यमंत्री नारंगी नदी पुलिया के फेरले अच्छा बनातो का जे 2 करोड़ रुपया दे तो घोषणा बले कर ला। संगे संग केसकाल बांसकोट माकड़ी एरलाचो 53 किलोमीटर लाम सड़क बाट के पक्की बनातो काम के मंजूरी दिला। श्री साहेब बड़े कनेरा ले बड़े बेंदरी बाइका पदर अरु चीपावन तक चो पुल पुलिया संगे 12 किलोमीटर सड़क बनातो संगे बड़े कनेरा ले नवागुड़ा ने पुल पुलिया संगे 5 किलोमीटर सड़क बनातो घोषणा करला। हुन बल्ला की बड़े कनेरा ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाए दे हुताए कोसार टेडा ने पर्यटन विकास जो काम भले होए दे। श्री साई विश्रामपुरी ने गोंडवाना भवन केशकाल ने सर्व आदिवासी समाज भवन बनातो संगे बड़े कनेरा चो पुराना शिव मंदिर के और अच्छा बनातो काजे घोषणा बले करला। आप लोग कोंडा गांव दौरा दाए मुख्यमंत्री बड़े कनेरा गांव ने ज्ञान भारतम अभियान भीतरे संरक्षित अंताजन 150 साल पुराना उड़िया भाषा ने लिखलो पांडुलिपि के दखला अरु एके बचान राखतो परिवार के सहराला। मुख्यमंत्री रामूराम यादव ले भेंट करून हुंचो लगे रतो पुरखस सम्याचो 8 ठान पांडुलिपि के दखून हुंचो बारे ने जानकारी धरला। मुख्यमंत्री बल्ला की ये ऐतिहासिक धरोहर सोझे पुस्तक नो आए ये आमचो सभ्यता संस्कृति अरु पारिवारिक संगे पारंपरिक ज्ञान चो चिन्ह आए। संरक्षक मन मुख्यमंत्री के सांगला की ये पांडुलिपि ने पंजीयार पंजी पुराण पंचांग अरु चक्रकूट पंचांग असन महत्वपूर्ण ग्रंथ आसे जेचो उपयोग परंपरागत ज्ञान धार्मिक पूजा पाठ सामाजिक व्यवस्था अरु ज्योतिषीय गणना ने होय से। मुख्यमंत्री बड़े कनेरा चो अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के बले दखला अरु सेवा से तुचो बारे ने जानकारी धरून केंद्र ने मिर्तो लाभ अरु सुविधा चो बारे ने लाभार्थी मन ले जानकारी धरला। हुन बल्ला की सेवा सेतु अभियान अरु अटल डिजिटल सुविधा केंद्र नवा गांव मन ने डिजिटल सुशासन के और पक्की करे से जेचो ले लोग मन के सरकारी विभाग ने घन घन जाऊक नि पड़े से। प्रदेश ने नगरीय निकाय अरु त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संगे उप चुनाव का जय गेलो 1 जून के मतदान होली। राज्य निर्वाचन आयोग चो सांगलो हिसाब ले नगरीय निकाय ने अध्यक्ष चो 5 अरु पार्षद चो 71 पद काजे 96 मतदान केंद्र ने मतदाता मन आपलो मताधिकार चो उपयोग करला। हुताय त्रिस्तरीय पंचायत मन ने जनपद पंचायत सदस्य सरपंच अरु पंच चो कुल 151 पद काजे 274 मतदान केंद्र ने 1 लाख ले आगर मतदाता मन आपलो मताधिकार चो प्रयोग करला। नगरीय निकाय ने मतदान बिहाने 8 बजे ले संजबिरा 5 बजे तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले होली। हुताय पंचायत चुनाव ने मतदान बिहाने 7 बजे ले मंझानबेरा 3 बजे तक मतपेटी उवाटले होली। देश भर ने आजिकाली जनगणना 2027 चो काम 2 चरण ने चले से। छत्तीसगढ़ ने जनगणना चो पहिल चरण ने घर मन चो सूचीकरण अरु गिनती चो काम 30 मई तक होली। गिनती करिया मन घर घर जाऊन 33 ठान सवाल चो हिसाब ले घर चो स्थिति रतो सुविधा अरु संपत्ति लागून जानकारी मोबाइल एप्लीकेशन चो माध्यम ले जुहाला। राज्य ने ये अभियान 33 जिला 252 तहसील अरु 195 नगरीय निकाय अरु 19,000 ले आगर गांव मन ने चली से। जनगणना काम ने 62,000 ले आगर अधिकारी अरु कर्मचारी मंचो ड्यूटी लगु रहे। प्रदेश जो जनगणना निदेशक ये अभियान के सफल बनातो का जे प्रदेश जो लोग मंचो आभार मान ला से। हुन बल्ला की लोग मंचो दिलो सपाई जानकारी जनगणना अधिनियम हिसाब ले पूरा गोपनीय रहे दे। हुताय कांकेर जिला ने जनगणना चो काम 11 तहसील अरु 6 नगरीय निकाय ने होली। जनगणना काम काजे जिला ने 1,882 अधिकारी कर्मचारी मंचो ड्यूटी लगु रहे। कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर बल्ला से कि लोग मंचो करतलो सहायता लागून जनगणना चो पहल चरण चो ये काम सफल रली। हुन एतो बरस फरवरी महीना ने एचो दूसर चरण ने बले असने सहायता करतो काजे गुहार करला। असनेच दंतेवाड़ा जिला चो 81 वार्ड अरु 169 ग्राम पंचायत ने जनगणना चो पहिल चरण चो काम पूरा होली। ये काम काजे जिला चो 6 ग्रामीण अरु 5 नगरीय इंचार्ज बनातोर हो रहे। राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष काजे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भीतरे प्रदेश चो सपाई जिला के 2,677 करोड़ रुपया ले आगर केंद्रीय अरु राज्य चो भाग इतरो राशि के जारी कर ली से। ये राशि SNA स्पर्श मॉड्यूल चो माध्यम ले जिला के आबंटित होली से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बल्ला से कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भीतरे राज्य ने हर दिन 1600 ले आगर पक्की घर बने से। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा के अगर प्रभावी बनातो का जे आजिकाली प्रदेश भर ने प्रशिक्षण कार्यक्रम चले से यही भीतरे

पहले 31 मई के सुकमा चौक कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर ने जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम होली। प्रशिक्षण दाएं सुशासन अरु अभिसरण विभाग चो मास्टर ट्रेनर आर के शर्मा सांगला के मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रणाली 5 ठान गोट ऊपरे आसे जेता यूनिक टोकन नंबर ले शिकायत चो ट्रैकिंग समिया ने निपटान करतो काजे SLA आधारित व्यवस्था निपटारा पाछे लोकमंचो संतुष्टि चो जानकारी बिना भेदभाव करून जवाबदारी चो गोट के बढ़ातो संगे SIS डैशबोर्ड चो माध्यम ले निगरानी करतो गोट आसे। हुन सांगला की CM हेल्पलाइन कॉल सेंटर 24 घंटा चले दे ये भीतरे लोकमन शिकायत करतो काजे टोल फ्री नंबर 1076 ने शिकायत लिखाऊ सकोत। शिकायत मिर्तो पाछे हुंचो जानकारी सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय आमरे दे। हुताय दंतेवाड़ा जिला ने बले 30 मई के CM हेल्पलाइन अरु प्रबंधन प्रणाली लागू जिला अरु विकास खंड स्तर चो अधिकारी मन के प्रशिक्षण दिए गेली। प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबोधित करते कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव बल्ला की CM हेल्पलाइन चो माध्यम ले लोग मंचो समस्या चो समय ने समाधान करतो रहे थे। बस्तर विकास प्राधिकरण चो उपाध्यक्ष लत्था उसेंडी गेलो 25 मई के कोंडागांव जिला चो ग्राम संबलपुर ने 5 लाख रुपया चो लागत ले बनलो रंगमंच भवन चो निर्माण काम चो भूमि पूजन करला। ये मौका ने सुश्री उसेंडी बला कि रंगमंच बनले गांव ने धार्मिक सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम करतो काजे ठान मिरे दे। हुन बला कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र ने विकास लागून बराबर काम करे से। विश्व तमाखू निषेध दिवस ने गेलो दिने 31 मई के छत्तीसगढ़ चो कैक जिला ने जागरूकता कार्यक्रम होली। यही भीतरे जगदलपुर चो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF मुख्यालय ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाई गेली। कार्यक्रम ने CRPF चो कमांडेंट जितेन कुमार अधिकारी और जवान मन के तंबाकू खादले पड़तो दुष्प्रभाव चो बारे जागरूक करला। हुन बल्ला कि CRPF चो हर कर्मचारी चो देह पाए निको रतोर खूबे जरूरी आए कसन बलो ने स्वस्थ बल राष्ट्र चो सुरक्षा काजे आपलो योगदान देउक सके। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान भीतरे स्वास्थ्य विभाग चो दल दंतेवाड़ा जिला चो गांव बड़े पल्ली आमरली। ये मौका ने ये दल गांव ने शिविर लगान 200 आगर गांवकारी मंचो देह पैचो जांच करून उपाय उखद दिली। शिविर ने पेटेहारीन मेहरार मंचो जांच संगे पीला मन के टीका बले लगाला। जांच दाए गोटोक पेटेहारीन के देह पाए ने जजकी बेरा मुश्किल होय दे असन गोट दखून हुन मेहरार के सुरक्षित प्रसव बलो ने दखा रखा भीतरे जजकी करातो काजे जिला अस्पताल पठाला। मुख्य चिकित्सा अरु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय रामटे के सांगला की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान भीतरे लापी दुरिया चो गांवकारी मन के देह पाए लागून सहायता दिए जाए से। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC बाटले राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 6-9 जून तक प्रदेश भर ने हो दे। बस्तर जिला ने ये परीक्षा का जे सपाय तैयारी पूरा होली से। धर्मपुरा चो शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मुख्य परीक्षा केंद्र बनालोर आसे। ये केंद्र ने 181 उम्मीदवार परीक्षा ने शामिल हो दे। ये परीक्षा 2 पाली ने हो दे। मुख्य परीक्षा का जे जिला प्रशासन बटले सुरक्षा चो कड़ा इंतजाम होली से। सुशासन तिहार दाए बीजापुर जिला चो 41 ग्राम पंचायत ने बाल विवाह चो रोकथाम का जे संकल्प धरला। महिला और बाल विकास विभाग बाटले चलातो ये अभियान भीतरे लोग मन के बाल विवाह चो दुष्परिणाम कानूनी प्रावधान अरु लेकी मंचो देह पाए शिक्षा चो जानकारी दिए गेली। कार्यक्रम ने गांवकारी मन के चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 अरु मेहरार मन का जे महिला हेल्पलाइन नंबर 1814 जानकारी दिला। ए नंबर ले बाल विवाह चो सूचना देउक सकुत। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP चो 41वीं वाहिनी अबुजमार क्षेत्र चो लोग मन का जे कोंडा गांव चो ITBP मुख्यालय ने 2 हफ्ता चो साइकिल सुधारतो बनातो काम चो प्रशिक्षण कार्यशाला मूर कर ली से। ITBP चो कमांडेंट बेनुधर नायक सांगला कि ये कार्यक्रम चो माध्यम ले हुता चो गांवकारी मन के ये काम चो प्रशिक्षण दिए जाए से। प्रशिक्षण पाछे ये मन के साइकिल अरु किट दिए जाए दे जानू खो कि ये प्रशिक्षण चो मूर गोट कौशल विकास अरु स्वरोजगार के बढ़ावा देतो रहे। कांकेर जिला चो दूध नदी के बचातो काजे गेलो 30 मई के स्वच्छता अभियान चलाई गेली। ये अभियान ने जन प्रतिनिधि जिला प्रशासन चो अधिकारी कर्मचारी अरु स्वयं सेवी संगठन मन संगे आम नागरिक भाग धरला। अभियान दाए नदी कठा ने पकालो कचरा अरु लाटा बूटा संगे सफाई अडरक कूड़ा करकट के घुचाला। ये मौका ने कांकेर विधायक आशाराम नेताम बल्ला

और अब पेश है मधुरी माँ। जब से मुझको तेरा दीदार हुआ है, जब से मुझको तेरा दीदार हुआ है, ये दिल और भी ज्यादा बेकरार हुआ है। आने लगे हो जब से मेरे ख्वाबों ख्यालों में तुम, आने लगे हो जब से मेरे ख्वाबों ख्यालों में तुम, अब अपनी चाहत पर भी एतबार हुआ है।

न आंखों में नींदे हैं न दिल में करार है, न आंखों में नींदे हैं न दिल में करार है, बस यही हाल है अपना जब से हुआ है प्यार तुमसे।

कुछ ऐसा असर हुआ तेरी मोहब्बत का मुझ पर, कुछ ऐसा असर हुआ तेरी मोहब्बत का मुझ पर कि हर धड़कन बस तेरा ही नाम पुकारती है।

प्यार और बेकरारी के खूबसूरत एहसासों को बयां करती ये थी आज की मधुरी माँ। मधुरी माँ के इन्हीं गीतों के साथ ही आज के नमस्कार जगदलपुर कार्यक्रम से मुझे यानी शिबा सिंह को दे अनुमति। नमस्कार।

आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रूपये की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
4: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डी के शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डी के शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रूपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। नवन्न में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफिन नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12

0: वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
2: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
1: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
3: लगभग 1 साल से यहां से दवाई ले रहा हूँ, तो सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का भी सलाह है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
1: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्चस्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा।

0: सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, आज के सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए, ओएसएम टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, सीबीएसई ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें न विचारधारा की चिंता रहती है और न ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रूपये की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों

अभी आप सुन रहे थे त्रिनाथ सिंह क्षत्रिय और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से लोक मंजरी कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं विभिन्न बोलियों में लोकगीत। अब लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी लोकगीत, कलाकार हैं राम और साथी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्तिक निषाद और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत।
1: तीनों कॉलेज ने
2: चिंता नहीं करा,
1: फीस तो दाख।
3: हे हे, काय हाल है, काय होली आए?
2: फीस जो फिकर
3: राहुल, जो बैंक खाता तो आसीचे बाट सरसरा, बैंक ले काम पड़ लो इतरो पीला पढ़ाई कर जा सरसरा मेरे दे, और हुन बले 4 लाख तक बिन झंझट चो आए। हुन कहां से मिठाई?
4: आरबीआई वाले से
5: नंगत करा मूर, लेन देन बेरा रहा चतुर।
0: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से लोक मंजरी कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं विभिन्न बोलियों में लोकगीत। अब लीजिए सुनिए योगेश्वर पुजारी और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक मजरी में विभिन्न बोलियों में लोकगीत। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं, और यही मानव संबंध की विडंबना है।
3: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
2: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
3: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
3: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
2: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल की और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की, और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी, चर्चा को विस्तार दीजिए।
3: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है
2: जी।
3: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोभी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: जी श्रोताओं, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोभी को गोब कहते हैं, जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है। केवल 5% भाग ही रेतीला है।
3: तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहाँ तक तापमान का प्रश्न है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है
2: जी।
3: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है।
2: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी
3: जी।
2: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजी जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोभी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। क्या थी वो घटना?
3: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले
2: जी।
3: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
2: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
3: जी हाँ जरूर
2: श्रोताओ, गोभी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है, जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोभी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
3: तो श्रोताओ, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट 2 कुबड़ वाले होते हैं
2: जी,
3: जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं
2: जी।
3: घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है, और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम
2: जी। अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोभी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है
3: जी।
2: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
3: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है, जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं
2: जी।
3: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है।

0: कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
1: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं, जैसे मोरिन खोर।
0: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
1: ये दो तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे। ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात यह है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट, घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
0: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोवी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
1: तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी गोवी के शीत मरुस्थल की।
0: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोवी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं।
0: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर सुन सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
1: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
2: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे।
3: कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ तो।
4: हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
3: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर। अरे वो देखो चिड़िया।
4: अरे वो देखो बंदर। ओ, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
3: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
4: हाँ, ये तो सही कह रहे हो। अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
3: क्या करेंगे? देखेंगे, जब जानवर आएगा तब।
2: अचानक
4: ये तो रीच की आवाज है। अरे अरे, मुझे तो लगता है रीच आ रहा है। ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
3: क्या करे क्या करे, जल्दी सोचो क्या करे।
4: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
3: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
2: रीच को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
3: ओ, ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
2: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
4: ओ, अब मैं क्या करूं? मैं
2: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
4: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
2: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीच उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
4: ये रीच तो मुझे सूंघ गया। मैं ऐसा करता हूँ, सांस रोक के लेटा रहता हूँ, तभी जान बच पाएगी।
2: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
4: बच गए, लगता है रीच चला गया।
2: रीच जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
3: अरे रीच तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
2: और अपने साथी से जाकर पूछा,
3: एक बात तो बताओ, रीच ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
2: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
4: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम ना आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
2: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए,
0: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम। अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम और वान्या, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुम लता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
2: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
3: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
4: लाटा गांव के ग्रामीण खेतीबाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
3: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
5: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
6: नहीं लगी।
7: अरे नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको।
6: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो। अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
7: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो
6: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
8: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
6: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
7: बड़ी आई रोकने वाली। वही करेंगे।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
4: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
3: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
4: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
9: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
6: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
9: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
10: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
9: आप तो काम करती है ना?
10: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
9: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
3: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
4: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
3: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया, तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
11: नहीं करने देंगे।
12: बिल्कुल नहीं करने देंगे।
4: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली

0: गौरा माँ।
1: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहाँ से आ रही हो?
0: गौरा माँ, वो लोग आ रहे हैं।
1: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहाँ आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
0: गौरा माँ,
1: हाँ?
0: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
1: क्या?
0: हाँ गौरा माँ, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके, उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
1: अच्छा, तो ये बात है। बहनों, चलो हम सब तैयार हो जाएं।
2: बिल्कुल,
1: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
3: हाँ, हम सब तैयार हैं।
4: किसी भी हाल में जंगल कटने
2: नहीं कटने देंगे।
0: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
5: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
1: ये है जंगल के उपकार,
6: मिट्टी पानी और बया।
1: मिट्टी पानी और बया,
6: जिंदा रहने के आधार।
7: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
1: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
8: आगे बढ़ो।
2: अरे कहां
8: से? 2 मिनट की बातों में मत आओ। मैंने तुम्हें पेश की थी है, पेश की इस काम के लिए।
1: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज
0: नहीं लगाने देंगे।
1: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
6: हाँ,
2: चिपक जाएंगे।
8: ठीक है, तो वहाँ चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
5: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
7: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
8: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
5: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में यह आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
7: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण

0: मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
1: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
0: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
2: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
1: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, और इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। अब पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लव इन टोक्यो के गीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म से संबंधित हम और भी बातें आपको बताएंगे, लेकिन सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।

कैसे बताऊं, आ जा रे आ जरा आ, लहरकिया जरा आंखों से दिल में समा, आ जा रे आ।

0: आंखों से दिल में समा, आ जा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आ जा रे आ जरा, लहरा के आ जरा।
1: श्रोताओं, लव इन टोक्यो फिल्म प्रदर्शित हुई सन 1966 में। सन 1966 की यह एक क्लासिकल हिंदी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को भी स्वर दिया है मोहम्मद रफी ने।

ये तो शहर मस्ताना जिसका अंदाज माशुकाना देता है प्यार का पैमाना।

हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है फिजाएं, जापानी परियां मुस्कुराएं, देखो वो गोरी गोरी राएं, हमको इशारों से

श्रोताओं, लव इन टोक्यो फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई जॉय मुखर्जी, आशा पारेख, महमूद प्राण, शोभा खोटे, धूमल मास्टर शाहिद, ललिता पवार, असित सेन, मोहन चोटी, मदनपुरी, उल्हास, तरुण बोस, लता बोस और मुराद। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को स्वर दिया है लता मंगेशकर ने।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सन 1966 में प्रदर्शित फिल्म लव इन टोक्यो के गीत। लव इन टोक्यो जो कि क्लासिकल हिंदी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। फिल्म के निर्माता और निर्देशक हैं प्रमोद चक्रवर्ती। फिल्म की कहानी लिखी सचिन भौमिक ने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

फिल्म लव इन टोक्यो के गीतों को लिखा हजरत जयपुरी ने और संगीत बद्ध किया शंकर जैकिसन ने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, और इस गीत को स्वर दिया है मोहम्मद रफी ने।

फिल्म लव इन टोक्यो के गीतों को अपनी आवाजें दी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मन्ना डे ने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे सन 1966 में प्रदर्शित क्लासिकल कॉमेडी रोमांटिक फिल्म लव इन टोक्यो के गीत। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। इस समय सुबह के 9:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: यह आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। सड़कों पर जीवन यापन कर रहे बच्चों के पुनर्वास के लिए प्रदेश में जून महीने में विशेष सघन अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत आयोजित मंथ ऑफ सोलर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। और दुर्ग पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लाखों रूपये की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर जीवन यापन कर रहे बच्चों के पुनर्वास के लिए जून महीने में विशेष सघन अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार की बाल सक्षम नीति के तहत सड़क पर रहने वाले भिक्षावृत्ति, बाल श्रम और कचरा संग्रहण में लगे बच्चों की पहचान कर उनका रेस्क्यू और पुनर्वास किया जा रहा है। अभियान के तहत बच्चों को सुरक्षित आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। जिला कलेक्टरों के नेतृत्व में गठित विशेष रेस्क्यू टीम द्वारा चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में अभियान चलाकर बच्चों को संरक्षण दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने कहा है कि बच्चों का पुनर्वास एक सतत प्रक्रिया है और वर्ष भर यह कार्य जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत आयोजित मंथ ऑफ सोलर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे राज्य के लिए गौरव की बात बताया है। मध्यम उपभोक्ता आधार वाले राज्यों की श्रेणी में सर्वाधिक वेंडर पंजीकरण के मामले में छत्तीसगढ़ ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिए राज्य का चयन पीएम सूर्यघर एक्सीलेंस अवार्ड के लिए हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए ऊर्जा विभाग, क्रीड़ा और विद्युत वितरण कंपनियों की टीम को बधाई दी है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी ने नवंबर 2024 में लॉन्च होने के दो साल से भी कम समय में 1 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि भारत के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत तथा दुनियाभर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को अपनाने में हो रही वृद्धि को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की द्वितीय अवसर के लिए मुख्य परीक्षा के टाइम टेबल जारी कर दिए हैं। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 8 जुलाई से 22 जुलाई और हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 9 जुलाई से 21 जुलाई तक आयोजित होगी। दोनों परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की जाएंगी। दंतेवाड़ा जिले के चंदेनार साप्ताहिक बाजार में मंगलवार को आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोग इसकी चपेट में आ गए, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार चंदेनार साप्ताहिक बाजार में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान अचानक मौसम खराब हुआ और तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी। वहीं महेंद्रगढ़ के पास जनकपुर क्षेत्र के चरखर गांव में कल दोपहर अचानक आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला मजदूर की मौत हो गई। इस घटना में 5 अन्य लोग झुलस गए हैं। ये सभी लोग मनरेगा के तहत चल रहे निर्माण कार्य में काम कर रहे थे। दुर्ग पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लाखों रूपये की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सुपेला निवासी एक व्यक्ति ने अधिक मुनाफे का लालच देकर कई लोगों से रकम निवेश कराई और उनसे करोड़ों रूपये की ठगी की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 2 अलग अलग प्रकरण दर्ज किए हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 कार, लैपटॉप, कंप्यूटर उपकरण, मोबाइल फोन, चेकबुक और लेन देन से संबंधित दस्तावेज जब्त किए हैं। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। और पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आने वाले अगले 5 दिनों के लिए राज्य के अलग अलग इलाकों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी तेज हवाएं चलने की आशंका है। इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि कुछ इलाकों में लू का प्रकोप जारी रहेगा। रायपुर के गुड़ियारी इलाके में स्थित रेलवे अंडरब्रिज मरम्मत कार्य के लिए कल 4 जून से 18 जून तक बंद रहेगा। इस दौरान रेलवे स्टेशन से गुड़ियारी की तरफ अंडरब्रिज पर सड़क यातायात को बंद किया जाएगा। रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक स्थित झिंगा बहाल क्षेत्र में मंगलवार को 2 तेज रफ्तार वाहनों के आमने सामने से हुई टक्कर में दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में एक वाहन चालक की मौत हो गई जबकि दूसरे वाहन के चालक को बचा लिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सड़कों पर जीवन यापन कर रहे बच्चों के पुनर्वास के लिए प्रदेश में जून महीने में विशेष सघन अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत आयोजित मंथ ऑफ सोलर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। और दुर्ग पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लाखों रूपये की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलशन। श्रोताओं, आज है बुधवार और आज के इस दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं शीर्षक फिल्मी गीत और आज का शीर्षक है इंतजार। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए फिल्म शराबी से। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की। गीत लिखा है अनजान ने और संगीत बप्पी लहरी का।

लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वर में लीजिए सुनिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने और इस गीत को हमने लिया है फिल्म फिर कब मिलोगी से।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से गुलशन कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं शीर्षक गीत। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं इंतजार शीर्षक पर फिल्मी गीत। गीतकार अंजान, संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी, आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है डॉन।

अनुराधा पौडवाल के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म पाप का गीत। गीत लिखा था सईद कादरी ने और संगीत अन्नू मलिक ने दिया था। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम के अंत में फिल्म विजयपथ का गीत। आवाजें हैं, इस गीत को स्वर दिया है साधना सरगम ने, गीत लिखा है समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलशन। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे इंतजार शीर्षक पर फिल्मी गीत। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।

0: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुरुदुम, इसमें सुनिए भद्रू कश्यप और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत।
1: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 ले 8 तक सुना फोन इन किसान वाणी, यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान, बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 ले 4 तक, तो आपन मन सपाय सुना और आप लो सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी, आपन मंचो सवाल, आपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम गुरदुम, इसमें सुनिए भद्रू कश्यप और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत।
4: Surprise, who knows?

सागर नाम चो राजा के राम 7000 बेटा रलाजे कपिल मुनि चो सराप ले तो के आई गने जर तेरे लाजे तू चो पाँव के धोलो रोजे राम अंत बोर बाटे रुकू रहे शिव चो सिरने ये गंगा सागर तुचे बस चकिरतिया रघुबीरो।

ना श्याम सजन दादा दीदी मिथिला पुर चो राजा हाग दिला सत्यानंद मंत्री के राज राज राजा मन के न्यूता दे से इला जाले देन दे मोचो सीता बेटी के।

खबर पहला राजा मन होला बोरे हरेक मन मिटिला पुटिला हाथी घोड़ा चेगुन चेगुन राजा इला लके जन जन कहोल हरेक मन चाह नास्ता सबके दिलो बस्त आसन।

आसन सुबे सुयासन ससुआसन सुबे सूर्य मंत्र चौधन गोट के अनाउ राजा उठल झटके आज धनु कहाँ से दकाऊं देस तुचो धनु कहाँ से मके तु दकाऊं देस तुचो धनु के टूटाऊं तुचो बेटी के मोहने ये दे तुचो धनु कहाँ से तु मके दकाऊं देस असन बेरुन गेलो दका दिसने ठाऊं धनु चोटेच के दकुन गेलो पराऊं धनु चोटेच के दकुन गेलो पराऊं।

चकलरा जा मन होला बड़े हरि कमान मिथिला पुर इला हाथी घोड़ा चेगुन चेगुन राजा इला लके जन जन कहलो हरि कमान चाहना सा सबके दिलो बस तो आसन।

0: बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुर्दू में अभी आप सुन रहे थे हल्बी लोकगीत, प्रस्तुत कर रहे थे भद्रू कश्यप और साथी।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
4: चलो,
3: कहाँ
4: एडमिशन कराने?
6: खाता हुआ एक्टिव।
7: RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
0: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस वक्त दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

श्रोताओं, हर सफल फिल्म के पीछे एक दूरदर्शी सोच, रचनात्मक दृष्टिकोण और अथक परिश्रम करने वाला निर्देशक होता है। एक सफल निर्माता निर्देशक केवल फिल्में नहीं बनाता श्रोताओं, बल्कि अपने विचारों, कल्पनाओं और संवेदनाओं से दर्शकों के दिलों में एक नई दुनिया रचता है। आज हम ऐसे ही एक प्रतिभाशाली निर्देशक निर्माता के जीवन, उनके संघर्ष, उपलब्धियों और सिनेमा जगत में उनके योगदान के बारे में जानेंगे। उनका नाम बताने से पहले आइए सुने उनके निर्देशन में बनी इस फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, आज हम जानेंगे उस शख्सियत, उस हुनरमंद व्यक्तित्व के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में जिन्होंने अपनी कला और दृष्टि से फिल्म जगत को नई पहचान दी। आप हैं दृढ़ संकल्प और मेहनत के प्रतीक हिंदी फिल्म जगत के निर्माता निर्देशक महेश भट्ट। हिंदी सिनेमा में जब संवेदनशील कहानियों और सशक्त निर्देशन की बात होती है तो महेश भट्ट का नाम आना लाजमी है। अपनी रचनात्मक दृष्टि और साहसिक विषयों के चयन से उन्होंने फिल्म जगत में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। आइए आपको सुनवाते हैं इन्हीं के निर्देशित की गई फिल्म दिल है कि मानता नहीं का ये नगमा।

भारतीय सिनेमा जगत की एक प्रतिष्ठित हस्ती महेश भट्ट को निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक के रूप में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सराहा जाता है। इस दिग्गज फिल्मकार का जन्म 20 सितंबर सन 1948 को मुंबई में हुआ था। भट्ट साहब ने अपने 5 दशक लंबे करियर में करीब 80 फिल्मों का निर्देशन और निर्माण किया, साथ ही 100 से अधिक फिल्मों में लेखक के रूप में अपना योगदान भी दिया। महेश भट्ट की सिनेमा यात्रा उनकी पहली फिल्म मंजिले और भी है, जो कि वर्ष 1974 में आई थी, से शुरू हुई, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली अर्थ, सारांश और जख्म जैसी फिल्मों से, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के दर्द और दर्शन को पर्दे पर उतारा। फिल्म अर्थ का, जो मानवीयता और आत्मीयता का अद्वितीय उदाहरण है, इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

श्रोताओ, महेश भट्ट के अपने पारिवारिक और मिले जुले सांस्कृतिक माहौल ने उन पर सांप्रतिक सद्भाव और मानवता के प्रति गहरी छाप छोड़ी, जिससे उनके भीतर एक भावात्मक कश्मकश भी हुई, जिसका असर उनकी फिल्मों में साफ दिखता है। स्कूल के दिनों में ही पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने छिटपुट नौकरियां शुरू की और विज्ञापनों के लिए काम किया, और यहां से फिल्म निर्देशक राज खोसला के सहायक के रूप में उनकी सिनेमाई पारी शुरू हुई। आशिकी और दिल है कि मानता नहीं जैसी रोमांटिक हिट फिल्मों ने उन्हें व्यावसायिक सफलता दी, लेकिन फिल्म जख्म में एक मां के साथ जो रिश्ता और सांप्रदायिक सद्भाव की बात उस फिल्म में बताई गई, उसने दर्शकों को झकझोर दिया। लीजिए सुनिए श्रोताओं, फिल्म जख्म का ये गीत।

श्रोताओं, फिल्मकार महेश भट्ट साहब के पुरस्कार के रूप में उपलब्धियों की अगर बात करें तो वर्ष 1979 में आई फिल्म लहू के दो रंग, इसने वर्ष 1980 में फिल्मफेयर अवार्ड में दो खिताब जीते थे। इस फिल्म ने पर्दे पर औसत से ऊपर प्रदर्शन किया था। उनकी पहली बड़ी हिट फिल्म थी अर्थ। इसके बाद जानम और नाम जैसी फिल्मों को भी काफी पसंद किया गया। फिल्म सारांश इसे कौन नहीं जानता। इस फिल्म को 14th मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एंट्री मिली थी। आपकी प्रसिद्ध फिल्में कब्जा, डैडी, आवारगी, जुर्म, आशिक, सर, हम है राही, प्यार के, संघर्ष, राज, मर्डर, जिस्म, गैंगस्टर और भी कई बेहतरीन फिल्मों को आपने मानवीय भावनाओं के साथ पर्दे पर उतारा। आपका ये सफर और फिल्म जगत में योगदान संवेदनशीलता और सफलता की एक प्रेरक कहानी है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। हमारा आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था मशहूर निर्माता निर्देशक महेश भट्ट पर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। समय 11:30 हुए हैं।
1: घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है विभिन्न प्रदेशों के लोकगीतों का कार्यक्रम सबरस। इसमें सबसे पहले सुनिए बंगाली भाषा में ये गीत मौसमी भौमिक की आवाज में।

कार्यक्रम सबरस का अगला क्षेत्रीय गीत सुनेगा गुजराती भाषा में। इस गीत को गाया है उदय मजुमदार और रेखा त्रिवेदी ने। संगीत है उदय मजुमदार का।

कार्यक्रम सबरस में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं महाराष्ट्रीय गीत, जिसे गाया है रंजना जोगलेकर ने, संगीत दिया है देवदत्त साबले ने।

और अब सुनिए श्रोताओं, पंजाब राज्य का ये धमाकेदार पंजाबी गीत राजेंद्र कौर रैना की आवाज में, धुन बनाई है लवली विनोद ने।

0: अभी आप विभिन्न प्रदेशों के लोकगीतों का कार्यक्रम सप्रस सुन रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। समय 11:55 होने वाले हैं। अप्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: प्रादेशिक समाचार,
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने रायपुर दुर्ग में की छापेमार कार्रवाई। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की द्वितीय अवसर के लिए मुख्य परीक्षा के टाइम टेबल जारी कर दिए हैं और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए राज्य के अलग अलग इलाकों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भर्ती घोटाला मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की टीम ने आज रायपुर और दुर्ग में छापेमार कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम ने आज तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक के रायपुर स्थित निवास और आयोग के पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव के भिलाई स्थित निवास पर छापा मारा। यह दूसरा मौका है जब सीबीआई की टीम ध्रुव के निवास पर पहुंची है। जानकारी के अनुसार सीबीआई की दो टीमें आज सुबह से जीवन किशोर ध्रुव के भिलाई सेक्टर 10 स्थित निवास पर पहुंचकर परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर दस्तावेजों को खंगाल रही है। गौरतलब है कि इस मामले में अब तक 29 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें मुख्य आरोपी पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव, परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक शामिल हैं। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आयोजित मंथ ऑफ सोलर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे राज्य के लिए गौरव की बात बताया है। मध्यम उपभोक्ता आधार वाले राज्यों की श्रेणी में सर्वाधिक वेंडर पंजीकरण के मामले में छत्तीसगढ़ ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिए राज्य का चयन पीएम सूर्यघर एक्सीलेंस अवार्ड के लिए हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए ऊर्जा विभाग, क्रेडा और विद्युत वितरण कंपनियों की टीम को बधाई दी है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की द्वितीय अवसर के लिए मुख्य परीक्षा के टाइम टेबल जारी कर दिए हैं। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 8 जुलाई से 22 जुलाई और हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 9 जुलाई से 21 जुलाई तक आयोजित होगी। दोनों परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने कहा है कि मौजूदा वैश्विक और भू राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद घरेलू गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और उपभोक्ताओं को शत प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इंडियन ऑयल के रायपुर मंडल के राज्य स्तरीय समन्वयक नितिन चौहान ने नागरिकों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर घबराहट में अतिरिक्त खरीदारी नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि गैस की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ता बुकिंग के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें। छत्तीसगढ़ के पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और रिटायर्ड आईएएस बीकेएस रे का निधन हो गया है। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और उनका उपचार रायपुर एम्स में चल रहा था। उनके निधन की खबर से प्रशासनिक, शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्रों में शोक की लहर है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी ने नवंबर 2024 में लॉन्च होने के 2 साल से भी कम समय में 1 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि भारत के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत तथा दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को अपनाने में हो रही वृद्धि को दर्शाती है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आने वाले अगले 5 दिनों के लिए राज्य के अलग अलग इलाकों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी तेज हवाएं चलने की आशंका है। इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि कुछ इलाकों में लू का प्रकोप जारी रहेगा। दंतेवाड़ा जिले के चंदेनार साप्ताहिक बाजार में मंगलवार को आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिसमें से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महेंद्रगढ़ के पास जनकपुर क्षेत्र के चरखर गांव में कल दोपहर अचानक आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला मजदूर की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने रायपुर दुर्ग में की छापेमार कार्रवाई। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दसवीं और बारहवीं की द्वितीय अवसर के लिए मुख्य परीक्षा के टाइम टेबल जारी कर दिए हैं और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए राज्य के अलग अलग इलाकों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त दिन के 12 बजे हैं।
1: घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
5: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
6: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोजे शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाए समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम जो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाए सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आम चो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसान वाणी, आपन मन चो सवाल, आपन मन चो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
0: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम झुमझुमा। इसमें सुनिए हल्बी लोकगीत बुद्री और साथियों के स्वर में।

suica.

अभी आप लोकगीतों का कार्यक्रम झुमझुमा सुन रहे थे। इसमें आप सुन रहे थे बुदरी और साथियों के स्वर में गाए हलबी लोकगीत। ये आकाशवाणी जगदलपुर है। समय दिन के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का अपना कार्यक्रम घर द्वार।

0: જુહાર દીદીમન, જુહાર. હા તો દીદીમન, રોજીદિન આસનામી હુની સમયાને જ્ઞાન ધ્યાન ઓર ગીત ગોવિંદ કે ધોરણ બાતી અમરુ સે અલે તેબે મેં મૂર કરે સે એચી સંગે ઘર દ્વાર સુનતો સપાય દીદીમન ઓર મોચો સંગવારી બહેન મન કે મેં સેવતી કરે સે જુહાર. હા તો દીદીમન, જુહાર ભેટ તો હોલું માનતર અમી રોજીદિન આસન કંઈ ના કંઈ નંગત ગોટ માન બાત મન કે કરું સે હુસની આજી અમી પીલા મન કે નંગત સંસ્કાર દેતો ને પરિવાર ચો કાય ભૂમિકા રહે સે હુંચો બારે ને ગોટ બાત કરું દે. પીલા મન ચો સબલે પહેલ સ્કૂલ ઘર આય. પીલા મન જન્મ ધરતો ચો બાત સબલે પહેલ આપલો પરિવાર લે છે શિક્ષોત. પીલા મન જોન દખવાત હુંકે ઝટકે શીખવાત. તો દીદીમન બોલતો ગોટે આય કી અમી જસન કરું દે પીલા મન બલે આમ કે દખુન કરી હુસની શીખ દે. એચી કાજે આમ કે નંગત વ્યવહાર બોલચાલ ઓર આદત સોચ વિચાર કે નંગત સંગાતો રહે જસન વાતાવરણ રહે દે પીલા મન હુસની શીખ દે. પીલા મન કે નંગત સંસ્કાર શીખાતો ને પરિવાર જો સબલે અહમ ભૂમિકા રહે છે. પરિવાર બાટલે નંગત મૂલ્ય આદર સોચ વિચાર નંગત વ્યવહાર મિરલો ને પીલા ગોટોક અચ્છા માને ઓર જિમ્મેદાર નાગરિક બનવાય. સંસ્કાર કાય હોય છે સંસ્કાર હું નાય જોન થાને નંગત આદત રહે છે જોન માને કે સત ચો બાટને ચલાતો ચો પ્રેરણા દે છે જસન કી બડે લોગ મન ચો આદર સન્માન કરતો સદ બોલતોર અનુશાસન ને રતોર દૂસરા ચો મદદ કરતોર ઈમાનદાર રતોર યે સપાય નંગત સંસ્કાર ને આય જો નામ કે પરિવાર લે શીખુક મિરવાય. પરિવાર ચો ખૂબે અહમ ભૂમિકા રહેશે કે પીલા મન કે નંગત સંસ્કાર દેતો રહે સબલે પહેલ શિક્ષા ચો ઠાન ઘર પરિવાર આય. પીલા સબલે પહેલ આપલો આયા બાબા ઓર પરિવાર ચો લોગમન લે શીખે છે જસન કી ગોઠિયા તોર નંગત વ્યવહાર કરતોર લોગમન કે આદર સન્માન કરતોર યે સપાય દખુન કરી શીખે છે. એચી કાજે પરિવાર કે પીલા મંચો પૂરે નંગત આદત વ્યવહાર કરતોર ખૂબે જરૂરી હૈ. નંગત વ્યવહાર ચો શિક્ષા પરિવાર લે મિરે છે જસન કી જુહાર કરતોર બડે લોગ મંચો સન્માન કરતોર વિનમ્રતા લે ગોઠ્યા તોર દૂસરા કે કાંઈ પરેશાની હોલો ને મદદ કરતોર યે સપાય આદત પીલા મંચો વ્યક્તિત્વ કે નંગત બનાય છે. હા તો દીદીમન, અસની ગુડ બાત હોતે રહે દે અસની જહાલા હશે યે જહાલા કે સુનુ.
1: घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता.
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ. चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस.
3: सो बिड़किन बिड़िया राहत तिंदना उंडना सामान तलाय दरकता डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मयो इदेन संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोला वेंट कम की सित तोड़ अदेन के इलाज तलाय खर्चा वेंट कम लगे माता जीवन बीमा तगवेंट इंजे जीएसटी छूट दोर किता अदेन के पॉलिसी पोईतनद इंजे सस्ता आंता सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता पोटरू गाड़ी ता पोर्रो 28% जीएसटी मत्ता अद कम मास इंजे 18% अत्ता इदेन मतलब इद की इंजे गाड़ी पोटरू गाड़ी असित के सस्ता दोर कीता.
0: હા તો દીદીમન, નંગત ગોઠ મન કે સુલ્લું ઓર અમી પીલા મન કે નંગત સંસ્કાર ચો બારે ને ગોઠ બાત કરતે રહું. નૈતિક મૂલ્ય ચો વિકાસ ઘર પરિવાર લે મિરે છે જસન કી સદ બોલતોર ઈમાનદારી લે કાંઈ કામ કે કરતોર મહેનત મસાગત કરતોર ઓર જિમ્મેદારી ધરતોર યે સપાય ગુણ વિકસિત હોય છે. અનુશાસન શીખાતો રહે સમયાલી ઉઠાતો રહે પઢાઈ લિખાઈ કરાતોર નિયમ ચો પાલન કરાતોર યે સપાય પરિવાર ચો જિમ્મેદારી આય. અનુશાસન પીલા મન ચો જીવના કે સફલ બનાય છે. મયા ઓર સુરક્ષા દેતોર જબ પરિવાર લે પીલા મન કે ખૂબે મયા ઓર સુરક્ષા મિરે છે તો પીલા મન ચો આત્મવિશ્વાસ બાળે છે માને કાંઈ ભલે કામ કે કરતો કાજી હિંમત મિરે છે અસન ને પીલા મન માનસિક રૂપલે મજબૂત બનશોત. ધાર્મિક ઓર સંસ્કૃતિ ચો શિક્ષા દેતોર પરિવાર કે પીલા મન કે આપલો સંસ્કૃતિ પરંપરા રીતિનીતિ નૈતિક શિક્ષા કે શીખાતો રહે જસન કી તિહાર બહાર ચો મહત્વ કે સમજાતો રહે મ પ્રાર્થના કરતો રહે નગન સંસ્કાર ચો પાલન કરું શીખાતો રહે. નગન સંસ્કાર મિડલો પીલા મન કે સમાજને સન્માન મિરવાય જિમ્મેદારી નાગરિક બનશો પરિવાર ચો નાવ કે બલે રોશન કરશો સત ઓર ગલત ચો પહેચાન કરું શીખાતો રહે परिवार जो सबले बड़े जिम्मेदारी है कि पिला मन के सच्चो बाढ़ने चलुक सिखातो राय अमके पिला मन के समझातो राय कि कौन काम नंगत आए और कौन काम गलत आए तेबे पिला मन सही निर्णय धरुक सकोत। आधुनिक समय ने परिवार जो जिम्मेदारी और बढ़ली से कसन की अजी जो समय ने मोबाइल और इंटरनेट जो जमाना होली से और एबे समय ने हर घरे मोबाइल फोन आसे एची काजे आमके पिला मन के मोबाइल जो सही उपयोग करतोर समय जो महत्व के समझातो राय और गलत आदत नहीं पड़तो काजे बचाव करतोर आमचो जिम्मेदारी है। पिला मन के हर समय ध्यान देतोर खूबे जरूरी है कसन की नस्तो काजे समय नहीं लागे मानतर बनतो काजे खूबे समय लगवाए एची काजे पिला मन के नगन संस्कार देतो ने परिवार चो भूमिका रहे से। नगन संस्कार मिलो पिला मन के समाज ने सम्मान मिलवाए जिम्मेदारी नागरिक बन सोत परिवार चो नाव के रोशन कर सोत जीवना ने सफलता मिले से और आप लोग जीवना के मस्त अस्तित्व जीवन करी रसोत। पिला मन के नंगत संस्कार देतो ने परिवार चो खूबे महत्वपूर्ण भूमिका है नंगत परिवार नंगत समाज और उज्जवल भविष्य के चो न्यूर के राखे से एची काजे परिवार के पिला मन के मया अनुशासन और नंगत संस्कार देतो राय संस्कारवान पिला मन नंगत परिवार चो पहचानात। हाँ तो दीदी मन कितरो नंगत गोट मन के कर लू मानतर आमी रोजी दिनासन और नंगत गोट उत मंचो बारे ने जानू से भेंट वार्ता चो जरिया ले तो असनी आजी भेंट वार्ता ने अनुसार दीदी मन आम के पिला मंचो शिक्षा चो बारे ने नगद गोट मन के सांग दे और एमन संगे गोट बात करला सो तनुश्री महंती अले तेबे एमनचो गोट बात के सुनू।
4: मन की पढ़ाई का जे असन काय उपाय करतो रहे कि पिला मन रोजे स्कूल ले ये गोट के सांग तो का जे एता अमरला से बहन अनुसा जान तो दीदी सबले पहले तुम के जुहार
5: जुहार
4: इधर सांगा पिला मन कसन ने रोजे स्कूल जा दे और दीदी ये गोट के तो सांगा सीटी मानता है मैं बोलते रहे कि आगे जो और एप तो जोग ने तुम्ही काय फरक समस्या से के खिंडिक सांगुन दका।
5: हाँ जसन की सपाय जानो आज ही चुजुग और एवे चुजुग ने कितरो फरक आसे आगे जुग चो लोग पढ़ा लिखा नहीं होन बले कमान खादला और जीवला मानतर ए जुग जे के कल जुग बले बलुआत जोन थाने हरेक बुता कल मशीन ले होए से असन बेरा कोनी नुआ पीढ़ी चो लोग बले कोनी पीला अपड़ आसत बोले काम नहीं चले बाढ़ती जुग संगे संगे जातो काजे सब चो पढ़ा लिखा हो तो खूबे जरूरी है और सरकार बले कई ठान उपाय योजना मन बनाए से कि सब पाए पीला झीला मन पढ़ोत और जुग संगे संगे आगे बढ़ोत।
4: ये भी तुम्हें सांगलास की पीला मन चो पढ़तो काजे सरकार कई ठान योजना मन बल बना ली से तो ये योजना मन के खिंडिक सांग दखलन होती दीदी।
5: सरकार चाहे से कि सपाए पीला पढ़ोत एचो काजे शिक्षा चो अधिकार बलते गोटो कानून पास होली से आमचो देश भीतरे कोनी गांव कोनी पारा कोनी मोहल्ला चो गोटोक पिला बले अपड़ नहीं रहो बलते और ये कानून बनली से कि 6 ले 14 बरख चो सपाए पिला मन काजे कक्षा पहली ले धरून कक्षा 8वीं तक पढ़तो काजे सरकारी स्कूल ने कोनी पैसा पत्र खर्चा करुक नहीं लागे और ये कानून भीतरे सपाए पिला फ्री ने पढ़सोत उन मन के पुस्तक मिरे से स्कूल ड्रेस बल मिरे से और कक्षा 5वीं और जो 8वीं ने बोर्ड परीक्षा होते रहे उनके बले गुजान दिला सो
4: असन ने। तो दीदी ये जो शिक्षा जो जो अधिकार बनली से मैं जानू चाहे से कि सपाय पिला मन के स्कूल ने ये जो ना पढ़ कमर लाई मन
5: ये खूबे अच्छा गोट के तुम्हें पूछ लास सरकार जो कानून तो बन ली और एबे बले गुरुजी बहन जी मन गुलाय गांव पारा खोरी मोहल्ला ने बुलुन बुलुन खोजुन खोजुन 6 बरख ले 14 बरख चो पिला मन के स्कूल ने भर्ती करुन दिला। मानतर सपाय भर्ती हो तो पिला मन एबे बले स्कूल जाओ मन नहीं करे सो
4: सत्य बल्लास तो असन पिला मन का जे काय उपाय करु पड़े दे मन का जे।
5: हाँ जोन पिला मन रोजे स्कूल जासो थुन मन के तो हुन मन तो सीखु चाहत मानतर असन पिला मन जोन स्कूल जाओ नहीं चाहे सो हुसन पिला मन के चिन्हुन भांति कई ठान काम करु पड़े दे जसन सबले पहल असन पिला जो घरे जाऊन भांति हुन मन चो माय बाप संगे गोठ बात करु हुन मन के समझाक पड़े दे
4: कि तुम रोजे स्कूल पटा हाँ, हाँ,
5: तुम जो पिला चो जीवना के आगे चला तो काजे तुम के सोचुक पड़े दे और ये चुकाजे आप लोग पिला झीला के पड़ोक बले पड़े दे तुम ही तो आपनो जीवना के पढ़ा लिखा नहीं होन बोले चला लस मानता रे भी तो नहीं चले
4: ये भी तो मुश्किल है
5: तुम्ही घर जो काम बुता बाटे बेड़ा बाटे छेरी मेंडी चरा तो बाटे पिला मन के तो पठान दे हुआ है और गुलाय मंजन पिला मन होता खेलुन खेलुन बुता बले कर सोत घर जो और खेलते बले रुआत तो हुन मन जो आया बुआ के समझा तो राय कि ये काम बुत्ता के छुट्टी दिन बल कराओत नाले कोनी फावलो बेरा कराओत मंतरी स्कूल रोजे पठाओत और ये संगे संगे होनी स्कूल भर्ती होलो पीला मन संग वाले गोट बात करो खूब जरूरी हो ऐसे काय काजे बोले पीला मन जो विचार काय आसे उन मन जो नानी पीला मन जो मन के जान तो खूब जरूरी आसे काय चाहे कसन बोल ने जो स्कूल नहीं खेला सोत नहीं उन मन के डर बल लागे से
4: पढ़ा दे की मार दे
5: कर दे इतरो दिन ले नहीं गेले से मैं मार दे और खिंडिक लाज बल लागे से कि मैं अगर बाढ़ ले से नन नन पीला मन संग जाऊं बस हैं दे
4: खिंडिक उन मन के लाज होलो कारण बल मन उन मन नहीं जाए
5: हैं तो उन मन संगे अच्छा गोड बात कर उन भाती उन मन जो मन के तैयार कर तो रहे कि डर तो न आए कि लाज हो तो न आए और सीख तो कोनी उम्र हो से नहीं है पीला बेरा ले धरू नामी सियान हो तक सीख सको है नी तो असन सिकान भाती हुन मन के रोजे स्कूल जातो का तैयार करुक ले पड़े से
4: दीदी असन पीला मन स्कूल अमरोन जो दिन भर रल रते रहला फिर इधर ए बाटे उन बाटे बोललो ने खिटिक ठग बोल दका होत कोनी कोनी पीला मन है कैसे तो असन मन जो पीला मन आस होत उन मन काजे काही उपाय करु पड़े दी
5: असन पीला मन जसन स्कूल गोटक दिन उन फिर गोटक दिन पर हुआ था तो हुन मन के चमका धमका कर तो न है
4: हुन मन सारे
5: समझा तो रहे और हुन मन के सपाई पीला संगे गोट बात कर उन भाती जान पहचान करान दे तो रहे
4: बोलो ने हुन मन तो ये खेली को दोस्त असन बन ला सने खेल तो काज बोल हुन मन के अच्छा लागे दे खेली कोन मन से मन भूरा लो ने रह दे बोले
5: और जसन की अब सपाई बोलुआत की स्कूल नहीं जातो पीला काई नहीं जाने असन न है अंतर पीला मन नहीं स्कूल नहीं जान रो बोले उन मन जो भीतर खूब बे जानकारी रहे से ज्ञान रहे से कदक गिनती बल जानो थे उन मन गोठिया जानो कि लिखुक नहीं जानो मातर गोठिया जानो तो हुन मन के धीरे सुसारे हाक दे तो रहा है और हुन मन के हुन मन जो भाषा बोली ने गोठिया तो रहे
4: बोलो ने हुन मन भोतरी जान सो तो खिंडी बोले हम के जो के नहीं जाने बोल खिंडी भोतरी बोल लोसन बोलो ने गोठिया तो बोलो ने गोठिया तो रहे
5: हुन मन के धीरे ले मया ले पूछ तो रहे कि तुम जो घरे कौन कौन आसो तू जो काय नाम है तू काय सा खा ली तू के कौन खाजा अच्छा लागे से और ये सब गोठिया लो ने कहे कि पीला मन जो डर बल गुचे से
4: और हुन मन के लागे से नहीं ये आम चीज असन लोग
5: माया बाप भाई की कौन है असनी गोठिया हुआ है तो उनके असन नहीं लागे कि मैं कुनी

0: ठान ने आसे मैं आप लोज घरे आप लो लोग बाग संगे आसे और उनके डर नहीं लागे और उन मन कर उन तब बसे से
1: आसन नहीं। तो दीदी स्कूल ने कसन पढ़ा तो रहा है कि पीला मन के ठग नहीं लागो बोलो।
0: हाँ देख स्कूल ने तो सफाई पीला जाए सब है और हम जो स्कूल ने पढ़ा तो लोग मन बले अपन पाठ के अपन विषय हिसाब ने पढ़ाए सब मानतर सफाई पीला मन के हुन विषय हुन पाठ समझ ली कि नहीं एके बले ध्यान देते रहे है कि नहीं।
1: सत्य बोल
0: देख सफाई पीला मन जो दिमाग तो घोटो समान नहीं रहे
1: कोनी केंडिक चतुर असत केनी कम का चतुर असत
0: कोनी झटके समझवात कोनी नहीं समझत तो जसन हमें कोनी पाठ के पढ़ाऊं से तो सफाई पीला मन की कहानी असन आगे सांगुन देते रहे
1: उसने कहा उनके ध्यान दे सुन सो कहानी की
0: फिर पाठ के हुन जो घर जो गोट संगे जोड़न देते रहे जसन की आमी स्कूल ने जल नाव जो पाठ के कोनी गुरु जी या बहन जी पढ़ाए से और हम जो गांव खेड़ा जो पीला जल के तो नहीं चिन्हत
1: जल बोलो
0: काय बीती आय जल बोल दे ने और हम पूरा पाठ के जल असन आय जले के बोलो आज जल ले कर आज बोलो ने जोन पीला मन जल चो मतलब के समझो सो थुन मन पाठ के समझ ला मानतर जोन पीला जल चो मतलब की नहीं समझे से उनके तो काई समझ नहीं है
1: काय बीती आय
0: बीती है और पूछ तो कजवल डर और लाज लाज बोल लागे से की एक ही नहीं जाने बोलते असन पूछे सोत ने तो हुन ए बाट हुन बाट दखते रहे से और हुन के पढ़ा लो पाच फिर गुरुजी बन जी मन प्रश्न पूछ ले हुन का कसन उत्तर दे दे डर बल लागे से
1: तो असन पीला मन कसन करुन समझुक सकते मन
0: असन लोग और सफाई पीला के आगे तो जल जो मतलब के सांगुक पड़े दे
1: बोलो ने मतलब के असन समझाक पड़े ने
0: हां जसन हुन मन जो स्तर हिसाब ले हुन मन जो गोट बात मुरिया को लग लाग दे जसन पीला मन तुम्हें प्यास लागले काय के पीवा
1: हां
0: तो कैक पीला मन पानी बल दे और कैक झंडानी पीला मन पेज बल बोलुक सकत
1: सत्य कसन बोलो ने प्यास लागन
0: पेज बल पीस है ने तो हुन मन के धमका चमका करतो न है मानतर हुनिच मन के पूछतो राय की पेज रान तो काजे काय काय जिनिस लागे से है हुन सांगले सांगलो जाले ठीक नाले हुन मन के धीरे सुसारे सांग तो राय कि जल पानी के बोलवा है ने और पानी चौकाय का उपयोग हो से पानी कहाँ कहाँ ले मेरे से ये सब गोठ मन के पीला घर ले स्कूल चो ज्ञान ले जोड़न देतो रहे
1: तो सने पीला मन चो मन बल पढ़े वाटे पड़े लागे
0: हाँ। जसन बाबू तुई नहा तो कजे कहाँ जाऊ आस नहा तो पानी के पीऊ तो काम ने अनुक सकू हमें तुम चो गांव चो लोग कहाँ कहाँ चो पानी के पीऊ सो ये सब गोठ के पीला मन के तो सिखाओ को नहीं लागे मन तो चट चट गोठिया दे तो असनी हमें पाठ के धीरे धीरे समझाओ ले सको
1: ये तो खुबे नगद तरीका आए मानतर मैं कहा तो सुनू रहे कि स्कूल ने खेल खेलने बोले सिखाओ ये कसन आसे
0: हाँ खूब अच्छा गोट के तुम्हें पूछ लास बहिन आज काली पाठ के पढ़ा तो कजे सरल ले सरल तरीका डगरक पड़े से
1: आसन नहीं
0: हाँ कि कसनेच करुन भले पीला मन सीखो ये हिसाब ने खेलुन केलन सीख तो कई ठन उपाय मना से जैसे मैं तुमके गोटो खेल ने गणित सिखा सके
1: आसन
0: हाँ आमचो गाँव चो लेकी मन बिल्ला खेलू आत नहीं उसने लेका मन बारा डंडी खेलू आत ये चो कजे चार कोनिया जन लकीर खींचू आत है और खेलू आत तो हुनी चार कोनिया लाइन ले हमें पीला मन के रेखा गणित चो कोण कसन होए से समकोण कसन होए से अधिक कोण न्यून कोण के सिखा सको उसने लेखी मन चो बिल्ला झिक तो का जो गोला झिकुआत तो ता वृत्त काय के बोलुआत परिधि कोण लगे आसे कोण लगले त्रिज्या बोलुआत चाप बोलुआत कर्ण बोलुआत ये सब के हमें खेलते खेलते सिखा लेने नोनी तो ये लगे अमर लिस्ट एक परिधि बोलुआत असन सांग लो ने उनके भी नहीं भूल कुक सके
1: और उन मन के खेल खेलने पढ़ी असन बनी लागे
0: और नहीं जान ले बोले सीख दे के परिधि बोलुआत एक त्रिज्या बोलुआ थुन सिखुक ले सके असने जसन आम चो भारत देश ने किठन राज और हुन चो राजधानी आसे एक सिखा तो गजे पीला मन चो जोड़ी बनान देऊ हम गोटो के राज बनान देऊ और गोटो के राजधानी और हुन मन के हुनी नाम ले हाक देऊ तो पीला मन बल सीख दे और हुन मन बले भूलकुक नहीं सीख नहीं सकते असने जसन विज्ञान के हमें पढ़ाऊ से विज्ञान ने हम सजीव निर्जीव पाठ के समझातो रहे तो सब ले आगे हम के सजीव और निर्जीव का है कि सांगुक पड़े
1: था कसन बोलो ना गांव तो पीला मन तो सजीव बोले का है नहीं जानो
0: नहीं जानो है ना तो पीला मन जो खेल तो हुन लेका मन खेल सत बाटी और भौरा है हुनके गोटो हाथ ने धरतो रहे और गोटो हाथ ने बूटा कई बल बूटा के अनुन भाती दखातो रहे और बोलतो रहे की बेटा ए बाटी के आपट लो ने हुनके दुखे से कि नाई है और तुझे मुंड के खिंडिक थकान छटान दक हुन तुके दुखा दे से कि नाई है नी तो हुन सांगे दे कि मोके दुखे से अरे बाटी के तो नी दुखे से तबे हम उनके सिखाक सकू कि जोन थाने जीव आसे हुनके दुखे से जोन थाने जीव नी आए हुनके निर्जीव बोलो से हमें है असने हुन मन के सिखाक सकू कि आमा रुख आमा जोन टाकू है उनके रोपलन होए से है और जाम रुक जाम चुबी जाले होए से है आमाले जाम नहीं होए जामले आमा नहीं होए मानतर ये बाटी और भौरा के अच्छा खोदरा खनुन भाती तो पुन होता पानी और खाद देते रहे नु नखरे दे उन तो नहीं आख रुक सके तो हुन बोले हम उनके सिखा सकू कि सजीव और निर्जीव असन होए से बोलते तो खेल खेलने सरल तरीका ले हमें कई जीनिस के अनुन भाती पिला मन के दखा तो रहा है उनके छिया तो रहा है और असन सिकालो ने पिला मन अपन बल कर उन दखवा
1: और उन
0: मन बल लागे से और असन जो असन प्रयोग कर सत नहीं खुदे कर उन भाती तो केवे उन मन भूल कुकला नहीं
1: सको तो उन मन के बिल्कुल याद
0: याद रहे से
1: तो दीदी मैं बोलते रहे ये जो बोर्ड परीक्षा के तो सारून दिल्ला से तो पढ़तो पिला मंचो पढ़ाई ना काई फरक असन होत कसन
0: हाँ एक ही मैं तुमके सांगून दे से बोर्ड परीक्षा बोलने ने ये जो शिक्षा चो अधिकार आसे ने तो पांचवी और आठवीं चो बोर्ड परीक्षा के गुजाला से आगे चो आसे
1: आसे आसे हाँ मैं उनके ही बोलते ने कि पांचवी चो परीक्षा गुजालो ने पीला मन चो कसन हिसाब ने पढ़ाई होए दे बोलते हाँ, रहे
0: आगे पांचवी बोर्ड और आठवीं बोर्ड के गुचान दिला से असन आए दक पीला मन परीक्षा बोलन डर है सर
1: डर सर
0: है पीला मन का बड़े बड़े लोग के डर लागे
1: परीक्षा जात्रा बोलो
0: डर लागे से
1: डर लागे से
0: तो कई ठन गाँव चो पिला मन का है कि बोर्ड परीक्षा आई तब नहीं पढ़ लो ने फेल बल हो सकू नंगत नंबर नहीं आनु सकू बोलते डरे सोत तो यही काजे ये मन चो पढ़ाई चो व्यवस्था अच्छा बनु रहो बोलते सरकार चाहे से कि पिला मन एक हार पहली कक्षा ने भर्ती होत और सर लगा पास होते होते आठवीं पढ़ुन भाती स्कूल ने निकलो
1: बोलो
0: समझदारी है
1: स्कूल पिला मन के स्कूल ने पढ़ाई संगे संगे और दूसर ज्ञान बले दिवत
0: हाँ
1: तो एक बल खेडी का सांगन दखलन होती दीदी
0: हाँ सांगे हाँ। असन तो स्कूल बल्ले ज्ञान चो गोट और कई प्रकार चो नुआ नुआ गोट के सिकुन आप लोग जीवना के सुधरातुर ठान हो
1: हाँ, हाँ।
0: मानतर ए विषय मन के छानुन पिला मन के साफ सफाई ने कसन रतो राय है अपन देह चो संगे संगे आप लोग पिन लो फटाई आप लोग नख के दत के बाल के ये सब चो सब सफाई कसन करतो रहे कौन बीमारी ले कौन टीका सूजी मारुआत कौन बीमारी कौन विटामिन चुका मिले होए से और ये बीमारी ले कसन करून बाचुक सकू आपन ले नानी लोग मन संगे कसन दया मया ने रतो रहा है आपन ले बड़े मन संगे कसन इज्जत आदर ले गोठिया तो रहा है और ये चो संगे संगे पीला मन कोनी गीत नंगत गाऊआत कोनी कहानी लिखुआत कोनी नंगत छापा बाना बना हुआ
1: कोनी नाचू बोले
0: नाचू बोले तो ये सब ले बोले पीला मन की परीक्षा होए से है नी तो जोन पिला मन जोन बाटे हुन मन चो मन करे से जोन काम के हुन मन अच्छा करुआ तो हुन विषय ने हुन मन के नंबर अच्छा मिले से
1: हाँ सत्य बल
0: और जो संगे संगे पिला मन चो पढ़तो कक्षा के हुन मन चो बना लो जोन चित्र आए बाना आए छापा आए और नंगत रंग बिरंगा पाक फर चो बाना बनान दिया है नी साग डार चो बाना बनान दिया पशु जानवर चो छापा गीत कहनी और गिनती पहाड़ा गुलाय दीवाल ने बीती हाँ। ने लिखुन दे तो रहा और नानी पिला मन का है कि सजरा लाल बुता जो हाँ, कमरा रहे से नहीं तो मन करे सो
1: सत्य अल्लाह सर हम जो मन में लागे से हाँ। नाले उन्होंने निकलून पुरावत
0: निकलून पुरावत है उ तो रंग बिरंगा छापा हुन मन जो चढ़ई के दक की बाघ के दक की बेंद्रा के दक हुनी लगे लग रहे उन भाती तो हुन मन चो जीवना के सिखा तो रहा है हमके हुन मन चो कसन कहाँ मिरुआते माने चले काय फायदा है मनुख जाति के ये सब के हम ही सिखाओ ले सकू है नी और मैं सपाय सुन तो दादा दीदी मन के सांगुक लाए चाहे से कि पिला मन के रोजे स्कूल पठा तो काजे सांग तो रहे है ठक दका तो पिला मन के रोजे स्कूल ने हुन मन के आनंद दे तो रहे हुन मन के समझा बुझा कर तो रहे गांव खेड़ा ने पिला झीला मन का है कि ठक बोल दखा हुआ हाँ। और गागुक बोल मुरिया हुआ है नी
1: तो दीदी तुम्ही इतरो नगद गोट के जो टेशन नियुन भाती आम चो दीदी बहन मन के सांगला और आम केवल हरिक लागली और आम चो दीदी मन बोले पक्की ध्यान देन सुनला होती तो फिर असने के भी भेंट गांव ठो आलते भी जुहार
2: जुहार हाँ तो दीदी मन कितरो नंगत गोट मन के सुन लो कि आम के पीला मंचो पढ़ाई लिखाई के ध्यान दे तो रहे और पीला मन पढ़ दे तेबे तो हुन मंचो भविष्य बले नंगत रह दे। तो दीदी मन नंगत गोट बात सुन लो ने मन खूबे हरिक लगवाए और मन हरिक होलो ने गीत गोविंद सुनु भवाए। तो असने गीता से ये गीत कुरिया मना दीप किशोर भटनागर और हुन मंचो संगवारी अले तेबे ये गीत के सुनू।

तो दीदी मन काय रसरसिया गीत के सुन लो, गीत गोविंद असन आए कितरी सुनते रलो ने बले मन नहीं भरे और सुनुक सुनुक भवाए, तो असनी और गीता से ये गीत कुरिया मनात लखेश्वर खुदराम और हुन मंचो संगवारी आले ते भी ये गीत के सुनू।

काय नंगत गीत रली, ज्ञान ध्यान और गीत गोविंद के सुनते रलो ने समया चो मुरे पता नहीं चले, और दखते दखते मचो जातो समया बले होली, तुम्हें बले जान सास की समया चो मोल खूबे आए, समया ने गेलो ने समया ले एक हुआ, फिर कोनी दिने हुनी समया ने भेट गांव ढों दे तो जातो पूरे मौके विदा दिया, एची संगे घर द्वार सुनतो सपाए दीदी मन और मचो संगवारी बहन मन के मैं सेवती गणे से जुहार।

अभी आप ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार सुन रहे थे। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दिन के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आज आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य लोगों को बचा लिया गया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों के दल बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि त्वरित कार्यवाही से प्रभावित परिसरों से कई लोगों को बचाने और सुरक्षित निकालने में मदद मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
1: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस कॉन्क्लेव में ट्राइबल डेवलपमेंट से जुड़े संस्थाओं और मानव संसाधन के विकास से लेकर के वित्तीय व्यवस्थाओं तक तथा मॉनिटरिंग से लेकर के स्किल स्कीम डिलीवरी तक अत्यंत महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा होगी।
0: भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरे सबसे बड़ा और ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृहमंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा लगभग 10 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुव्रता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। घरेलू शेयर बाजार में संविधि सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 558 अंक की गिरावट के साथ 74,092 पर, जबकि निफ्टी 155 अंक फिसल कर 23,329 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस वक्त दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब सुनिए कृषि समसामयिक की बेड़ा खाड़ा चुकूट।
3: अपन मन आप लोग बेड़ा नहाले बाड़ी मन ने कई प्रकार जो साग भाजी जो कमानी कर सास दखा असनी हमी आप लोग रोज दिन जो साग दार रानतो थाने गोंदरी हरदी अदरक और लहसुन के काम ने आनुसी ये जिनिस मन मसाला जो काम कर सोत सागदार नगद स्वाद लागो ये चुका जी हमी असन अदरक नहा लहसुन के लगाऊ से असनी लहसुन नहालो कहीं बल्ले साग पान नगद नी लागे आमट हो नहाले फिर लहसुन से चटनी हो नहाले दार भगत लहसुन लागे से तखा असनी हम चो मछली नहाले मांस साग कच बल्ले असन लहसुन लागे से तो सपा ठाने लहसुन लाग तो काम हो सी और हम चो जोन खोजा करी दादा भाई मात ये के औषधि मानसोत लहसुन ले कितर प्रकार चो दवाई बल बने से अपन मन जान सास की गांव बाटे नन नन पीला मन के लहसुन चो केरी चो माला बले पिंधान टोटा ने और वत ये चोले पीला मन चो जोड़ खोकुली मन ने औषधि रूप ने काम ऐसी खेतियार दादा भाई मन अपन मन असन लहसुन चो कमानी कर सास्तो सबले नंगत हो से लहसुन चो कमानी कर तो फसल ने बल्ले कई प्रकार चो रोग रही झपसोत हम के असन रोग के चितान भाती दवाई लगा लो ने हम चो लहसुन फसल के बचा सकू लहसुन फसल ने असनी दखा गोटोक मुख्य रोग हो से ये के बलसोत थ्रिप्स ये गोटोक कीड़ी लहसुन चो पाना मन चो रस के चो खून भाती जे चो लेका पाना कमजोर हो से ये कीड़ी चोक जोन लगे चूके से हुन लगे पंडरी रंग चो पाना ऊपर गोल छापा दखा जगवाए जे चोले पाना पाछे आपने टूटते जाए से ये कीड़ी ले लहसुन के बचात करजे मोनोक्रोटोफास 1 मिलीलीटर के पानी ने मिसान छिस्तो राय जे चोले ये कीड़ी आपने घुस दे असनी दखा गोटोक लहसुन ने जुगे होते बीती रोग हो से जे के बलसोत माइट ये रोग ने बल्ले कीड़ी पाना के नुकसान अमरासोत जे चोले पाना हरदिया रंग लिपाचे दखा हरदी रंग होन बाती आपने मोड़ी हुआ है ये कीड़े ले बचाव कर तो काजे घोल तो बीती गंधक 2 किलोग्राम बल्ले ने 2.5 एकड़ हिसाब ने नहाले फिर पेराथियोन 50 ईसी 500 मिलीलीटर के 2.5 एकड़ हिसाब ने छिड़काव कर लो ने अच्छा नगद लाभ हो इसे खेतियार दादा भाई मन असनी लहसुन के खोल लो पाछे कोनी ठान ने संगालो पाछे बोले रोग धरे से एक बोले हम के जान तो राय गोटो कसनी रोग हो से एक बोलसोत भंडारण कीट असन रोग ने लहसुन के कीड़ी मन संगालो ठान ने खावन भाती नुकसान अमरासोत ये चोले बचाव काजे 1 ले 4 गोली फास्फिन प्रति घन मीटर चो हिसाब ने छिस्तो राय असन कर लो ने ये कीड़ी लहसुन के खाऊक नहीं सको और आपने गुचवात असने गोटो का रोग हो से एक बल सोत तुला सीता एक चिंतो का जे दखा लहसुन चो पाना ने आपने काय की कुमटा धरुआ और पंडरी चिन्हा मन बनाते जाए से पंडरी चिन्हा पाचे दखा बांगा फर असन रंग ने आपने फिर बदले से ये रोग ले हम के दखा बचाव करतो का जे मेनको जेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी ने मिशन भाती छिछलो ने ये रोग बोले गुचवाए खेतियार दादा भाई मन असनी आपन मन लहसुन फसल कमानी करतो पहल खिंडी का ध्यान दिया अक्टूबर नवंबर माह ने रोप लो जोन लहसुन हो से हुन फसल चो खोड़े की हामी मार्च नाल अप्रैल ने करतो राय लहसुन फसल तैयार हो तो समय ने पाना मन आपने हरदी रंग चो दखा जाए से और पाना मन बले आपने मुरस्ते जगवाए ये चोले हम के जानतो राय की लहसुन चो फसल तैयार होली तैयार होलो लहसुन चो कांदा के हिसाब ले खोड़क तराय और ये हम के ध्यान तराय कि कांदा चूपरे गुड़ पातर रसन झीली असन रुवाई ये के नुकसान नहीं अमरू खेतिया दादा भाई मन असन रोग राई और खेंडी का नगद ध्यान ले कमानी कर लेन दखा हम की ये लहसुन ये के नुकसान नहीं अमरू खेतिया दादा भाई मन असन रोग राई और खेंडी का नगद ध्यान ले कमानी कर लेन दखा हम की ये लहसुन चटनी का जी हो नाले साग का जी हो हम के मीरे से
2: अभी आप कृषि समसामयिक की बेड़ा खाड़ा चुगोट का पुनः प्रसारण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी जगदलपुर है। समय दोपहर के 1:10 हुए हैं।
4: बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
5: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 डॉक्टर की सलाह।
6: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है फरमाइशी नगमों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। नमस्कार श्रोताओं,

आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कार्यक्रम श्रोता सुमन के आज के अंक में। सुरों की महफिल सजी है, गीतों का पैगाम आया है, आपकी फरमाइशों ने आज इस दोपहर को और भी खास बनाया है। तो आइए संगीत के सुहाने सफर पर चलें, जहां हर गीत के साथ कोई ना कोई खूबसूरत एहसास जुड़ा है। श्रोताओं, मैं हूं आपकी मेजबान जूही जोशी, और अब पेश है आज का पहला फरमाइशी गीत फिल्म एक दूजे के लिए से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और अनूप जलोटा ने। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी। आप हैं फकीरा रेडियो श्रोता संघ जिला बीड से, रणजीत कुमार नामदेव थोरात, रितेश, आकाश, रश्मि, रंजना और गबरू पहलवान थोरात। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा से आप हैं बलराम सेन, इंदु सेन, रितिका सेन, पुष्पराज सेन, पोषण और पंचू सेन। इस गीत के अगले पसंद करता है आप करपवन सतोषा से, गिनुराम बघेल, गोमती तनुजा, सुभाष और ईशान बघेल। अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी और कृष्णा केवट। सावरगांव से आप हैं रघुनाथ नारे, पुष्पा नारे, श्रीधर और मीनल नारे। बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर। सुंदरपारा रोहासी से डगेसर राम साहू, नूतन कुमार साहू, गौरव कुमार साहू। दतरेंगी से मनोज कुमार, सूरज और सागर कुमार साहू। शिवपुरम कॉलोनी खंडवा रामगंज खंडवा से आप हैं विजय महोबिया, कविता महोबिया, संजय, नंदिनी, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, डॉली, देवराज महोबिया। दरबार कॉलोनी सनावत से किशोर कुमार सांवले, श्रीमती रेखा सांवले, हिमांशु अनुराग, सुलोचना चारुवी और प्रणव सांवले। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही महराज, जहां आप हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। चांदनी चौक गंडे पंडरिया से आप हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविन्द्र सेन, और यहीं से ही आप हैं खुशी रौनक सेन। तो लीजिए श्रोताओं, सुनिए आप सभी का पसंद किया हुआ फिल्म एक दूजे के लिए से ये गीत।

कार्यक्रम में ये अगला पैगाम आया है फिल्म गाइड के इस गीत के लिए, जिसे गाया है एसडी परमन ने, गीत लिखा है शैलेंद्र ने और अनुरोध करता है आप सभी। आप हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, कन्नेवाड़ा से देवेंद्र कुमार सोनवानी, देवव्रत लक्ष्मी देवी और गीतिका सोनवानी, बेमेतरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा, ग्राम पंचायत बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, रेखा धनेश्वरी वर्मा, चटौदा साराग्राम से सुजान वर्मा, सोहद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा, दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार, ग्राम पहारा अहिवारा जिला दुर्ग से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोर, ग्राम धुर्राबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम साहू और भूपेंद्र साहू, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया, कुंदानगर खरगोन से आप हैं ध्रुवास सोनवड़े, सुनीता, खुशी, प्रियांश, आशीष, पूनम, कृष्णा और शुभम सोनवड़े, बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हैं आप संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह, विकास सिंह, ओम प्रकाश, शुभम विश्वकर्मा, अरुण कुमार विश्वकर्मा, चूड़ी लाइन मुंगेली छत्तीसगढ़ से मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, निलोफर फातिमा, लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमीला मरावी, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी, नंदकुमार ठाकुर, प्रमीला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, दीपक खुशबू, ज्योति ठाकुर, आप हैं ग्राम चरौदा बारनवापारा जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आप हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम

मेघाबारा महामाया चौक लोरमी से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दिव्यांशु पटेल, दिव्या दीपांजलि दीपक और टेकलाल पटेल, जटपुरा पनवाड़ी महोबा से देवीदीन अहिवार, सुनीता अहिरवार, दिनेश कपिल, पूजा अहिरवार, ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, दिव्यांशी, रेणु, रोनिका और समस्त यादव परिवार, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से आप हैं मुकेश कश्यप, सोनू कश्यप, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, महामाया चौक मेघापारा लोरमी से रामकुशल पटेल, ऊपरकोट मोहल्ला चौनखुटे बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी, ग्राम छेंदीडीही पुजारीपारा जिला कोंडागांव से सेतुराम चक्रधारी, मंगतेन चक्रधारी, आशीष कुमार चक्रधारी और अस्तिका चक्रधारी। तो लीजिए श्रोताओं, सुनिए आप सभी का पसंद किया हुआ ये गीत।

अब सुनिए आप सभी श्रोताओं के प्यार से चुना गया ये गीत। फिल्म का नाम है खेल खेल में। किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वरों में इस गीत को लिखा है गुलशन बावरा ने और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने। और अनुरोध करता है आप सभी, आप हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णो कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय। बलौदा अकलतरा से आप हैं दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल। गांव परसाटोला जिलांबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता है आप ओम प्रकाश मसिया, सिलोचिनी खुमेद्र और तुषारनी मसिया। जिलांबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ही आप हैं रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रिहान। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त, चेतन नहाटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मुड़त, सत्येंद्र भंडावी, उमेश नाग, कृष्ण नैताम, रंजीत भंडारी आप हैं नयापारा फरसा गांव से। चार मीनार चौक गंडे पंडरिया से दरियानामल अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी, झूलेलाल चौक तिल्दा से हरीश कमल, सेतपाल, भूमिका, सुशीला दादी, रोहित, जयलक्ष्मी, ऋषभ, अंशलक्ष्मी आप हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, सुभाष सिंह चक्रधारी, कविता मुस्कान, अनुष्का चक्रधारी आप सभी हैं ग्राम भंडार सिवनी जिला कोंडागांव से हमारे श्रोता। जिला मुंगेली गोल बाजार खपरा कला छत्तीसगढ़ से संतोष कुमार सोनी, सुनीता खिलेश, नेहल पीहू, छोटी दानिश, दीक्षा, संजय, पूजा, रामा पूर्वी और पुलकित। कलनौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन आप सभी हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। और श्रवण कुमार साहू आप हैं मदनपुर कवर्धा से। तो लीजिए श्रोताओं आनंद लीजिए आप सभी के पसंद का इस गीत को।

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ पाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी नगमों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। और अब सुनिए आप सभी श्रोताओं के दिल से निकली पसंद का फिल्म अवतार का ये मधुर नगमा। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। आप है धाड़ी नांदोरा महाराष्ट्र से, श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे, वैशाली बाठे, गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। आप हैं देवरी भाटापारा से, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गम्हाड़कर, सरिता गम्हाड़कर, सिद्धांत गम्हाड़कर, प्रिंस एकांश गम्हाड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गम्हाड़कर, वैशाली गम्हाड़कर, श्वेता सुमित गम्हाड़कर, ध्वनि गम्हाड़कर, छत्रपति संभाजीनगर से आप हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश, सनावद मध्य प्रदेश से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक सचिन कटारिया, श्रीमती प्रभा कटारिया, कृष्णा विराज अर्नव और काव्यांशी कटारिया। संतोष, हिमेश, लक्ष्मी, प्रतिभा गुप्ता, हितेश आप सभी हैं भीमखोज तरपोंगी से, ग्राम फरसगांव जिला कोंडागांव से फागेश्वर मंडावी जी, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, धनेश तिवारी, सावन नायक, अंकिता और बेबी वैदही जोशी, कामठी नागपुर से श्रीमती किरण शर्मा, कैलाश प्रसाद शर्मा और आशीष कुमार शर्मा और अमृता शर्मा। तो लीजिए श्रोताओं, सुनिए आपकी मनपसंद का ये गीत।

और अब सुरों की सौगात, जिसे आपने चुना है फिल्म सितारा से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और भूपिंदर के, लफ्ज हैं गुलजार के, संगीत निर्देशक है आरडी बर्मन का और पसंद करता है आप सभी। आप हैं श्री श्रृंगी ऋषि महानदी सिहावा पर्वत अंचल से, अंचल ग्राम बिलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, देवपीठ वाशिम से राजेश खंबायतकर, प्रेमा खंबायतकर, राजश्री भावसार और प्रीति, नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत और राघवेंद्र साहू, शिवाजी चौक राजीम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष्ण श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक और झावेंद्र कुमार वर्मा, महादेवघाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारिणी, सूरज सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर, शहडोल मध्य प्रदेश से सोनू खान, मोनू खान और गोलू खान, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी और हिना कौसर, संबलपुर कांकेर से आप हैं फागुराम यादव जी, जगराव पंजाब से सुनील पाठक, देवशंकर तामुरिया, अजय देवी तामुरिया, तुषार देव, डॉली, पूजा और प्रभा देवी तामुरिया, आप सभी हैं डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से, अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक और तन्वी गौहर, तीन महुआ खापरखेड़ा से तुलसीराम साहू, हेमंत, मुकेश, आरती, ममता, जिगर और हर्षिता साहू। तो रिजेश श्रोताओं, सुनिए आप सभी का पसंद किया हुआ ये सुरीला तराना।

श्रोताओं, आपकी फरमाइश की महफिल में अब सजने जा रहा है कार्यक्रम श्रोता सुमन का ये अंतिम और सुरीला नगमा। आपकी चाहतों का ये गीत फिल्म मेरे हमसफर से। इस गीत को गाया है मुकेश और लता मंगेशकर ने, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। आप है महाराष्ट्र बीड शहर से, प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और संपत्ति पंचोलिया। बनबघेरा से आप हैं योगेश सारवा जी। आदर्श नगर मलोट से आप हैं राज वर्मा, मीना वर्मा, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा। नेहरू वार्ड यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता और मुस्कान मालाकार। खतियापारा जुना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश देवांगन, आशीष देवांगन, रवि, मोनू, सोनू, कान्हा और आदित्य देवांगन। तेलीपारा बिलासपुर से रजन साहू, बेबी ईशानी साहू, छन्नूलाल शिवास और अनीता शिवास। तो लीजिए श्रोताओं, सुनिए आप सभी संगीत प्रेमियों की पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।

0: अभी आप फरमाइशी नगमों का कार्यक्रम श्रोता सुमन सुन रहे थे। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द मिड डे न्यूज। The headlines. 21 people killed in a massive fire at a hotel in Delhi's Malviya Nagar. Prime Minister Narendra Modi expresses grief, announces an ex gratia of 2 lakh rupees to next of kin of each deceased. Trinamool Congress faces turmoil as expelled MLA Ritobrata Banerjee claims support of nearly 60 MLAs in West Bengal Assembly. Supreme Court forms high-powered expert panel to re-examine Aravali definition. Senior Congress leader D.K. Shivakumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. India becomes world's second largest solar growth market, surpasses USA in annual solar capacity additions. And in Indonesia Open Badminton, H.S. Pranoy and Ayush Shetty to play in men's singles this afternoon. And now the news in detail. 21 people lost their lives and 40 others were rescued after a fire broke out at a hotel in Malviya Nagar in Delhi this morning. DCP of South Delhi, Anant Mittal, said the fire has been successfully extinguished with the assistance of 8 fire tenders. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the loss of lives in the fire incident. In a social media post, the Prime Minister said that authorities are providing all possible assistance to those affected. He also wished a speedy recovery to the injured. Mr. Modi also announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund to be given to the next of kin of each deceased. The injured would be given 50,000 rupees. Vice President C.P. Radhakrishnan, Home Minister Amit Shah and Delhi Chief Minister Rekha Gupta have also extended condolence over their loss of lives. More from our correspondent.
2: The fire incident occurred at 8:48 this morning. Soon after the incident, teams from Delhi Fire Services, Delhi Police, the District Disaster Management Authority and other emergency response agencies were swiftly mobilized and launched rescue and relief operations. More than 40 people have been rescued and shifted to nearby hospitals for treatment. The fire has been brought under control with the help of 8 fire tenders. Rescue and search operations are still underway and all concerned agencies remain deployed at the site to provide every possible assistance to those affected. The cause of the fire is yet to be ascertained. Delhi Police has registered an FIR in connection with the incident. With Dipendra Kumar, Ankit Kumar, Akashwadi News, Delhi.
1: West Bengal's former ruling party, the Trinamool Congress, is in turmoil and on the verge of split. Expelled TMC MLA Ritobrata Banerjee claims the support of nearly 60 MLAs, a number that could decisively shift the control in the assembly. His faction has already written to Speaker Ratindra Bose asking to be recognized as the real the TMC. In a counter move, TMC announced Shobhandev Chattopadhyay as the leader of the house, with Ashima Patra and Nayan Bandopadhyay as deputies and Farhad Hakim as the chief whip. Former Chief Minister Mamata Banerjee at a rally in Kolkata accused the BJP of orchestrating the split. The Supreme Court has constituted a high-powered expert committee to conduct an independent review of the centre's report on the definition and delineation of the Aravali Hill Range. The committee will be headed by Kanchan Devi, Director General of the Indian Council of Forestry Research and Education. The panel has been asked to submit its report by 31st of August this year. The Apex Court said an impartial and scientific assessment is needed to address key issues related to the protection of the Aravali ecosystem. The court had earlier stayed the implementation of an Environment Ministry report submitted in October last year and called for a fresh review by independent experts. India has surpassed America in annual solar capacity additions to become the world's second largest solar growth market in 2025. India has crossed a remarkable 155 gigawatt of installed solar capacity, helping achieve country's 50% non-fossil fuel capacity target and fulfill its nationally determined contributions ahead of schedule. Highlighting the remarkable achievement, Union Minister for New and Renewable Energy Prahlad Joshi today said the country's solar growth story is setting global benchmarks and driving record capacity additions through strong policy support, innovation and world-class infrastructure. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has said that nearly 40,000 students have successfully submitted their re-evaluation applications and completed the application process without facing any issues. CBSE had yesterday opened the online portal for verification of issues observed in scanned copies of answer books and re-evaluation of answers for Class 12 students. The facility is available only to those students who have obtained the scanned copies of their evaluated answer books. In a social media post, CBSE informed that payment gateways of SBI, Canara Bank, Bank of Baroda and Indian Bank are available on the verification and re-evaluation portal for students applying for post-result services. CBSE has clarified that students are not required to hold accounts with any of these banks to complete the payment process. Karnataka Congress Legislature Party leader D.K. Shivakumar will be sworn in as the 25th Chief Minister of Governor Thavarchand Gehlot at 5 past 4pm in Bengaluru today. Former Home Minister Dr. G. Parmeshwar will be sworn in as the Deputy Chief Minister. Along with them, 12 legislators are to be sworn in as ministers today. More from our correspondent.
3: After Siddaramaiah stepped down as CM on May 28, the Congress Legislature Party had elected 64-year-old D.K. Shivakumar as its leader, paving the way for him to assume the office today. Congress leader Rahul Gandhi, National President Mallikarjun Kharge, Congress General Secretaries K.C. Venugopal and Randeep Singh Surjewala, and some Congress chief ministers, religious leaders, laborers, writers, actors, and prominent businessmen and industrialists have been invited for the swearing-in ceremony. The students of Doddalahalli Government School have also been called for the ceremony as it is the place from where Shivakumar hails from. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
1: Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a five-day visit to India from today. During the visit, she will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi to review the full spectrum of India-Venezuela relations. The two countries will explore avenues for cooperation in key sectors including trade, investment, energy, renewable energy, healthcare and pharmaceutical. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at EIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and download the News on EIR app. President Draupadi Murmu today inaugurated the National Conclave on Strengthening of Integrated Tribal Development Agencies and Integrated Tribal Development Projects in New Delhi. Addressing the occasion, the President said that tribal society living across the country is culturally very rich and efforts must be made to bring the tribal community forward. She said development must reach the last home and the last village. Ms. Murmu expressed concern that there are still some sections of tribals who are unaware of the various schemes of the government.
4: PM Janman Yojana ke तहत जनजातीय समुदाय में भी सबसे पिछड़े समूहों के 20,000 से अधिक गांव तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाने का लक्ष्य है हम सब जानते हैं 75 जो ग्रुप्स वो है पीबीटीजी सबसे पिछड़े अभी भी कोई पेड़ के मंच के पे रहते हैं उनके कोई जमीन नहीं जमीन था लेकिन रिकॉर्डेड नहीं इसलिए उनको जमीन देकर घर बनाना उनके हर चीज के लिए अधिकारी लोगों को जितने कर्मचारी लोगों का दायित्व है
1: The President called upon all the agencies and stakeholders to ensure the development of every aspect of tribal welfare including dignified job for youth and school for every tribal child.
4: ये दूर दराज के लोग जो जंगलों में रहते हैं उन तक एक रोडमैप बनाना चाहिए आप कौन सी गांव को कवर किया कौन सी पॉपुलेशन कितने ट्राइबल कितने लोग हैं कहां तक हम पहुंच पाए कहां तक नहीं पाए पढ़ा लिखा होते हुए भी बहुत लोग बहुत चीजें जानते हैं लेकिन वो खुलते नहीं लेकिन उनको खुलना पड़ेगा शामिल होना पड़ेगा देश के विकास के लिए समाज के विकास के लिए आदिवासी लोगों को आगे लाने के लिए तो खुद को ही कुछ करना पड़ेगा.
1: She stressed that tribal youths must be encouraged to participate in sports activities. Union Minister for Youth Affairs and Sports Mansukh Mandaviya has urged India's youth to embrace cycling and lead the movement for a fitter, healthier and greener nation. Sharing a video message on the World Bicycle Day, the minister noted that adopting cycling as a regular habit can encourage a balanced and disciplined lifestyle while also supporting environmental sustainability and cleaner mobility. He added that cycling not only helps individuals maintain physical and mental well-being, but also contributes towards building a healthier and greener nation.
5: Cycling keeps us fit, energizes the body and improves mental health. The more we use the cycle, the less pollution there will be and the country will benefit from the saving of petrol and diesel. In this era of global challenges, Prime Minister Narendra Modi has also urged the people of the country to reduce their dependence on petrol and diesel vehicles. In this regard, cycling can become an effective and positive solution.
1: In Mizoram, Union Minister of State for Information and Broadcasting and Parliamentary Affairs, Dr. L. Murugan, has called upon the people to actively participate in the nation-building process and contribute towards the vision of a developed India by 2047 under the Viksit Bharat initiative. During an interaction with government officials at Kolasib district, the minister emphasized that the central government places high priority on the development of the northeast region. Prime Minister Narendra Modi today shared an article authored by Union Minister Chirag Paswan highlighting the unlocking of new opportunities in Ladakh. In a social media post, the Prime Minister noted that a berry native to Ladakh is scripting a story of innovation and opportunity. He observed that the article presents a compelling reflection on how entrepreneurship and value addition are opening new avenues of prosperity in Ladakh. The RBI, Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee, began its three-day policy meeting in Mumbai today, with experts widely expecting the central bank to maintain the status quo on interest rates amid volatile global conditions driven by the ongoing tensions in West Asia. The policy decision will be announced on Friday. The June review comes amid sustained geopolitical tensions and volatile global crude oil and gas prices, which have complicated the outlook. Debunking reports of gold sales, the Reserve Bank of India today said there has been no change in its physical gold stock, which remains steady at 880.52 tons. The clarification comes after reports suggested that the central bank may have sold gold worth approximately $12 billion to shield its foreign exchange reserves from the impact of the ongoing conflict in West Asia. The United Nations Weather Agency has warned that a moderate to possibly strong El Nino is likely to develop in the coming months, raising concerns over higher global temperatures and more extreme weather events. According to the World Meteorological Organization, warming sea surface temperatures in the central and eastern Pacific Ocean are driving the phenomenon. The agency has forecast above average temperatures across most parts of the world from June to August and said El Nino conditions are likely to persist until November. The IMD has forecast hot and humid weather over parts of the northeastern region and Odisha, Konkan, Goa and sub-Himalayan West Bengal today. The Met Department has also predicted thunder squall conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan and Telangana for today. In Indonesia Open Badminton, HS Pranoy will face Ireland's Nat Nguyen and Ayush Shetty will meet China's Wang Hongyang in the men's singles this afternoon. In men's doubles, pair of Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty suffered a setback after losing to Malaysia Kai Shing Pang and Aaron Thai by 6-11 in their match today. Benchmark domestic equity indices were trading over 0.5% lower in the afternoon trade today amid geopolitical jitters. The Sensex lost 524 points to 74,125, while the Nifty fell 147 points to 23,336 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. 21 people killed in a massive fire at a hotel in Delhi's Malviya Nagar. Prime Minister Narendra Modi expresses grief, announces an ex gratia of 2 lakh rupees to next of kin of each deceased. Trinamool Congress faces turmoil as expelled MLA Ritabrata Banerjee claims support of nearly 60 MLAs in West Bengal Assembly. Supreme Court forms high-powered expert panel to re-examine Aravali definition. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. India becomes the world's second largest solar growth market, surpasses USA in annual solar capacity additions. And with that, we end the midday news.
6: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath, main Lavleen Nigam. दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया. प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा. पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची. सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना. वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा. और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे. अब समाचार विस्तार से. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है. दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है. एक रिपोर्ट.
7: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई. इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है. 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है. हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं. आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
6: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.
8: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी. आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा. एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा.
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं. उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है. राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है. उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की. उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की. गृहमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है. उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया. इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए. राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए.
4: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तली इलाकों में होते हैं. ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व।
6: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को सरकार साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रूपये मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में दो पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट पूरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं।

0: सोशल मीडिया हैंडल एक्स एट एआईआर न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसी प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व एसआईआर मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय आयरलैंड के नहन ग्वेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओमबाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व

0: विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस वक्त दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कला और कलाकार।
2: दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा।

0: तो दादा दीदी मन काय रसरसिया गीत के सुनलू और नंगत गोट मन के बले करलू मांतर आम्ही रोजी दिना असन जसन की तुम्ही बले जानसास की आमचो कार्यक्रम चो नाम आहे कला और कलाकार ए थाने आम्ही कोणी ना कोणी कलाकार मंचो गोटमाद मन के करू से हुसनी आजी चो कलाकार ने के जी सुब्रमण्यम चो बारे ने गोटबात करूं दे। के जी सुब्रमण्यम भारत चो प्रसिद्ध आधुनिक चित्रकार मूर्तिकार लेखक और कला शिक्षक रला एमन भारतीय आधुनिक कला चो सबले महत्वपूर्ण कलाकार मनले गोटोक आत एमन चो पूरा नाव कलाथील गोविंदन सुब्रमण्यम रहे एमन चो जन्म 1924 के केरल ने हो रहे भारतीय कला के नुआ सोच नुआ दिशा और आधुनिक पहचान देतो ने महत्वपूर्ण योगदान दिला आधुनिक कला ने के जी सुब्रमण्यम चो योगदान सबले अहम आए एमन पूरा भारतीय पारंपरिक कला और आधुनिक कला के जोड़तो चो काम करला एमन आपलो कला ने लोक कला परंपरागत भारतीय चित्रकला आधुनिक विचार सामाजिक संदेश के नगर ढंग ले प्रस्तुत करला एमन चो कला चो विशेषता खूबे आए परंपरा और आधुनिकता चो मेल दखूक मिरवाए एमन चो कला ने भारतीय परंपरा और आधुनिक शैली चो संगम दखा दीवाए एमन ये दखाला कि आधुनिक कला भले भारतीय संस्कृति ले जुड़न करी रहुक सके रंग मन के आप लोग कला ने काम ने आनला चमकीला और आकर्षक रंग चो उपयोग करते रहोत एमन चो पेंटिक जीवंत और भावना ले भरून रहे लोक कला का जे प्रेरणा आत एमन भारतीय लोक कला और गांव चो जीवना ले खूबे प्रभावित रला एमन चो कला ने लोक सामाजिक संदेश दिला एमन चो कई कलाकृति समाज संस्कृति और मानव जीवना ले जुड़लो संदेश दिला हाँ तो दादा दीदी मन असनी गुड बात होते रह दे असनी जहाला आसे ये जहाला के सुनो
1: बदले मत तांक अच्छा मानेड़ा इलाज चुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत तांक जानवर किन इलाज तगवेंट राहत दरकना उम्मीद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दरकिता जीएसटी तक कोंडे पुनाव मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कॉन्क्रीट चॉइस।
0: हाँ तो दादा दीदी बन नंगत गोट मान बात मन के सुन लू और आमी गोट बात करते रहूं के जी सुब्रमण्यम चो बारे ने। के जी सुब्रमण्यम शिक्षा और कला चो क्षेत्र ने योगदान दिला एमन गोटोक महान शिक्षक गुरु रला महाराजा शिवाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा और शिवा भारती यूनिवर्सिटी जैसन संस्था मन ने शिक्षा दिला खूबे पीला मन के आधुनिक कला चो नुआ दिशा दखाला एमन कई कला मंचो जरियाले काम करला चित्रकला भित्ति चित्र रेखांकन मूर्तिकला खिलौना बनातोर कांच उपरे चित्रकारी जैसन कला मन ने काम करला के जी सुब्रमण्यम चो योगदान काजे भारत सरकार बाटले कई सम्मान मिलली जैसन की पद्मश्री पद्म भूषण ये सम्मान हुन मंचो महान कला साधना के दखा हुआ है आधुनिक कला के अंतर्राष्ट्रीय स्तर ने पहचान दिलाला एमन ये सिद्ध करला कि कला सोजे सुंदरता चो जरिया नहीं आए बल्कि विचार और समाज के बदलतो चो शक्ति आसे के जी सुब्रमण्यम भारतीय आधुनिक कला चो महान कलाकार रला एमन भारतीय परंपरा और आधुनिकता के जोड़न करी कला के नुआ ऊंचाई ने अमराला एमन चो योगदान भारतीय कला जगत काजे प्रेरणादायक आए हाँ तो दादा दीदी मन कितरो नंगत गोट बात मन के कर लू और नंगत गोट मन के सुन लो ने मन हरिक लागुआ और मन हरिक खोलो ने गीत गोविंद सुनु भाए तो असनी गीता से ये गीत कुरिया मनात त्रिनाथ सिंह और हनुमान जो संगवारी अले

हाँ, तो दादा दीदी मन काय रसरसिया गीत रली, गीत गोविंद सुनते रलो ने मन के खूबे अस्थिर लागुआ, गीत गोविंद और सुनु भगवाए। तो दादा दीदी मन असनी और गीता से ये गीत कुरिया मनात रामनाथ कश्यप और हनुमान जो संगवारी आले तेबे ये गीत के सुनू।

हाँ तो दादा दीदी मन रसरसिया गीत के सुन लू और ज्ञान ध्यान चो गोड मन के बले सुन लू। ज्ञान ध्यान और गीत गोविंद के सुनते रलो ने खूबे नंगत लाग हुआ और ये सपाय के सुनते रलो ने समयाचो पता बले नहीं चले। मानतर तुम्हें बले जान सास कि आम के समयाचो मोल के समझ तो रहा समया काची काजे नीठे वे एक हार गेली समया बोहड़ून दोबारा नी मेरे एची काजे समयाचो मोल खूबे आए। तो दादा दीदी मन फिर कोनी दिने होनी समया ने भेट गाँव ढों दे तो जा तो पूरे मौके विदा दिया एची संगे कला और कलाकार सुनतो सपाय गाँव करिया दादा दीदी सियान सजन और संग जोहरिया मन के मैं सेवती करें से जुहार।

अभी आप कार्यक्रम कला और कलाकार सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। मीडियम वेव पर हमारे कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होते हैं। शाम 5 बजे मीडियम वेव पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। FM बैंड 100.1 MHz पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। अब हमें इजाजत दें। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर।

केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज और कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। सबसे पहले सुनिए आज के सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अभी कुछ ही समय पश्चात शाम 5:05 पर सुनेगा देशभक्ति गीत। साथ ही सुनेंगे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी शाम 5:10 पर। शाम 6:30 पर सुनेगा गोंडी समाचार बुलेटिन। दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर का प्रसारण होगा शाम 7 बजे। शाम 7:20 पर सुनेगा ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव। कार्यक्रम कुड़ई फूल प्रसारित होगा रात 8 बजे। इसमें सुनेगा कार्तिकराम बघेल और साथियों की प्रस्तुति में हल्बी गीत। पिलामन काजीगोट का प्रसारण होगा रात 8:30 पर। उर्वशी पाणीग्राही की प्रस्तुति में सुनेगा पंचतंत्र की कहानी हल्बी में। रात 9:15 पर आप आनंद लीजिएगा कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। रात 9:30 पर शासकीय योजनाओं की जानकारी पर आधारित कार्यक्रम उवाट सुनिएगा हल्बी में। इस कार्यक्रम में आज का विषय होगा श्रम विभाग की योजनाएं। इस विषय पर यशपाल सिंह ठाकुर से भेंट करेंगे बलबीर सिंह कच्छ। कार्यक्रम परिचर्चा में सुनेगा विवाह संस्कार की परंपरा रात 10 बजे। प्रतिभागी होंगे सुमारू राम कौशिक, मंधर राम नाग। संपादक होंगे बलबीर सिंह कच्छ। पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनी गंधा आप सुनेगा रात 10:30 पर। ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों की जानकारी। अब सुनिए कल की सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल शाम 4 बजे सुनेगा हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात 10 बजे। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल प्रातःकालीन सभा में सुबह 6:05 पर होगी भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सुबह 6:20 पर प्रसारित किया जाएगा चिंतन। आलेख और स्वर होगा लेखराम साहू का। श्री रामचरितमानस का गायन होगा सुबह 6:25 पर। स्वर होगा पीडी जशराज और साथियों का। संगीत निदेशक होंगे सतीश भाटिया। सुबह 6:35 पर आप सुनिएगा हल्बी कृषि सामिकी पर आधारित कार्यक्रम बेड़ा खाड़ा चौकोट। इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा दोपहर 1:05 पर। लोकवाद धुन पर आधारित कार्यक्रम हुलहुली का प्रसारण होगा सुबह 6:40 पर। इसमें आप सुनिएगा परदेशी माटापाड़। कलाकार होंगे भारत और साथी। सुबह 7:05 पर प्रसारित किया जाएगा नमस्कार जगदलपुर। इसके आकर्षण होगा नाटक नन्ही कली। लेखक होंगे तिलक चंद देवांगन। निर्देशक होंगे शाहिद हुसैन। साथ ही सुनेंगे मधुर गीतों का कार्यक्रम मधुरीमा। सुबह 8:30 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम लोकमंजरी, विभिन्न बोलियों में लोकगीत। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण होगा सुबह 9 बजे। सुबह 9:30 पर आप सुनेगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये कार्यक्रम आधारित होगा फिल्म क्या कहना पर। गुलशन शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत आप सुन सकते हैं सुबह 10 बजे। सुबह 10:30 पर आप सुनेगा बस्तर के लोकगीतों का कार्यक्रम गुड़धूम। इसमें सुनेगा ध्रुवी गीत। प्रस्तुति होंगे कलावती और साथी। एक ही कलाकार आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। सुबह 11:30 पर आप सुनेगा गुलदस्ता गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम। कार्यक्रम पाटावेनार में सुनेगा ध्रुवी गीत। प्रस्तुति होगी जयती नाग और साथियों की दोपहर 12 बजे। दोपहर 12:30 पर आप सुन सकते हैं ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार। और फरमाइशी फिल्मी गीतों का दैनिक कार्यक्रम श्रोता सुमन आप सुनेगा दोपहर 1:10 पर। दोपहर 2:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम कला और कलाकार। कल सांध्यकालीन सभा में शाम 5:05 पर सुनेगा समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हल्बी बोली में। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होगा शाम 5:10 पर। शाम 6:35 पर सुनेगा हल्बी गीत। प्रस्तुति होगी मेघनाथ पटनायक और साथियों की। दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर आप सुन सकते हैं शाम 7 बजे। शाम 7:20 पर प्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम डांडामाली में आप सुनेगा ध्रुवी गीत रात 8 बजे। कलाकार होंगे कोया और साथी।
रात 8:30 पर कार्यक्रम पिलमन काजे गोठ हल्बी में सुनेगा डॉक्टर एनी बेसेंट से जुड़ी जानकारी हल्बी बोली में। प्रस्तुति होगी पूर्णिमा सरोज की। कार्यक्रम ग्राम पंचायत की विकास गाथा का प्रसारण होगा रात 9:15 पर। इस कार्यक्रम में विषय होगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। वार्ताकार होंगे बलबीर सिंह कच। रात 9:30 पर कार्यक्रम रेनी में सुनेगा ध्रुवी की। प्रस्तुति होगी महंगू राम और साथियों की। ये दी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज और कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

अभी आप आनंद ले रहे थे देशभक्ति गीत का। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। पेश है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार संगवारी मन, पिछले कई दिन ले आप मन सपाय नौतपा चो तब तो गर्मी जो अनुभव तो करला सोती आय कसन और उम्मीद बले करुण से कि ये गर्मी ने आप मन आप लो स्वास्थ्य चो ध्यान बले संगाला सोती और आज जो कार्यक्रम ने स्वागत करुण से मैं आप मन चो संगवारी नूतन भारद्वाज
1: और मैं आपन मन चो संगवारी किरण कश्यप आपन मन सपाय युवाणी सुनतो संगवारी मन के हमी दोनों करुण से जोहार।
0: और कसन किरण बेड़ा खाड़ा बाटे बल जाए सित कसन पल्हा पल्ही बल पकालास की नहीं
1: जाऊन रले काय पिछले हफ्ता मन ने मंतर काय संगवा ए दुई दिन काय डहा लागते रहे और बुता मन बले आसे चिकाए मंतर जाऊ बले नी भाई से के बे घाम के बे बादरी करे से।
0: हाँ मौसम तो असनीची होली से मंतर नी भाई बलून बले कसन करवास जाऊ तो पड़ली से।
1: हाओ काय जातुर ची आए काय एबे तो गांव जो लोग मन ये ची बुता मन ने भुरला से ची आले बेड़ा खाड़ा बुता मन तो होते ची रह दे आज जो कार्यक्रम जो विषय काय है संगवारी मन के सांगुंद।
0: हाँ विषय तो असन आए जो न वर्तमान और भविष्य दोनों ले जुड़ी से विषय आए एआई और ऑटोमेशन जो दौर ने नुआ करियर जो अवसर संगवारी मन दुनिया बले खूब झटके बदले से ने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता बल्लो ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन आम जो जीवना चो हर क्षेत्र ने प्रवेश कर ली से असन ने युवा मन चो मन ने ये सवाल बले उत्तर स्वाभाविक आए कि भविष्य ने कौन करियर सुरक्षित और अवसर ले भरपूर रह दे आए कसन।
1: हाँ नूतन कई लोग तो मानवा कि एआई जो इलो लागून नौकरी मन खत्म हो से जबकि आधो लोग जो मानतोर बले आए कि एआई ले नुआ अवसर बले मिले से सत्य का ये जानतोर समझतो बले जरूरी होए से ने।
0: हाँ और असल गोट तो ये होए से कि एआई कई कार्य मन के आसान और स्वचालित बनाए से मंतर संगे संगे असन कई रोजगार मन बले आने से जचोले आगे कल्पना करतोर बले अमी सोचू नीरू ने।
1: हाँ ये तो सत्य बल सिस्तु ए थाने एआई इंजीनियरिंग डेटा साइंटिस्ट मशीन लर्निंग विशेषज्ञ साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ क्लाउड कंप्यूटिंग विशेषज्ञ डिजिटल मार्केटिंग जसन क्षेत्र ने बोले खूबे मांग बढ़े से।
0: हाँ आज तो आज जो समय ने एआई इंजीनियर मन जो बले मांग तो बढ़े सी ची और ये मन असन विशेषज्ञ रुआत जो न स्मार्ट सिस्टम और एप्लीकेशन विकसित करुआत अब मशीन लर्निंग विशेषज्ञ असन मॉडल विकसित करुआत जो न अनुभव और डेटा जो आधार ने खुद सीखवात
1: डाटा साइंटिस्ट जो बले आज जो समय ने महत्वपूर्ण करियर से ये आंकड़ा मन जो विशेषण करुण महत्वपूर्ण निष्कर्ष करुआ ये जो अलावा
0: कंटेंट क्रिएशन ने
1: ग्राफिक डिजाइन वीडियो एडिटिंग और सोशल मीडिया प्रबंध जैसन क्षेत्र मन ने बले नुआ संभावना उभरे से ने।
0: ये तो आई किरण मंत्र किरण ए आई ये कार्य मन ने सहायता तो करुआ मानते रचनात्मक सोच ले एवे बले इंसान मन इंसान मन जो सबले बड़े ताकत आए और अगर युवा मन करियर ने आगे बढ़ुक चाहे सो तो सबले पहल तो नया तकनीक मन ने डर तो चो पलटा उनके समझ तरह और सीख तो चो प्रयास कर तरह से ने।
1: हाँ और ये जो समय ने जो चाहे डिग्री ची निर्भर ने डिग्री जो निर्भर रले ने नहीं होए नुआ नुआ स्किल्स मन सीखते रासे और ये जो ऑनलाइन कई प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम मन बले उपलब्ध आसे।
0: हाँ ये तो तिनंगत गोट सांगलीस और संचार कौशल रचनात्मक सोच टीम वर्क और समस्या समाधान जैसन क्षमता मन जो बले विकास बले खूब जरूरी है।
1: हाँ ये तो आए कंप्यूटर और डिजिटल साक्षरता ने बले ध्यान देते जरूरी है।
0: और संगवारी मन सीखते केवे बननी करते रहे

0: गोड बलियाई की आजीवन सिकतर ही भविष्य चो सफलता चो कुंजी आए। और मैं ये बले बलते रले कि ग्रामीण क्षेत्र ने युवा मन का जे ये समय खूबे महत्वपूर्ण आसे। इंटरनेट और स्मार्टफोन चो मदद ले आज ही गांव ने रतो युवा मन बले ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सको।
1: ये तो आई किरण गोड बात तो होते चीरू आई किरण। आज चो दिन हम संगवारी मन का जे पुराना गीत मन बल तो आनुआम तो गीत बले सुन दखू।
0: हाँ का है?
1: तो संगवारी मन आप मन के सुनाओ दी ये पहल गीत फिल्म आप तो ऐसे ना थे ले जोन थाने आप लो आवाज दिला से मोहम्मद रफी, संगीत दिला से उषा खन्ना और गीत लिखला से नीदा फजील। तो संगवारी मन सुनो दखो ये गीत के।

0: फिल्म जो संगीत उषा खन्ना देवनडला ये जो सब ले रहे और जो कि आजी बले हिंदी फिल्म संगीत जो लोकप्रिय गीत में गिना जावा है। ये फिल्म 1980 जो दशक उन फिल्म मन ने गिना जावा है जोन प्रेम और आर्थिक स्थिति जो बीच जो संघर्ष भावनात्मक ढंग के प्रस्तुत करवा है। ये जो संगीत और कहानी दर्शक मन जो बीच खूबे लोकप्रिय रहे।
1: जानकारी तो अच्छा दिलीस किरण, और गीत वाले खूबे अच्छा रहे। किरण, मैं बोलते रहले कि एबे जो जो युवा मनात हो ना, प्रतियोगी परीक्षा मन जो तैयारी ने भिड़ला सोतने,
0: हाँ कन
1: तो क्यों नहीं मन कि आमी रोजगार जो सूचना मन बल देवन दखूने वही देखा सन।
0: हाँ
1: तो संगवारी मन, छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग ने अनुरेखक जो पद ने भर्ती का जे आवेदन प्रक्रिया चले से। ये जो आवेदन प्रक्रिया 22 मई ले शुरू होली से, और इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी मन आवेदन करु सकास। आवेदन जमा करते जो अंतिम तिथि 15 जून के निर्धारित करला से। इच्छुक अभ्यर्थी मन ले अनुरोध आए कि हुन मन अंतिम तिथि के बिना टाके समय रते रते आप लोग आवेदन पूरा करो। भर्ती ले संबंधित शैक्षणिक योग्यता होली, आयु सीमा होली, आवेदन शुल्क, चयन प्रक्रिया और आवश्यक जानकारी मन का जे विभाग द्वारा जो ऑफिशियल वेबसाइट रुआ है हुताने जान भाती आप मन अवलोकन करुक सका से।
0: छत्तीसगढ़ व्यापम नवा रायपुर बाटली महाविदेशक नगर सेना अग्निशमन और आपत्कालीन सेवा और SDRF मुख्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा ऑनलाइन जो प्रारूप प्राप्त अनुमोदन जो आधार ने फायरमैन जो रिक्त पद ने भर्ती परीक्षा काजे

0: पद ने बले भर्ती काजे आवेदन निकलनी से। ये अवसर हुन युवा मन का जे महत्वपूर्ण है जोन सरकारी क्षेत्र ने आप लोग करियर बनाव चाहे सोत। ये जो आवेदन कर तो जो अंतिम तिथि 8 जून के निर्धारित करला से और परीक्षा जो संभावित तिथि आए 26 जुलाई के और ये जो काजे मुख्य योग्यता 12वीं पास और 12वीं जो विज्ञान ने उल्लेख काजे बल्ला से। ये भर्ती जो अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी मन की प्रयोगशाला ने विभिन्न परीक्षण मन और पर्यावरणीय नमूना मन जो विश्लेषण काजे कार्य ने सहयोग करतो काजे आसे।
1: कर्मचारी चयन आयोजन बल्लो ने एसएससी ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा एसएससी सीजीएल 2026 का जे आवेदन प्रक्रिया शुरू होली से। ये परीक्षा केंद्र सरकार जो कई मंत्रालय मन और विभाग ने भर्ती जो माध्यम आए आवेदन जो अंतिम तिथि 22 जून के निर्धारित होली से इच्छुक अभ्यर्थी मन समयारते आवेदन करून तैयारी करू सकास।
0: संगवारी मन ये तो रली रोजगार सूचना जो गोट मन समयारते झटके आवेदन करा और ये जो तैयारी मन ने बल्ले लगू रहा। यदा कार्यक्रम ने आगे बढ़ू और आप मन के फेर गोटो गीत सुनाऊं दे फिल्म लोफर ले। इथा स्वर दिला से लता मंगेशकर, संगीतकारात लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकारात आनंद बख्शी।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: लोफर गोटोक असन फिल्म है जो मनोरंजन संगी संगी ये संदेश बले दिवाए कि कोनी व्यक्ति जो मूल्य केवल हुन बाहरी छवि ले नहीं बल्कि परिस्थिति चाहे जोन बले हो, अच्छाई और ईमानदारी अत्यंत जरूरी है।
4: तो संगवारी मन, एदा आप मन के सुनाऊं दे आमी गोटोक वार्ता जो शीर्षक है घोटुल परंपरा और आज का समय। घोटुल बल्लो ने बस्तर अंचल चो जनजातीय संस्कृति चो गोटोक अनूठी और महत्वपूर्ण परंपरा है। ये केवल गोटोक भवन या जगह नु है बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक जीवन चो केंद्र बलिया है। विशेष रूप ले मुरिया जनजाति ने ये घोटुल चो परंपरा सदियों ले बनाए सोत। तो ये घोटुल परंपरा के सुनुंदखू सिद्धार्थ मानिकपुरी चो गोट ने।
5: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं सिद्धार्थ मानिकपुरी। श्रोताओं, आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो हर आदिवासी समाज की एक अनोखी और समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। विषय है घोटुल परंपरा और आज का समय। श्रोताओं, पहले हम बात करने जा रहे हैं घोटुल परंपरा के बारे में। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की मुरिया और गोंड जनजाति की सदियों पुरानी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अनोखी सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक शिक्षा परंपरा है। इसे आदिवासी समाज की पारंपरिक युवा पाठशाला या युवा गृह कहा जाता है। आधुनिक समाज में अक्सर इसे लेकर कई भ्रांतियां रही, लेकिन वास्तव में यह अनुशासन, समानता और अपनी संस्कृति को सहजने का एक बेहतरीन केंद्र है। घोटुल परंपरा की मुख्य बातें संरचना और नामकरण। घोटुल गांव के किनारे मिट्टी, बांस और पेड़ों के सूखे पत्तों, तिनको और सूखी घास से बनी एक बड़ी झोपड़ी होती है जिसकी दीवारों पर सुंदर पारंपरिक चित्रकारी की जाती है। इसमें भाग लेने वाले युवक युवतियों को विशेष नाम दिए जाते हैं। युवक इन्हें छेलिक कहा जाता है। इनके प्रमुख को सरदार या सिरेदार कहते हैं। युवतियां, इन्हें मोतियारी कहा जाता है। इनके प्रमुख को बेलोसा कहा जाता है। घोटुल का मुख्य उद्देश्य यानी कार्य प्रणाली यह केवल एक रहने की जगह नहीं बल्कि एक जीवन कौशल सिखाने का केंद्र है। शाम ढलते ही गांव के आदिवासी अविवाहित युवक युवती यहां इकट्ठे होते हैं और निम्नलिखित बहुत सारे गतिविधियां होती हैं, जैसे सांस्कृतिक शिक्षा, वरिष्ठों की देखरेख में युवा पीढ़ी को अपनी जनजाति के लोकगीत, पारंपरिक नृत्य, मांदरी या गेड़ी नृत्य, लोक कथाएं और इतिहास सिखाया जाता है। सामाजिक अनुशासन और सेवा घोटुल के सदस्यों की जिम्मेदारी गांव के त्योहारों, शादियों और सुख दुख के कार्यों में हाथ बांटना होता है। लड़कों को समाज की सुरक्षा व मेहनत और लड़कियों को स्वच्छता व प्रबंधन सिखाया जाता है। लैंगिक समानता घोटुल आदिवासी समाज में महिलाओं के अधिकारों और समानता का सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ दोनों को अपने विचार रखने और निर्णय लेने का बराबर अधिकार होता है। जीवन साथी का चुनाव घोटुल में युवाओं को एक दूसरे को समझने और अपना जीवन साथी चुनने की आज़ादी होती है। अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर इसकी रीतियों में थोड़ा अंतर होता है। कुछ क्षेत्रों में युवा दिन भर की गतिविधियों और सामाजिक चर्चा के बाद रात को अपने अपने घर लौट जाते हैं, जबकि कुछ वहीं ठहरते हैं। यहाँ आपसी सहमति और आदर को सबसे ऊपर रखा जाता है। जब कोई थोड़ा एक दूसरे को पसंद कर लेता है तो सामाजिक और पारिवारिक सहमति से उनकी शादी करा दी जाती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य घोटुल को लेकर बाहरी दुनिया में कई तरह की गलत धारणाएं फैलाई गई, जिसका आदिवासी समाज ने हमेशा विरोध किया है। मानव शास्त्रियों के अध्ययन के अनुसार यह एक बेहद पवित्र और अनुशासित संस्था है, जहां अभद्रता या जबरदस्ती की कोई जगह नहीं होती। आज के समय में आधुनिक शिक्षा, शहरीकरण, मोबाइल, इंटरनेट और बदलती जीवन शैली के कारण घोटुल परंपरा पहले जैसी नहीं रही। कई गांवों में यह लगभग समाप्त हो चुकी है। इसके पीछे मुख्य कारण है आधुनिक स्कूल और हॉस्टल व्यवस्था। पहले आदिवासी समाज में बच्चों और युवाओं को जीवन से जुड़ी शिक्षा घोटुल में मिलती थी। रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन। आज रोजगार, पढ़ाई और बेहतर जीवन की तलाश में कई युवा शहरों की ओर जा रहे हैं। गांव में युवाओं की संख्या कम होती जा रही है। पारंपरिक कार्यक्रमों में भागीदारी घटती जा रही है। नई पीढ़ी शहर की जीवन शैली अपनाने लगे हैं। घोटुल जैसी सामुदायिक संस्थाएं कमजोर पड़ने लगी है। बाहरी संस्कृति का प्रभाव टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के कारण बाहरी संस्कृति तेजी से गांवों में पहुंची है। इससे पहनावा, भाषा और संगीत में बदलाव आया। लोकगीत और पारंपरिक नृत्य कम होने लगे। पश्चिमी और शहरी संस्कृति का आकर्षण बढ़ा। पारंपरिक नियमों और रीति रिवाजों में रुचि घटने लगी। हालांकि इससे नई जानकारी, अवसर भी मिले, लेकिन स्थानीय सांस्कृतिक पहचान पर असर पड़ा।

पारंपरिक जीवन शैली में बदलाव। पहले आदिवासी समाज प्रकृति और सामूहिक जीवन से गहराई से जुड़ा था।

0: अब खेती और जंगल पर निर्भरता कम हो रही है। आधुनिक तकनीक और बाजार का प्रभाव बढ़ा है। संयुक्त सामुदायिक जीवन की जगह व्यक्तिगत जीवन बढ़ रहा है। पारंपरिक त्यौहार और सामूहिक गतिविधियां कम हो रही है। इन बदलावों ने घोटुल जैसी संस्थाओं की भूमिका को धीरे धीरे सीमित कर दिया। इन सभी कारणों ने मिलकर घोटुल परंपरा को प्रभावित किया। घोटुल परंपरा आदिवासी की समृद्ध सांस्कृतिक सोच और सामूहिक जीवन का उदाहरण है। आधुनिक समय में भले इसका स्वरूप बदल गया है, लेकिन इसकी मूल भावना सामूहिकता, अनुशासन और संस्कृति का संरक्षण आज के वर्तमान समय में जीवित है। आदिवासी समुदाय आज भी अपनी संस्कृति, लोक नृत्य, त्यौहार और परंपराओं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन बनाना आज सबसे बड़ी चुनौती है। हमें अपने संस्कृति को भूलना नहीं, बल्कि अपनाना है। इसी के साथ ही मैं सिद्धार्थ मानिकपुरी अपनी बात को यहीं विराम करता हूं। धन्यवाद।
1: संगवारी मन, घोटुल परंपरा आम जो जनजातीय संस्कृति जो अमूल्य धरोहर है, ये सिद्धार्थ मानिकपुरी आप लोग गोट ने काय सुंदर सांगला। तो कार्यक्रम ने दाय आगे बढ़ूं दखूं और दखूं कि आप मन का जोर काया से। तो संगवारी मन, आप मन के दाय सुनाऊं दे और गोटो गीत फिल्म राम तेरी गंगा मैली ले, स्वर दिला से लता मंगेशकर, संगीतकारात रविंद्र जैन, गीतकारात हसरत जयपुरी। तो सुनू ये गीत के।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: एक गीत तो नंगत रैली नूतन, तो संगवारी मन के सामान्य ज्ञान चुक गुड बात बोले सुनाओ।
3: हाँ, तो ये लाला जगदलपुरी के तो जान इसका है?
2: हाँ, का है
3: हुन बस्तर संस्कृति चो रचिता आत और हुन बस्तर चो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नामक प्रसिद्ध पुस्तक बले लिखुन रहो। तो जोन थाने बस्तर चो इतिहास जनजातीय जीवन परंपरा और संस्कृति चो वर्णन रहे। और छत्तीसगढ़ जो पहल महिला साहित्यकार तो निरुपमा शर्मा रला जानिस का
2: हुन।
3: हाँ, और उनके छत्तीसगढ़ी भाषा जो पहल साहित्यकार और पहल कवित्री जो रूप ने बले जानुआत।
2: हाँ, तो छत्तीसगढ़ बस्तर अंचल ने आदिवासी मन जो अधिकार मन और शोषण जो खिलाफ ऐतिहासिक मोरिया विद्रोह होन रली। ये विद्रोह 1976 ने होन रली। ये आदिवासी समाज जो स्वाभाविक और जल जंगल जमीन जो बचाव का जय करुण रहो। ये विद्रोह नेतृत्व करता झाड़ासेरा रला। 1976 ने बस्तर चो राजा भैरमदेव द्वारा गोविनाथ कवरदास ने करुणरला जो नियुक्त करुणरला
3: दीवान नियुक्त कर रला। और ये दीवान नियुक्त तो होलो बाद जो उन जो जो शोषणकारी नीति मन और बाहरी हस्तक्षेप जो रला उन जो कारण ने आदिवासी मन खूब परेशान रला। हुनी काजे बले ये विद्रोह के करुप पड़ू रली। और आप मन जाना संगवारी मन एचो नेतृत्व करता रला झाड़ासी रहा। और विद्रोह चो गोठियाऊ बल्लो ने और गोटक विद्रोह आसे हलबा विद्रोह जो छत्तीसगढ़ चो क्षेत्र ने घटित पहल आदिवासी विद्रोह रली। ये मूल रूप ले बस्तर चो शासक दलपत देव चो बेटा मन जो रला अजमेर सिंह और दरिया देव चो बीच ने उत्तराधिकार संघर्ष चो कारण ने होन रली। और बस्तर बल्लो ने डोंगर चो शासक अजमेर सिंह हलबा जनजाति चो सैनिक मन और स्थानीय आदिवासी मन संगे मिलुन भाती एचो नेतृत्व कर रला। और हलबा विद्रोह बल्लो ने ये 1974 ले धरून 1979 तक चलुन रली। ये थाने हलबा जनजाति चो आदिवासी चो समुदाय चो जो लोग मन रला हुमन खूबे योगदान देव रला। और जो अजमेर सिंह रला हुन चो सहायता कर रला। ये थाने जो दरिया देव रला बल्ले अजमेर सिंह जो विरोध में रला। और ये था जो हलबा विद्रोह रला संगवारी मन मतलब हलबा विद्रोह ने हलबा आदिवासी जो लोग मन के गोटक तार चो जो रूक रुआ है होता इमन के खड़े करुण भाती मार रहो। तो जो के तार झोकनी बले बलवात।
2: तो संगवारी मन एची संगे हम जो जातो समय बले होले जाने सास घाम बले आए और सांझ होले ने रोजे पानी बले मारे से। तो जातो संगे मैं किरण कश्यप
3: और मैं नूतन भारद्वाज
2: हमें दोनों करूं से
3: शुभ संध्या
2: जोहार।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को है समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथेन्द्र बोस को सौंपा गया है। इसमें ऋतव्रत बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमें मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। शाम के 6:05 हुए हैं।

आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को है। छत्तीसगढ़ी में समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनाव पर काली मतगणना हो ही, संगरा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाई के परिणाम घलो घोषित करे जाही। राज्यपाल है अवैध और अनियंत्रित रेत उत्खनन में तुरते रोक लगाए के दिन निर्देश। औ प्रदेश में अवैया 24 घंटा के दौरान एक दो जगह में हल्का वर्षा हुए या गरज चमक के संग छींटा पड़े के संभावना है। अब समाचार विस्तार ले। प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनाव पर काली 4 जून के मतगणना होगी। काली त्रिस्तरीय पंचायत चुनाई के परिणाम घलो घोषित करे जाही। राज्य निर्वाचन आयोग है मतगणना के जम्मो तैयारी लगभग पूरा कर ले है। बता दन कि नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उप निर्वाचन पर 1 जून के मतदान हुए रहिस। नगरी निकाय में अध्यक्ष और पार्षद पद पर हुए मतदान में 84.58% मतदाता मन अपन मताधिकार के प्रयोग करें। उन्हें त्रिस्तरीय पंचायत में जनपद सदस्य सरपंच और पंच पद पर 78.61% मतदान दर्ज करेगिस। राज्यपाल रमेन डेका है आज लोकभवन में राखेगे एक ठिन उच्च स्तरीय बैठका में खनिज विभाग के सचिव पी दयानंद ले प्रदेश के नंदिया और बड़का नरवा में होवत रेती के अवैध उत्खनन ऊपर चर्चा करें। राज्यपाल है अवैध और अनियंत्रित रेत उत्खनन में तुरते रोक लगाए के निर्देश दिन। उमन कहिन कि रेती राज्य के विकास और बुनियादी ढांचा के निर्माण पर एक अनिवार्य खनिज है, लेकिन ओखर अनियंत्रित दोहन ले पर्यावरण ला गंभीर नुकसान पहुंचा थे। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काली 4 जून के गौरेला विकासखंड के ग्राम पंचायत लमड़ा में राखे गए जन समस्या निवारण शिविर में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री के प्रवास ले के जिला कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन है आज शिविर स्थल के निरीक्षण करके तैयारी के संबंध में जानकारी लीन। एकर पहली मुख्यमंत्री है काली कांकेर जिला में सुशासन तिहार के तहत कांकेर कोंडागांव नारायणपुर और बस्तर जिला में संचालित योजना और विकास काम के समीक्षा करें। प्रवर्तन निदेशालय के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC भर्ती घोटाला ले जुड़े धन शोधन मामला के जांच के तहत आज राज्य के आने आने जगह में तलाशी अभियान चलाई। एक कार्रवाई भिलई दुर्ग राजनांदगांव और रायपुर के लगभग 10 ठिकाना में करेगीस। तलाशी ले गए प्रमुख जगह में पूर्व CGPSC सचिव JK ध्रुव के भिलई स्थित निवास शामिल है। CRPF के सुरक्षा घेरा में ईडी अधिकारी मन दस्तावेज डिजिटल उपकरण और वित्तीय लेन देन ले जुड़े अभिलेख के जांच करें। ये कार्रवाई बच्चर 2020 ले 2022 के बीच आयोजित CGPSC भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितता के CBI जांच के आधार में करे जाते। ईडी के टीम है दुर्ग जिला के तलपुरी स्थित सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अमृत कुमार खलखो के निवास के घलो जांच करीस। अधिकारी मन संपत्ति बैंक खाता और दूसर वित्तीय अभिलेख ले जुड़े दस्तावेज के परीक्षण करें। इकर अलावा ईडी है राजनांदगांव में कृषि विस्तार अधिकारी भूपेंद्र गणवीर और तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक के रायपुर स्थित निवास में घलो दबिश दिस। छत्तीसगढ़ में सड़क ऊपर रहिया लैका मन के पुनर्वास पर जून महीना में विशेष सघन अभियान चलाए जाते। राज्य सरकार के बाल सक्षम नीति के तहत सड़क में रहैया भिक्षावृत्ति बाल श्रम और कचरा सकेले में लगे लैका मन के पहचान करके उमन के बचाव और पुनर्वास करे जाते। अभियान के तहत लैका मन ला सुरक्षित आश्रय शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराए जाते। जिला कलेक्टर मन के अगुवाई में गठित विशेष बचाव टीम डहाले चिन्हित हॉटस्पॉट जगह में अभियान चला के लैका मन ला संरक्षण दे जाते। राज्य सरकार है कहे है कि लैका मन के पुनर्वास सरलक प्रक्रिया है और ये काम साल भर तक चालू रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र के NDA सरकार के 12 बच्छर पूरा होए में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहर ले आज रतिहा 8 बजे ले छत्तीसगढ़ी में विशेष कार्यक्रम के प्रसारण करे जाही। ये कार्यक्रम के बेरा 5 मिनट के रही और एक प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र एके शंकर ही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगो बढ़वो बाचे समाचार कुती। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC हा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के लिखित परीक्षा के कार्यक्रम जारी कर दे है। आयोग के अनुसार मुख्य परीक्षा 6 ले 9 जून तक राखे जाही। परीक्षा हरेक दिन 2 पाली में होही। पहली पाली बिहनिया 9 बजे ले मझनिया 12 बजे तक और दूसरिया पाली मझनिया 2 बजे ले संझा 5 बजे तक आयोजित करे जाही। मुख्य परीक्षा अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और रायपुर स्थित परीक्षा केंद्र में आयोजित करे जाही। आयोग बताए है कि प्रवेश पत्र 25 मई के जारी करे जा चुके है। अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट ले अपन प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकत है। आयोग स्पष्ट करे है कि कोनो भी अभ्यर्थी ल अलग से प्रवेश पत्र या SMS नहीं भेजे जाही। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल है 10वीं और 12वीं के दूसरा अवसर पर मुख्य परीक्षा के समय सारिणी जारी कर दे है। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 8 जुलाई ले 22 जुलाई और हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 9 जुलाई ले 21 जुलाई तक रखे जाही। दोनों परीक्षा बिहनिया 9 बजे ले मझनिया 12:15 बजे तक आयोजित करे जाही। छत्तीसगढ़ ला प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आयोजित मंथ ऑफ सोलर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर राष्ट्रीय सम्मान मिली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एला राज्य पर गर्व के बात बताई है। मध्यम उपभोक्ता आधार वाला राज्य मन की श्रेणी में सबले ज्यादा वेंडर पंजीकरण के मामला में छत्तीसगढ़ देश में दूसरा स्थान पाए है, जेखर भर राज्य के चयन PM सूर्यघर एक्सीलेंस अवार्ड खातिर हुए है। मुख्यमंत्री है ए उपलब्धि पर ऊर्जा विभाग, क्रेडा और विद्युत वितरण कंपनी के टीम ल बधाई दिन है। उच्च शिक्षा विभाग प्रधानमंत्री शोध पीठ योजना पर आवेदन आमंत्रित करे है। ये प्रमुख राष्ट्रीय पहल के उद्देश्य वैश्विक स्तर में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, प्रयोगशाला, अनुसंधान संस्थान और उद्योग ले भारतीय मूल के प्रतिभाशाली अनुसंधानकर्ता, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ और पेशेवर मल्ला देश भर के प्रमुख सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र कोति आकर्षित करना है। दुर्ग पुलिस शेयर बाजार में निवेश के नाव में लाखों रूपया के धोखाधड़ी के मामला में एक जिन आरोपी ल गिरफ्तार करे है। पुलिस के अनुसार सुपेला रहवासी एक मनखे है, ज्यादा मुनाफा के लालच दे के कई मनखे मल्ला रकम निवेश कराईस और ओमल्ले करोड़ों रूपया के ठगी करीस। शिकायत के आधार में पुलिस आरोपी के खिलाफ दो ठीन आने आने प्रकरण दर्ज करे है। पुलिस आरोपी कराले एक ठीन कार, लैपटॉप, कंप्यूटर उपकरण, मोबाइल फोन, चेकबुक और लेन देन ले जुड़े दस्तावेज जब्ती करे है। आरोपी ला न्यायिक रिमांड में भेज देंगे है। और पेश है मौसम के हाल। प्रदेश में अवैया 24 घंटा के दौरान एक दो जगह में हल्का वर्षा होए या गरज चमक के संग छींटा पड़े के संभावना है। उन्हें कुछ एक जगह में अंधड़ चले और गाज गिरे के चेतावनी दे गए है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून पूर्व गतिविधि शुरू हो गए है। एक हसेती राज्य के कई ठीन जगह में मौसम अचानक बदला थे। यही बीच बीजापुर जिला के पेरमपल्ली गांव में गाज गिरे ले एक माई लोगिन के मौत हो गए। उन्हें दंतेवाड़ा जिला के चंदेनार साप्ताहिक बाजार में काली गाज गिरे ले 11 मनखे एक चपेट में आ गिन, जेमाले एक महिला के मौत हो गए। इकर अलावा मनेन्द्र कड़करा चरखर गांव में घलो गाज गिरे ले एक महिला के मौत हो गए। उन्हें 5 जिन दूसर मनखे झुलसा गए है। और अब थोरकुन समाचार सार में। छत्तीसगढ़ के पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और सेवानिवृत्त IAS BKS रे के निधन हो गए है। उमन लंबा बेरा ले बीमार रहीन और ओखर उपचार रायपुर एम्स में चलत रहीस। रायपुर नगर निगम है संपत्ति कर के साथ वसूले जाने वाला यूजर चार्ज में बढ़ोतरी करे है। नगर निगम के अनुसार आवासीय संपत्ति में सालाना 120 रूपया, उन्हें व्यावसायिक संपत्ति में 360 रूपया के बढ़ोतरी करे गए है। और शक्ति जिला के सेंदुरस गांव में पाछू रतिहा एक सियान दंपत्ति के हत्या कर देगीस। पुलिस मामला के जांच शुरू कर दे है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घंव फेर। प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनाव पर काली मतगणना हो ही संग्रह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम घलो घोषित करे जाही। राज्यपाल अवैध और अनियंत्रित रेत खनन में तुरते रोक लगाए के दिन निर्देश। और प्रदेश में अवैया 24 घंटा के दौरान एक दो जगह में हल्का वर्षा हो या गरज चमक के संग छींटा पड़े के संभावना है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु ETF मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं तैल विपणन समवायेभ्यः सहस्रकोटि रूप्यकाणां आय व्यय सहायतां प्रदातुं कतिपयाः महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः। कर्णाटक राज्यस्य नूतन मुख्यमन्त्री DK शिवकुमारः शपथग्रहणं कृतवान्। पश्चिम बंगालस्य तृणमूल कांग्रेस दलात् निष्कासित TMC विधायक ऋतव्रत बनर्जी इत्यनेन उक्तं यत् पक्षे प्रायः 60 विधायकाः सन्ति। दिल्ली नगरस्य मालवीय नगरे विश्रांति निलये भीषणाग्निकाण्डः 21 जनाः मृताः। अपि च भारतं 25.2000 वर्षे विश्वस्य द्वितीयं बृहत्तमं सौर विकास विपणकं जातम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु कतिपयाः महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः। पश्चिम एशिया संकट कारणेन वर्धितेषु इन्धन मूल्येषु भारतीय विमान सेवानां कृते विमान इन्धनस्य अर्थात् ETF मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं तैल विपणन समवायेभ्यः सहस्रकोटि रूप्यकाणां आय व्यय सहायतां प्रदातुं प्रशासनं निर्णयं कृतवत्। सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णव अवदत् यत् एतेन विमानन क्षेत्र सम्बद्धाः प्रायः 77 लक्ष आजीविकाः सुरक्षिताः भविष्यन्ति। एषा सहायता योजना 36 मास पर्यन्तं प्रवर्तिष्यति। मन्त्रिमण्डलेन दिल्ली निकटवर्ति क्षेत्रे वायु प्रदूषण नियन्त्रणार्थम् अपि एकस्याः बृहत्याः योजनायाः अनुमोदनं कृतम्। आर्थिक सम्बद्धया मन्त्रिमण्डलीय समित्या ओडिशा राज्ये रामेश्वरात् पारादीप पर्यन्तं 360 अधिक 100 किलोमीटर परिमितस्य नूतन तटीय राजमार्ग निर्माणाय अनुमतिः प्रदत्ता। एतद् अतिरिक्तं समित्या बिहार राज्ये राष्ट्रिय राजमार्गयोः 31 तथा 31 अधिक 200 च इत्येतयोः खगड़िया पूर्णिया खण्डस्य चतुर्पथ परियोजना अपि अनुमोदिता। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य राष्ट्रिय आदिवासी सम्मेलनस्य उद्घाटनं कृतवती। नवदिल्ल्याम् आयोजितायाम् एकीकृत जनजातीय विकास समवायानां तथा एकीकृत जनजातीय विकासायोगस्य च विस्तार विषयिकायां समायोजितायां सभायां राष्ट्रपतिः अवदत् यत् देशव्यापिनः जनजातीय समाजस्य संस्कृतिः अत्यन्ता समृद्धा अस्ति, अतः जनजातीय समुदायस्य उन्नत्यर्थाः विशेष प्रयत्नाः करणीयाः। तया उक्तं यत् विकास कार्याणि अन्तिम गृहं यावत् अन्तिम ग्रामं यावत् च अवश्यं प्राप्नुयुः। राष्ट्रपतिः चिन्ताम् अपि व्यक्तीकृतवती यत् अद्यापि केचन जनजातीय वर्गाः शासनस्य विविधाभिः योजनाभिः अनभिज्ञाः सन्ति।
1: PM जनमन योजना के तहत जनजातीय समुदाय में भी सबसे पिछड़े समूहों के 20,000 से अधिक गांव तक तो विकास कार्यक्रम को पहुंचाने का लक्ष्य है। हम सब जानते हैं 75 जो ग्रुप्स वो है PVTG सबसे पिछड़े अभी भी कोई पेड़ के मंच के पे रहते हैं, उनके कोई जमीन नहीं, जमीन था लेकिन रिकॉर्डेड नहीं, इसलिए उनको जमीन देकर घर बनाना उनके हर चीज के लिए अधिकारी लोगों को जितने कर्मचारी लोगों का दायित्व है।
0: राष्ट्रपतिः सर्वासां संस्थानां हितधारकान् आहूतवती यत् जनजातीय युवभ्यः सम्मानजनक जीविकायाः तथा प्रत्येकं जनजातीय बालकाय विद्यालय शिक्षायाः सुनिश्चितीकरणं क्रियताम्।
1: ये दूरदराज के लोग जो जंगलों में रहते हैं उन तो एक रोड मैप बनाना चाहिए। आप कौन सी गांव को कवर किया, कौन सी पॉपुलेशन के थे, ट्राइबल के कितने लोग हैं, कहां तक हम पहुंच पाए कहां तक नहीं पाए। पढ़ा लिखा होते हुए भी बहुत लोग बहुत चीजें जानते हैं लेकिन वो खुलते नहीं, लेकिन उनको खुलना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, आदिवासी लोगों को आगे लाने के लिए तो खुद को ही कुछ करना पड़ेगा।
0: कर्नाटकस्य नूतन मुख्यमंत्री DK शिवकुमारः शपथग्रहणं कृतवान्। कर्णाटक राज्ये कांग्रेस विधानमण्डलस्य दलस्य नेता टीके शिवकुमारः अद्य बेंगलुरु नगरे राज्यस्य पञ्चविंशतितमः मुख्यमंत्री रूपेण शपथग्रहणं कृतवान्। राज्यपालः थावरचन्द गहलोतः तस्मै पदस्य गोपनीयतायाश्च शपथं प्रदापितवान्। वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ जी परमेश्वरः उपमुख्यमंत्री पदेन शपथं गृहीतवान्। अन्ये च द्वादश मन्त्रिणः अपि मन्त्रिपरिषदि सम्मिलिताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्यमंत्रिणे शुभकामनाः प्रदत्तवान्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषा

0: तं यत्स्वदलस्य वास्तविक तृणमूल कांग्रेस इति नाम्ना मान्यतां दातुं आग्रहः कृतः। अस्मिन् अन्तरे पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता नगरे आयोजितायां जनसभायां भारतीय जनता पार्टी इत्यस्य उपरि दलविभाजनस्य षड्यंत्र रचनायाः आरोपं कृतवती। एतेषां राजनैतिक घटनाक्रमाणां प्रति सम्पूर्ण राज्यस्य दृष्टिः केन्द्रीभूता वर्तते। दिल्ली नगरस्य मालवीय नगरे विश्रांति निलये भीषणाग्नि कांडः एकविंशति जनाः मृताः। राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां मालवीय नगर क्षेत्रस्य एकस्मिन् विश्रांति निलये भीषणाग्नि कांडे एकविंशति जनाः मृत्युम् उपगताः, अनेके च आहताः अभवन्। दक्षिण दिल्ल्यारक्षि विभागस्य उपायुक्तः अनन्त मित्तलः अवदत् यत् अग्निशमन विभागस्य अष्टभिः वाहनैः सह अग्निः नियन्त्रितः। आरक्षिणाम् अग्निशमनस्य तथा अन्येषाम् आपत्कालिक सेवानां संयुक्त प्रयत्नैः चत्वारिंशत् अधिकाः जनाः सुरक्षितरूपेण उद्धृताः, चिकित्सोपचारार्थं च चिकित्सालयेषु प्रेषिताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह तथा दिल्ली राज्यस्य मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अस्मिन् दुखदे घटनाक्रमे शोकं प्रकटितवन्तः। वार्षिक सौर क्षमता वृद्धौ भारतम् अमेरिकाम् अतिक्रमितवत्। भारतं पञ्चविंशत्यधिक द्विसहस्रतमे वर्षे विश्वस्य द्वितीयं बृहत्तमं सौर विकास विपणकम् अभवत्। भारते स्थापित सौर क्षमतायाः उल्लेखनीयं पञ्चपञ्चाशत्यधिक गीगावाट परिमितं अतिक्रमितम् अस्ति, येन देशस्य 50% जीवाश्महीन इन्धन क्षमतायाः लक्ष्यं साधयितुं नियत समयात् पूर्वमेव तस्य राष्ट्रिय निर्धारितं योगदानं पूरयितुं च साहाय्यं भवति। केन्द्रीय नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी वर्यः अद्य उक्तवान् यत् देशस्य सौर विकास गाथा वैश्विक मानदंडानि स्थापयति। अरावली पर्वत श्रेण्याः सीमांकन समीक्षार्था सर्वोच्च न्यायालयेन विशेषज्ञ समितिः निर्मिता। सर्वोच्च न्यायालयेन अरावली पर्वत श्रेण्याः परिभाषा सीमांकन संबद्ध विषयाणां स्वतंत्र समीक्षार्थं उच्चाधिकार युक्तायाः विशेषज्ञ समितेः गठनस्य निर्देशः प्रदत्तः। अस्याः समितेः अध्यक्षतां भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषदः महानिदेशिका कंचन देवी वहिष्यति। न्यायालयेन समितये चालितवर्षस्य अगस्तमासस्य एकत्रिंशत्तम दिनांकपर्यन्तं स्वप्रतिवेदनं समर्पयितुम् आदेशः प्रदत्तः। प्रधानमंत्री नरेन्द्रमोदी अद्य केन्द्रीय मन्त्रिणः चिराग पासवानस्य लेखं सामाजिक अन्तर्जाल माध्यमेन प्रदर्शितवान्। तेन उक्तं यत् लद्दाख प्रदेशे प्राप्तम् अद्वितीयं वेरीफलं नवीनावसराणां विकासस्य प्रतीकः अस्ति। लेखे लद्दाखस्य उद्यमशीलतया तथा मूल्यवर्धनद्वारा विकासस्य नूतनद्वाराणि उद्घाटितानि इति प्रकाशितम्। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमें मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए गोंडी समाचार बुलेटिन।
2: सेवा जोहार, ईद आकाशवाणी जगदलपुर आंध गोंडी ते समाचार बुलेटिन तसंग नाना माखनलाल सूरी। नेंता हेडलाइंस, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश ले बुलाए देश ते चले मायना खेत बचाओ अभियान ता कीतूर मदोल मूर। छत्तीसगढ़ ते गला आता ईद अभियान ता मूर। सुशासन तिहार तलप्पा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बड़े कनेरा नार ते 952 करोड़ रुपया ले आगेरता बरसन बूतो ता मदोल मूर की सोक नेली सेवा कीतूर। प्रदेश ते नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत न आम और उप निर्वाचन तक आजे उन जून दिया आता वोट। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा तक क्रियान्वयन तक आजे प्रदेश में टे चले मानता टेरलिंग कार्यक्रम। ईद एक समाचार उंडाले, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हत्ता उन जून दिया मध्य प्रदेश ता रायसेन जिला ता रामसिया नारले गुलाय देश मेटे चले मायना खेत बचाओ अभियान इतेक नेली पिसाना अभियान ता मदोल।

की तूर। उन महीना तक चले माए न इद अभियान, देशुम तक खेती कमाए किया न, नेलिंग कुन पिछना और किसान लोर कुन वैज्ञानिक विद्यालय किया न त हरिते उन हजोर डाका आंद। समारोह तुन संबोधित कीसो केंद्रीय कृषि मंत्री किसान लोर कुन खेती ते बरोबर किस खत्तू हुआ न त अपील की तूर। हिके छत्तीसगढ़ ते गला प्राकृतिक खेती इतेक दादी पैंती बेरा त खेती किस नेली पिछना त काजे नेली पिछना अभियान मोर आता। कृषि मंत्रालय त ईद अभियान तलप किसान कुन प्राकृतिक खेती संतुलित खत्तु हुआ न और नेली पिछना त बारे वह चोक चेताह की आयाल। ग्राम पंचायत विकासखंड और जिला लेवाते कृषक संगोष्ठी कृषि चौपाल और जागरूकता कार्यक्रम आयनु। कृषि वैज्ञानिक लोर किसान कुन सरकारी खत्तु न नुकसान और दादी पैंती त खेती त फायदा तुन वह नूर। अभियान तबेरा किसान लोर कुन आपुना नेली ते ऊंध हिस्सा ते जूना खेती किया न काजे वह नूर। संगे सरकारी खत्तुक न काला बाजारी और जमाखोरी तुन रोके किया न काजे निगरानी व्यवस्था तुन मजबूत किया न पल्लो वह नूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतुर की सरकार देशुम त अमूल्य धरोहर जूना जाह कुन पिछा न काजे बूतो कीनता। आकाशवाणी ले हत्ता ऐतवार दिया मन की बात कार्यक्रम ते और वहतूर की ज्ञान भारतम अभियान तलप्पा छत्तीसगढ़ त बिलासपुर जिला त मल्हार ते छठवीं सातवीं शताब्दी त पांडुवंश तोर महर्षि बलार्जुन ले जुड़े मायले मूंद ठन तामा ते कोटले पट्टी पुटता। विखते अदबेरा ते चले माये न राजपाट धर्म और संस्कृति त बारे पल्लो त जानकारी पुटनु। प्रधानमंत्री रांची ते आयले राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक महासंघ प्रतियोगिता ते छत्तीसगढ़ त जसपुर जिला तोर घुइंटांगर मनवाल 900 मीटर ढयान ते रिकॉर्ड उरिंगलेर अनिमेश कुजूर ले गला वड़कतूर। त्रुमाल मोदी देश मनवालोर ले पक्की तरस ले अद्दी तबेरा ते नेकाय चेता मनसी सरकारी दिशा निर्देश कुन माने माया न ता अपील गला की तोर। प्रधानमंत्री माने कुन अद्दी ते पिसा न काजे मरकाता येर मही लस्सी सत्तू शरबत बेलता येर पन्नाकम नीरमोर सांभरम कोकम शरबत और सोल कड़ी उंडाना ता अपील की तोर। सुशासन तिहार तलप्पा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हत्ता ऊंद जून दिया कोंडानार जिला ते बड़े कनेरा नार ते आयले समाधान शिविर ते 152,18,00,000 रुपया ले आगेर कीमोत्ता नेकाय बड़सना बूतोता मदोलमूर कीसोक नेली सेवा की तूर। ईद बेरा मुख्यमंत्री नारंगी डोडा ते मंदले पुलिया ता मरोमत काजे 2 करोड़ रुपया घोषणा की तूर। संगे केसकाल बांसकोट माकड़ी एरला तक 53 किलोमीटर लापी सड़क ता मजबूतीकरण बूतो न गला मंजूरी ही तूर। त्रुमाल साय बड़े कनेरद ले बड़े बेंद्री बाईका पदर औ चिपावन तक पुल पुलिया ता संगे 12 किलोमीटर सड़क पंडाना और बड़े कनेरा ले नवागुड़ा तक पुल पुलिया ता संगे 1.5 किलोमीटर सड़क पंडाना तक घोषणा की तूर। और के तोर की बड़े कनेरा ते शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भवन पाड़ी आयाल। अगाय कोसार टेडा ते पर्यटन बड़सन बुतो की आयाल। त्रुमाल साय विश्रामपुरी ते गोंडवाना भवन केसकाल ते सर्व आदिवासी समाज भवन पंडना और बड़े कनेरा ते मनले जूना शिव मंदिर ता मरम्मत की न घोषणा गला की तूर। आपुना कोंडानार प्रवास तबेरा मुख्यमंत्री बड़े कनेरा नार ते ज्ञान भारतम अभियान तलप्पा पिछले 150 वर्षा ता जुन्ना उड़िया माटा ते कोटले पांडुलिपि तुन हुड़तूर औ पिसिहलेर कुटुम तुन सहराह गला की तूर। मुख्यमंत्री अगा रामू राम यादव न संग भेंट कीस ओना हेड़े पिसिहले 8 जुना पांडुलिपि कुन हुड़तूर और अवहना इतिहास उपयोग औ संरक्षण ता बारे जानकारी पैतूर। पिसिहलेर मुख्यमंत्री तुन वहतूर की यू पांडुलिपि ते पंजियार पंजी पुराण पंचांग और चक्रकूट पंचांग लहकता महत्वपूर्ण ग्रंथ आंदू। इवहना उपयोग जूना विदिया पेन पाठ न सेवा अर्जी समाज त व्यवस्था और ज्योतिषी गणना ते किसोक मत्तोर। मुख्यमंत्री बड़े कनेरा ते पंडले अटल डिजिटल सुविधा केंद्र त निरीक्षण गला की तूर। ईद बेरा और सेवा सेतु त बूतो तुन हुड़तूर। त्रुमाल साय ईद केंद्र ते पुटन सुविधा कुन हुड़सोक लाभार्थी न संग वर्कशोक योजना ता जानकारी गला एत तूर। और के तोर की सेवा सेतु अभियान औ अटल डिजिटल सुविधा केंद्र नार्क जागा ते डिजिटल सुशासन तुन मजबूत किया न त हरी ते महत्वपूर्ण ढाका आंद। इविहिले माने कुन सरकारी आपिस ते बेरी बेरी वायन ले गला छूट आयाल। प्रदेश ते नगरी निकाय औ त्रिस्तरीय पंचायत न आम और उप निर्वाचन तक आजे 9 जून दिया वोट अड़ता। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनुसार ते नगरी निकाय न अध्यक्ष न हालुंग और

0: पार्षदना 71 पद नकाजे 96 मतदान केंद्र परो मतदाता लोर वोट ही तूर अगाय त्रिस्तरीय पंचायत न जनपद पंचायत सदस्य सरपंच औ पंच न कुल 991 पदक न काजे 274 मतदान केंद्र पर 900,000 ले आगेर मतदाता लोर आपुना मताधिकारता प्रयोग की तूर। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा ता जोरदार बूतो काजे ईद दिया प्रदेश में टेरलिंग बूतो चले मानता इदे कड़ी ते हत्ता 31 मई दिया सुकमाता कलेक्टोरेट आपिस ते जिला लेवाता टेरलिंग कार्यक्रम आता टेरलिंग ता बेरा सुशासन औ अभिसरण विभाग तोर मास्टर ट्रेनर आर के शर्मा वहतूर की मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रणाली ता हालुंग हजोर थुनी मनता यु थुनी ते यूनिक टोकन नंबर ता माध्यम ले शिकायत न ट्रैकिंग बेरा ते निराकरण काजे SLA आधारित व्यवस्था समाधान आयले परेक नागरिक लोरा संतुष्टि फीडबैक पारदर्शिता और जवाबदेही तुन बरसाना और MIS डैशबोर्ड ता माध्यम ले अमदही निगरानी शामिल मनता और वहतोर की CM हेल्पलाइन कॉल सेंटर 24 घंटा चले मायाल इदेन लप्पा नागरिक लोर टोल फ्री नंबर 1076 ता माध्यम ले आपुना शिकायत की परनूर शिकायत दर्ज आयले परेक ईद जानकारी सीधा मुख्यमंत्री ना आपिस ते अवाल CM हेल्पलाइन ता माध्यम ले मानेक ना समस्या कुन गुची आयाल अगाय दंतेवाड़ा जिला ते गला 30 मई दिया CM हेल्पलाइन औ शिकायत प्रबंधन प्रणाली ता क्रियान्वयन ता काजे जिला औ बुलाक लेवातोर अधिकारी कुन टेरलिंग हितूर टेरलिंग कार्यक्रम तुन संबोधित कीसोक कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव इत्तोर की CM हेल्पलाइन ता माध्यम ले जनता न समस्या कुन गुची ही आयाल बस्तर विकास प्राधिकरण ता उपाध्यक्ष लता उसेंडी हत्ता 25 मई दिया ते कोंडानार जिला ता समेलपुर नार ते हालुंग लाख रुपया ले बने मायना रंगमंच भवन ता नेली सेवा की इत्ता ईद बेरा तिरुमाय उसेंडी इत्ता की रंगमंच बने मातेक नार ते धार्मिक सांस्कृतिक और सामाजिक बूतों ता काजे जगह पुट्टाल आदि तक की राज्य सरकार नाटे जागा ते अधोसरचना विकास तकाजे अमदही बूतो कीनता विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हत्ता 31 मई दिया छत्तीसगढ़ सपाय जिला ते जागरूकता इतक चेता की एना कार्यक्रम आता इदे कड़ी ते जगदलपुरा ते मनले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF मुख्यालय ते विश्व तंबाकू निषेध दिवस मना की तूर कार्यक्रम ते CRPF तोर कमांडेंट जितेंद्र कुमार अधिकारी और जवान लोरकुन पोगो तींदना ले आयना नुकसान ता बारे चेता की तूर और इतूर की CRPF तोर ऊंद उन जवान ना स्वस्थ मंदना जरूरी आंद वाई तेक स्वस्थ बल ही राष्ट्र ता सुरक्षा ते आपुना योगदान ही परिंता। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान तलप्पा स्वास्थ्य विभाग ता टीम दंतेवाड़ा जिला ता लंका कोस लापी बड़े पल्ली नार ते आउत ईद बेरा टीम नाटे शिविर पारसी रण सौक ले आगेर नाटे नोरक न स्वास्थ्य जांच कीसी मत तूस्तूर शिविर ते पटते मनले आस्क न जांच कीसी पीलांग न टीकाकरण गला की तूर जांच ता बेरा ऊंद नेकाय खतरा बीती पटते मनले आस्क ता चीना गला की तूर और नेल्ला इलाज और जच की काजे जिला अस्पताल रेफर की तूर। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय रामटेक के वहतोर की मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान ता माध्यम ले जिला तोर लापी और लंका कोस ते मनवाल जनता कुन स्वास्थ्य सेवा ता फायदा ही है ना आंता। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC तिकेडा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा नालुंग ले 9 जून तक प्रदेश मेटे आया नू बस्तर जिला ता इत परीक्षा काजे सपाय तैयारी माढ़िले आता धर्मपुरा ते मनले शासकीय काकती महाविद्यालय तुन परीक्षा केंद्र पाड़ले आता ईद केंद्र ते 981 उम्मीदवार परीक्षा ते उड्डानूर ईद परीक्षा रणपाली ते आयाल मुख्य परीक्षा तक आजे जिला प्रशासन तिकेडा सुरक्षा ता बरकस व्यवस्था कीले आता सुशासन तिहार ता बेरा बीजापुर जिला ता 41 ग्राम पंचायत कुन बाल विवाह इतेक हुडला मर्मिंग रोके कियाना तक गिरिया की इश्तूर महिला और बाल विकास विभाग तिकेडा चला कीले ईद अभियान ता लप्पा माने कुन हुडला मर्मिंग ता नुकसान कानूनी प्रावधान और पेकी न स्वास्थ्य शिक्षा और अवहेना परो आयना नुकसान ता जानकारी ही आता कार्यक्रम ते नाटेनूर कुन चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और महिला हेल्पलाइन इतेक आस्क न काजे हेल्पलाइन नंबर 1089 ता बारे जानकारी ही तूर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल इतेक आईटीबीपी ता 41वीं वाहिनी अबुजमार तोर मानेक नकाजे कोंडानार ते मनले आईटीबीपी मुख्यालय ते रंड हफ्ता ता साइकिल मरम्मत टेरलिंग मूर कीता। आईटीबीपी तोर कमांडेंट बेनुधर नायक वेहतुर की ईद कार्यक्रम ता जरिया ले अगडोर मानेकुन साइकिल इराना और मरम्मत ता बारे करिहाल तोर। टेरलिंग माड़ाना परेक और कुन साइकिल और साइकिल रिपेयरिंग किट तूसी आयाल। उन्होंने टप्पियांत की ईद टेरलिंग ता उद्देश्य कौशल विकास तून विड़िची स्वरोजगार तून बढ़सना आंद। कैंकेर जिला ते मनले दूध नदी तून पिसा नकाजे हत्ता 30 मई दिया सफाई अभियान चला की तूर। ईद बुतुते जनप्रतिनिधि जिला प्रशासन तुर अधिकारी कर्मचारी और स्वयंसेवी संगठन न संगे आम जनता शामिल आतूर। अभियान तबेरा डोडा ते धोरसलेर कचरा और लाटा कुन वाट तूर। ईद बेरा कैंकेर तोर विधायक आसाराम नेताम इतोर की चमासले मुन्ने डोडाहेड़े नड़हेल और मरकाता पदोला उर्सी आयाल। और मानेकले हर शनिवार एतवार दिया सफाई अभियान चला किसी दूध नदी तुन चुक चुका किया ना ता अपील गला की तोर। मारले बेरा ते मदोल समाचार उन्द बेरा फेरे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश ले राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान ता मदोल मूर की तूर। छत्तीसगढ़ ते गला ईद अभियान ता आता मूर। सुशासन तिहार ते लप्पा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बड़े कनेरा नार ते 952 करोड़ रुपया ले आगेर लागे ता अचाय बरसना बूतो ता मदोल मूर की सोक नीली सेवा की तूर। प्रदेश के नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत ना आम और उप निर्वाचन काजे उन जून दिया आता वोट। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा ता क्रियान्वयन काजे प्रदेश में टे आंता टेरलिंग कार्यक्रम। इदे न संगे गोंडी समाचार बुलेटिन ता ईद अंक इगाय माड़ाल ता मी सोबेकुन सेवा जोहर।
1: अभी गोंडी समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया गया। आकाशवाणी का ये छक्तलपुर केंद्र है।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने को है। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: लक्ष सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
5: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
6: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
7: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
6: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
7: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
6: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
7: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
5: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
8: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
7: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
8: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
7: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
8: आकाशवाणी से।
5: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनावों के लिए कल मतगणना होगी, कल ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। ईडी ने सीजीपीएससी भर्ती घोटाले से जुड़े अधिकारियों के विभिन्न स्थानों में तलाशी अभियान चलाया और सीजीपीएससी ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देशभर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए।
9: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तले इलाके में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
1: प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनावों के लिए कल 4 जून को मतगणना होगी। कल ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। गौरतलब है कि नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उप निर्वाचन के लिए 1 जून को मतदान हुआ था। नगरीय निकायों में अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए हुए मतदान में 84.58% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पदों के लिए 78.61% मतदान दर्ज किया गया था। राज्यपाल रमन डेका ने आज लोकभवन में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में खनिज विभाग के सचिव पी दयानंद से प्रदेश की नदियों और बड़े नालों में हो रहे रेत के अवैध उत्खनन पर चर्चा की। राज्यपाल ने अवैध और अनियंत्रित रेत उत्खनन पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रेत राज्य के विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक अनिवार्य खनिज है, लेकिन इसके अनियंत्रित दोहन से पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंच रही है। श्री डेका ने कहा कि राज्य में रेत खनन पूरी तरह से वैज्ञानिक, सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल 4 जून को गौरेला विकासखंड के ग्राम पंचायत लमना में आयोजित जन समस्या निवारण

0: शिविर में शामिल होंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल कांकेर जिले में सुशासन तिहार के तहत कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और बस्तर जिलों में संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध, जवाबदेह और परिणाम उन्मुख कार्यशैली अपनाने के निर्देश दिए। प्रवर्तन निदेशालय के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी भर्ती घोटाले से जुड़े कथित धन शोधन मामले की जांच के तहत आज राज्य के विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर के लगभग 10 ठिकानों पर की गई। तलाशी लिए गए प्रमुख स्थानों में पूर्व सीजीपीएससी सचिव जेके ध्रुव का भिलाई स्थित निवास शामिल है। ये कार्रवाई वर्ष 2020 से 2022 के बीच आयोजित सीजीपीएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच के आधार पर की जा रही है। ईडी की टीम ने दुर्ग जिले के तलपुर स्थित सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमृत कुमार खलको के निवास पर भी जांच की। अधिकारियों ने संपत्तियों, बैंक खातों और अन्य वित्तीय अभिलेखों से संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया। इसके अलावा राजनांदगांव में कृषि विस्तार अधिकारी भूपेंद्र गणवीर के निवास पर भी तलाशी ली गई। वहीं ईडी ने तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक के रायपुर स्थित निवास पर भी दबिश दी। सूत्रों के अनुसार ईडी कथित अपराध से अर्जित धन के स्रोत, उससे जुड़ी संपत्तियों तथा वित्तीय लेनदेन की श्रृंखला का पता लगाने के साथ ही मामले में अन्य संभावित लाभार्थियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी ने नवंबर 2024 में लॉन्च होने के 2 साल से भी कम समय में 1 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। ये उपलब्धि भारत के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत तथा दुनियाभर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को अपनाने में हो रही वृद्धि को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा आज रात 8 बजे से छत्तीसगढ़ी में विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अवधि 5 मिनट की होगी और इसका प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार मुख्य परीक्षा 6 से 9 जून तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा हर दिन 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और रायपुर स्थित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। आयोग ने बताया है कि प्रवेश पत्र 25 मई को जारी किए जा चुके हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की द्वितीय अवसर के लिए मुख्य परीक्षा की समय सारिणी जारी कर दी है। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 8 जुलाई से 22 जुलाई और हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 9 जुलाई से 21 जुलाई तक आयोजित होगी। दोनों परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की जाएंगी। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री शोध पीठ योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस प्रमुख राष्ट्रीय पहल का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों से भारतीय मूल के प्रतिभाशाली अनुसंधानकर्ताओं, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और पेशेवरों को देशभर के प्रमुख सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केंद्रों की ओर आकर्षित करना है। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर जीवन यापन कर रहे बच्चों के पुनर्वास के लिए जून महीने में विशेष सघन अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार की बाल सक्षम नीति के तहत सड़क पर रहने वाले भिक्षावृत्ति, बाल श्रम और कचरा संग्रहण में लगे बच्चों की पहचान कर उन

0: कर रेस्क्यू और पुनर्वास किया जा रहा है। अभियान के तहत बच्चों को सुरक्षित आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। रायपुर नगर निगम ने संपत्ति कर के साथ वसूले जाने वाले यूजर चार्ज में बढ़ोतरी की है। नगर निगम के अनुसार आवासीय संपत्तियों पर सालाना 120 रुपए की वृद्धि की गई है। वहीं व्यावसायिक संपत्तियों के लिए यूजर चार्ज में सालाना 360 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ये अतिरिक्त राशि संपत्ति कर के साथ ही वसूली जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून पूर्व गतिविधियां शुरू हो रही हैं। इसके प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज अचानक बदल रहा है। इस बीच बीजापुर जिले के पेरमपल्ली गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं दंतेवाड़ा जिले के चंदेनार साप्ताहिक बाजार में कल आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोग इसकी चपेट में आए, जिनमें से एक महिला की मौत हो गई। इसके अलावा मनेन्द्रगढ़ के पास चरखर गांव में भी आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई, वहीं 5 अन्य लोग झुलस गए हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ के पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और सेवानिवृत्त आईएएस बीकेएस रे का निधन हो गया है। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और उनका उपचार रायपुर एम्स में चल रहा था। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत आयोजित मंथ ऑफ सोलर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राजधानी रायपुर में क्वींस क्लब ऑफ इंडिया को विश्व स्तरीय हॉस्पिटैलिटी और वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। रायपुर के गुढ़ियारी में स्थित रेलवे अंडरब्रिज मरम्मत कार्य के कारण कल 4 जून से 18 जून तक बंद रहेगा। दुर्ग पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी की लारा परियोजना ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कृत्रिम अंग वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजाति विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनावों के लिए कल मतगणना होगी। कल ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। ईडी ने सीजीपीएससी भर्ती घोटाले से जुड़े अधिकारियों के विभिन्न स्थानों में तलाशी अभियान चलाया। और सीजीपीएससी ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। पेश है दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: राम राम टीरू राम राम
1: राम राम पुलो राम राम अमर लीस ने
0: अमर ले काय आले बस लग
1: हो बस लेंस काय
0: यो एते एते थाकु खुवे ने
1: हो काय
0: देख अमर ते खाना सन लगवे खिन बस ने जसन
1: हो
0: मान तो देख बसन भाती दादी जी मन बोल जुहार करतो रे
1: हो काय
0: हां आते वे करू बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुन तो सपा दादा दीदी सियान सजन मन के मैं फूलो
1: और मैं टीरू हमें दोनों करूं से
0: राम राम
1: और रेडियो कोटा बसलो नानी नानी पीला मन के बले अमचे दुनो चे बाटले कुबे कुबे मया आरु ला
0: दक मया जमा तो होली अंतर पीला जिला के मया जमा करतो रहे लाड करतो रहे मांतर खिंडी दागा बल देतो रहे कसन बले दक घामे घामे खिलवात ने
1: ओके
0: आजकल दक घाम के ने
1: हां
0: जा तो घाम अधिक रुवे ने
1: अरु आय का कसन बल्ले ने आज के आलस ने गरम चो दिन आए ने गरम दिन मन ने काय आम के चाय डगरक बले ओ आए ने
0: आए के अदक पीला जिला के घाम दे भी ते खेलत रे और खिनिक छाय होली जल भले बाहर निकरो तर खिलोत ने
1: मात्र
0: उन हुदल दे बोला मैं देखवा कि लहरा गरम गरम ए तेरे हुए
1: ओके
0: लू बोलवा तो ने
1: हां
0: ये चो काजे बोले हम के पीला जिला खिन ध्यान देतर होय से
1: ध्यान दे पड़ेस का कसन बल्ले ने आज के आलस ने बोले गरम दिन आए ने गरम दिन ने काय आम चाय चाय बल डगरा हुआ उसनी आमी काई दूर जात रहले काय आम के पियास लागले पानी पानी बल डग रहा हूं
0: छाय बोल रहे हम के सुरता पड़े से रान बन के ने
1: हां काय
0: पहले हम देखत रहो कि कितरो रान बन रहे ने
1: हाँ।
0: बड़ा है छाती है हम कितरो हूं तर निकरात रहो
1: हां
0: तो रेबे देखू से कि घर मन बढ़ते जाए से
1: हां
0: और जंगल मन कटते जाए से
1: कटते जाए से काय कसन बल लेना में आम चो जीवना तो रान ने ची आए ने रान ने बल्ले नाम की बोड़ा चाती हो ऐसे बास्ता हो ऐसे कोलियार बाजी हो ऐसे ने
0: जड़ी बूटी बल मिरे से
1: हाउ का
0: कितनी जीनी आम के रान ने
1: मिरे से
0: वही चो लोग तो हुन रान नहीं जीवते रहे अपने
1: हाउ का कसन बल्ले ने एबे आम के पान दातुन बल तो रान नहीं आम के आश्रित सुने
0: पान दातुन है जड़ी बूटी बोले बोले हमके हुनी थान ले मिरे से मात्र मैं बोलते रहे टीरू रान बन ने अमी काटते जाऊं से ने ठीक है बड़े रुखोली तो हम के काट तो रहे मात्र होंचो जगह ने हम के नानी नानी बूटा मन और बल लगात रहे तेब तो होना और जान भाई बड़े हो देने
1: हाँ क्या कसन रान रली बल लें का या बरसा बल हो देने
0: बरसा हो दे लहरा पानी नगत रहे दे हम जो बेड़ा खड़ा बोल नगत रहे दे आई नहीं हम जो जीवन बोले नगत चले दे
1: चले दे
0: बोलो ने हम जो जीवन ने जंगल चो खूबे महत्व हो से
1: का
0: हुन थान बांस बोल मिरे से आई नी
1: okay.
0: घर बना तो काजे लकड़ी आए बांस आए कितरी जिनिस हमके हुन थान ले मिरे से
1: का एक बल ने आमी आइक दरत काजे दारू बले आनू से रान लेने
0: दारू तो आमी आनू से मान तो भले दारू हमके आजकल तो हुन गैस होली से ने भले हमके दारू नहीं मिरो मात्र रान बन रहे हम चो लहरा पानी तो नगत रहे दे और लहरा पानी नगत रहे हम चो बेड़ा खड़ा बोले नगत रहे दे
1: तो ये गोट मन तो ओली पुलो ने मैं बोलते रहे और राम चल के जाला मन बला से अरे जाला मन के बोले हम रहूं
2: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
3: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तगा टैक्स तुन और वेंट सरल बना की तोड़ बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडोई लेकिन 18% टैक्स की सीट तोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता एचएस कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी ना सामान तपोरो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सीट तोड़ इत बुताते यू सामान पाड़नोर और सामान तच इनोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयन बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी न पर्रो मुन्नीटा लेकिन 1% टैक्स मनता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मूंड चक्का न गाड़ी 1% जीएसटी मोला तेने दोर किता अदेन के अव सो व्यर्थ कम टैक्स तगाड़ी बने मास मनता।
4: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस ऊपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे। एचएस कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा करलो बिना ऑटो पार्ट्स ऊपरे एवर एक समान 18% कर होली से ये काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेंतो लोग अरु सप्लायर्स चो चीपा गुचे दे। एचएस संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम बले सरल होए दे। बिजली ले चलतो बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर लागे दे ए मन्ने काही बदलाव नहीं होली से। बिजली ले चलतो सपाई गाड़ी दुई चक्का बीती गाड़ी अरु तीन चक्का बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे। असन ले ये मन सपाय कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनू रह दे।
1: तो पुलो एक जाला मन के तम रालू ने असनी ची आमचो मोड्रा ने आसे कहानी सुनुक बहु आई कसन तुके
0: कहानी फिर काके निभाए ने बड़े खो की नानी खो कोनी संग तेरे रसन लगो खिन बसे तार खिन सुने ता मा लगे से मन भूला तो वसन लागो और हुन थन फिर ज्ञान ध्यान चुकर बोल रहे से।
1: तो आमचे मोड्रा ने कहानी पाटा से और एक कहानी काम चले के दरुनी लासे मनोज कुमार ना
0: आल देवे कहानी का मी बोले सुनो पिला जिला बोले सुनो तार बड़े लोग बोले सुनो
1: आले
0: आले
5: ए बाबू आओ ना इधर गोटो कहानी सांगे दे
6: ए कहानी सांगो आज दादा
5: हो
6: आले इले यार सांग ना खूबे दिन होली मैं बोल कहानी नी सुन ले से
5: हो ते ठीक है सुन ते आई
6: हो आल सांग
5: गोटो गांव ने गोटो डोकरी रहते रहे मने हुन जानु आप लोग घर एकला रहते रहे डोकरी चो गोटक बेटी बोल रही मानतर हुन बियाह हो आप लोग 17-17 संगे दूसर गांव ने रहते रहे मने हो बिया हो लो बेरा डोकरी चो बेटी एक हार बोले आप लोग माए के भेंट हो तो काजे नी इली
6: हो
5: गोटक दिने डोकरी आप लोग घर चो बर्थडे होना लगे बसुन आप लोग बेटी के खूब बेसुरता करुन जी उखड़ाते रही मने और मने मने बोले से कि आज ही कसन ने इतरो भाई भाई असन लागे से खूबे दिन होली नोनी के बिया कर लो एक हार बोले दखा दखी नी होलू बोलते असने विचारते रही मने और बोले से ये देहे चोकाय भरोसा केबे तो असनी मरुन जाए देबे एक हार बेटी के दखुन एते बोलन डोकरी मने मन विचार करते रहे मने
6: बेटी जीव बलुक रहा से ने
5: हो और असनी विचार करते करते बोले से जाए दे बेटी घरे फिर मानतर बेटी चो घर तो जाते जाते खूबे दूर आए रान बन और कानी बाट आए असने बोलन विचार ली मने आजी नी जाए बेर बोले बसे से जाते जाते खूबे रात होए दे रात बिकाल बेरा नी जाते रहे बियाने संजकारी उठन जाए दे बोलते रांधुन खाली और सोली मने बियाने कुकड़ा बासी उठली नहा खोरा हो उनका है सुंदर बेटी घरे ने तो काजे बोबो रांधो बसली मने और आप लो पीन तो लुगा और रांधलो बोबो सपाए की गोटक मोडरा बना ली मने
6: जातो काजे
5: हो जातो काजे मोडरा के मुंडे बोहली बेटी गांव जातो काजे निकर ली मने रेंगते रेंगते रान लगे अमरली तेबे दखे से गोटक बाघ लाटा बाटले निकरून डोकरी चो पूरे उभा होली मने
6: बाघ बोल रही
5: हो डोकरी डर काजे थर थर ली और बोले से आया आज नी बाचे मरु आईबे तेबे हुन बाघ डोकरी के बोले से मने ये डोकरी मके खूबे भूख लागली से तुके खाऊ आए मई तेबे डोकरी डरे डर बोले से मने काय के सांगे दे बाघ बेमार से मारने सोजे झूरा होले से एबे बेटी घरे जाए दे उदा खिंडी का अच्छा अच्छा खाद ले आले मोटाए दे तो ये तो बेरा खा से मके हो असने बोले से मने तेबे बाघ बोले डोकरी चो गोट के मानुन बोल लो हो जाते बे डोकरी लटपट जीव के मंडाउन और हिंडुक मुरियाली मने जाते जाते और खिंडी दूर ने गोटक भालू मिरली
6: भालू बोल रही
5: हो हुन बोले भूख काजे ये बाटे हुन बाटे नंजराते डोकरी के दखलो और बोले से ये डोकरी आज ही मैं तुके खाऊआई कितरो भूख होले से मैं डोकरी बिचारी काय करती हुता बचा तो लोग तो कोनी ही नाई फिर धीरे धीरे भालू के बोले से खा तो बेरा खा से मचो गोट के तो सुन जर मुंड ने ऐसा पातर होले से रखत नाई ना मांस नाई मके खाद ले सोजे हाड़ा मिरे दे तुके एबे मैं बेटी घरे जाए से हुता मन मन चो दार भात और साग खाउन मोटाए दे और ए तो बेरा खा से मके असने भालू के बोली मने
6: डोकरी ने
5: हो तेबे भालू बोले डोकरी चो गोट के मान लो और बोले से हो जा मोटाओ नाओ बोल लो मने डोकरी चो जीव बाचली बोलून फिर रेंगुक बाट धरली डोकरी
6: जातो काजे
5: हो जाते जाते बाटे बिचारी के फिर गोटो कोलिया दखा दिली मने कोलिया चो दात बरते रहे लार के लमात रहे मने डोकरी के बोले से ये डोकरी आजी तो तुके खाए दे डोकरी काय करती फिर हुनके बोले हुनीच गोट के सांगली मने
6: सांगलो गोट के और हुनकी
5: और सांगलो गोट के और सांगेस मने आगे भालू और बाघ के जे गोट बोलू रेली हुनी गोट के फिर उन कोलिया बोल बोलली मने तेब कोलिया बोले हुन जो गोट के मान लो और जाते बे बोल लो मने फिर डोकरी खिंडिक झटके झटके हिंडते गाँव के अमरली सांझ होली मने अमरते
6: अमरते अमरते सांझ होली
5: हो डोकरी बेटी बीती घरे अमरली बेटी बीती आप लो आया के दखुन खूबे हरी होली मने
6: इतरो दिन ले भेट गाठ
5: हो पाए धोक पानी दिली और आप लोग सुख दुख के दोनों माए बेटी गोठियाला मने असनी असनी खूबे दिन होली मने बेटी

0: बीती डोगरी के रंग रंग चो दार भात कलुआ मिठुआ मांस मछरी रांधन खुआते रहे
1: खुआ
0: हो।
1: ली।
0: तेबे गोटोक दिन डोकरी आप लो बेटी के बोलली मने घरे जाए देवे नानी खुबे दिन होली बोलो नसने सांगे मन ने। बेटी बीती बोलली आजी काज थे आया कालिक जासे बोलली मन। तेबे डोकरी फिर हो बोलली मन मानतर जातो काजे डर लागे से बोलन बेटी के सांगली मने।
1: ये तो बेरा चो गोट के
0: हो मने मने चिंता करली मने कसन करें दे बोलते। ते बेटी बोलेस मने काय चिंता आय मके बोले तो सांग ने। ते डोकरी बोलेस मने काय उवाट सांगली साले मैं तुके सांगे दे। तो बेटी बीती बोलेस मने हो आया सांगे दे उवाट तु काय आय सांग तो काय चिंता आय बोलन बोलेस मन बेटी बीती।
1: पूछे से
0: हो तेबे डोकरी आप लो एता ए तो बेरा चो गोट के सांगली मने कि काय होली बाटे। तेबे बेटी बीती सुनुन बोलेस मने कि आया तु चिंता नी कर मैं सांगे ने तुके उवाट। डंडिक रहुन बेटी बीती गोटक बड़े असन तुमा के धरुन इली मने जुआई बीता काय सुंदर तुमा के खोलुन दिलो और तुमा ने तीन ठान काना बोले बनाउ दिलो मने।
1: काना बल बना लो।
0: हो और बिहान हो तो के बेटी बीती डोकरी का जे बोबोलाई संगे तुमा भीतरे बसाउन दिली मने और ऊपर ले तुमा के ढाकुन दिली मने। हो तेबे जातो बेरा फिर डोकरी तुमा भीतरे बसली ते बेटी बीती बाट लगने उन तुमा के ढुलाउन दिली मने और बोलेस मने चल रे तुमा बाटे बाट।
1: चल रे तुमा बाटे बाट।
0: हो और बोलेस मन की चल रे तुमा बाटे बाट तुमा काय सुंदर ढूलते ढूलते रान लगे अमरली मन। हो बाटे कोलिया टाकुरेली ने डोकरी तो सांगू रे असने बोलू
1: हाँ, मैं तो यहाँ बे
0: जसनी तुमा के दखली मने कोलिया और बोलेस मने ए तुमा तु तो गोटक डोकरी के दखलीस कसन। भीतर ले डोकरी सुन बोलेस मने डोकरी के नी दखे छोकरी के नी दखे जाओ रे तुमा बाटे बाट। तेवे असने भीतर ले बोलली मन डोकरी तुमा फिर ढूलते हालते और खिंडिक दूर आगे गेली मने। भालू बसू रही मन फिर बाटे फिर ने भालुक बल तो सांगू रही असने ने। तेबे हुन भालू बल बोलेस मने कसन रे तुमा डोकरी के दखलेस तुई। फिर डोकरी बोलेस मने डोकरी के नहीं दखे छोकरी के नी दखे चावरे तुमा बाटे बाट। तेब तुमा और खिंडिक रेंगली मने ने और खिंडिक ढूलते ढूलते आगे गेली असने जाते जाते फिर रान सरासरी बाग फिर बसू रही मन बाटे फिर ने। फिर बाघ बल हुसने बोलेस मने ए तुमा तु डोकरी के दखलीस कसन। भीतर ले फिर हुसने बोलेस मन डोकरी डोकरी के नी दखे छोकरी के नी दखे चल रे तुमा बाटे बाट। हो तुमा फिर काय होती ने डोकरी तो बसु रहे भीतरे फिर ढूलते हालते गांव के अमरली मने डोकरी हरी खोली मने। हो जसने गांव के अमर तो के तुमा दुई गोंदा फुटली मन। हो भीतर ले फिर हरी खरी खोते डोकरी बाहरे नी करली मने और सुरता करेस मन हे भगवान भले होली जीव बाचली बोलून हरी खरी बाहरे निकलून घरे ओल्ली मने। हो इतरी तो आए बाबू
1: इतरी आए।
0: हो
1: हो दादा खूब सुंदर लागली ना तुझे कहानी सुनून।
0: हो तो बाबू
1: हाँ।
0: ये कहानी का सुनून तो क्या अच्छा लागली ने
1: अच्छा लागली।
0: तो ये कहानी चो सीख यही आए कि कितरी बल मुसीबत हो ने
1: हाँ।
0: कितरी बल डर बेरा हो कितरी बोले मुसीबत बेरा हो आप लोग दिमाग के अच्छा ले चला तो रहा है अच्छा बुद्धिमानी करुन वाट कर तो रहा है तेवे मुसीबत बेरा बोले जीव बाचुआ
1: बाचुआ या सफलता बोले
0: सफलता बोले मिरुआ।
2: हाँ तो पुलो एक कहानी के तो सुन लो ने
3: काय सुंदर लागली ने
2: हाँ।
3: ए तुम जाओ बाटे बाटने अच्छा हाँ। लागली। अरे कहानी काय नाव रे
2: ए कहानी चो नाव रे चल रे तुम बाटे बाट।
3: हाँ तो देख पिला जिला मन बोल सुन ला और बड़े लोग बोल सुन ला और असन कहानी मन के सुन भाती छपाई के हरिक लगवा अरे के संगत्रो मनोज कुमार नाग
2: हाँ।
3: ने मान हाँ। तो कहानी संग संगे गोट गीत होले नगत रहती
2: हाँ। तो आले एक गीत के सुनो पाचे गीत कुरिया मन चुनाव के सांगवा
3: आले
0: ए बाबू आओ ना इत गोटो कहानी सांगे दे
1: कहानी सांगू आज दादा
0: हो

0: हाँ तो पुलो एक काय सुंदर गीत रहे
1: अरे
0: ने,
1: गीत के कौन गाउन रोल
0: एक गीत के गाउन रोल सिर दरारून मंच
1: संगवारी
0: संगवारी
1: मान,
0: मान।
1: तो गीत तो अच्छा रली
0: हाँ
1: मान, तो टीरू जा
0: हाँ
1: तो समय बोले होए से ने,
0: ऐसे का
1: तो मैं बोलते नहीं दक ये तो दाई बोला मी दाद दिन मतलब जुहार करूँ और दुन सबू गोट के धरन भाती हूँ उसे
0: हाँ
1: ने, और
0: हो का
1: सरपाई गोट के यानी सांगू से
0: सांगू से का
1: मानतर दक, ये थक गीत रो ज्ञान ध्यान चो गोट भर रहे से
0: रह से का
1: मानतर दक, ये गोट के सुन तो रहे और ध्यान दे दे तर बोले
0: हाँ
1: तक आम चो जा तो समय होली आलते बिदा धरू
0: आले ती मडरा गडरक सकर मैं बिदा दरेने।
1: आले।
0: एची संगे बस्तर केसवर कार्यक्रम सुनता सब पाए गांव कारी दादा दीदी सियान सजन और संगजोरिया संगवारी मन के मैं टीरू
1: और मैं फूलो
0: हमें दोनों करूं से राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जगदलपुर को। शाम के 7:20 हुए हैं। पेश है ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव।

0: संगेन उसका चुन्नाम ताव ईटा और बंडा कल तीन जोड़ाई की अनबूता तेवेंट मोला बाला 12% से कम मास 5% की सी तोड़।
1: हाँ तो पुलो ये जाला मन के तमरा लूने हसनी ची आमचे मोड्रा ने आजी अल्बी नाटक आसे अरे अल्बी नाटक चो नाव है धन है कोसा
2: ने
1: ओ अरे के लिखला से श्री मनोज कुमार पानीग्राही अरे ये प्रस्तुति आए बलवीर सिंह कच
2: अल्बी नाटक के सुनू
1: आले सुनू

0: आले का करी मन आले उगायरा उगायरा हा दादा ती सिया सजन मन मैं सफाई लोक के गोट असल गोट सांगतो का जे थाय हाक दिले से उन गोट है दखा ये भी आम्ही दखू से कि गाँव ने सफाई लोक का जे रोजगार दखा नहीं दे आय कसन कोनी ये था कोनी हु था कहा हो रोजगार काजे जाय से सत्य आय कसन दखा रोजगार काजे ये भी आम्ही दखू से कि कोनी तो आंध्रा जाय से कोनी हैदराबाद जाय से आले कोनी चेन्नई जाय से आले कोनी कोनी बाटे बोले जोन बाटे उनको रोजगार में हुन बाटे जाय से जसन जातो लोग जाय सोत मानत नेतो लोग मन बोले हुसने लोग मन के भुरला तो काजे नहीं चकर सोत
1: मानत सरपंच दादा दुई पैसा कमानी होय ते बोलते आमचे गावचे लोक मन बाहेर्या कमानी करूक निकरसोत काय
0: आय काय असं नाही का छे तू दख दुई पैसा कमानी करूक जातो काय लोक मन तो जासोची
1: सते आय
0: हे मानतर ए कमानी आले आमचे गाव ने आम्ही करले कसन होती
1: काय ने कमानी करवा
0: होय एते एते आले सुना आय एते गाव ने रोजगार कसन ने आंतर आय और हुन काय उपाय आय सुना है आले मैं सांगे तुम के हुन काय उपाय आय बोल हुन आए कोसाचो कमानी कोसाचो कमानी आय
1: कसन बीती आय
2: मानतर दादा ये कोसाचो कमानी कसन आय
0: ये हुन के सांगे से काय मैं बोले नी कोसा कोसा बोल धन धन आय कोसा आई और एचो काजे किंडी आगर ठान लागे थे सरपंच बनलो पाछे मैं असन हुआ डगराते रहे जेथा ले लोग मन के नंगत कमानी मिरुक लाए सको और हुन वाट मोके कोसा ने मिरली से एचो काजे गांव चो भुई ने आमी कोसा चो कमानी करुक लाए सकवा
3: मातर गांव चो कौन लग चो भुई ने आमी करवा
0: ए गोट तमूर गोट आए हो नड़गा सौकार भूई के दखला सास काय उंचो कब्जा ने गाँव चो खूबी असन भूई आसे
2: आसे तो मानतर ये सौकार हुन भूई के दे दे हुन तो हुंचे ही आए काय
0: नुहाय नड़गा सौकार चो बोले भूई हुनी सन ने आसे मानतर रेटे ले गाँव चो भूई के हुन कब्जा कर लो से एक ये नापा चोखा करून भाती आमी भूई के अलगावा ये भी पंचायत ले प्रस्ताव बनाऊन भाती यही काम के करतो काजे मैं हाँक दिले से
4: ये मन कोसाले पैसा उपजा दे मने देखनु है देखनु काड़ी
5: हो सौकार
4: मन चो वाट के
5: को बूटा मंडा दे मने
4: और ये मन के बेबार का जे कहीं जोक नहीं लागे मने देखनु
5: और सौकार कोसा कमाऊन भाती ये मन चो पेट चले दे मने
4: ये ना काड़ी
5: का है सौकार
4: और काय बोलते रहो गाँव चो लोग मन
5: काय फिर बोलते रहो ता सौकार बोलते रहो नड़गा सौकार चो बेजा कब्जा बीती गाँव रेटे चो भूई के पंचायत बसाउन भाती फिर झीक दे मने और नहीं भूता हुन बुदू आगर ट्यू ट्यू ट्यू ट्यू करते रहे ना

0: ये बुदु
1: ओ सोका
0: ये बे नुआ सरपंच बोल लो आप लो ठाप के दिखाए से बोलिया जानू बाकी डराए से ने
1: अखनू
0: आले देखो अबे जे होले बोले दिखा जाए दिकारी
1: ओए सोकार
2: चेतु चेतु हाँ हुन हुन हुन हुन बाटले खिंडिक
3: सरपंच दादा हो ई लगले आए
2: हाँ आता है होली दखानू कितरो भूई के बेजा कब्जा करून बर रहे साहूकार है इतरो भूई ने गुलाय गांव चो लोग मन एबे कमानी कर दे
3: सत्य आय सरपंच दादा
4: कब्जा कर लो दखानी
3: सत्य आय सरपंच दादा आमे जानू निर्णय भकुआ गंवार लोग तू ही काय खिंडी पढ़ा लिखा माने आस ए लागून नड़का साहूकार चो घत के जान लिस आरु पंचायत हिसाब ले भूई के अलग लिसिस
5: सत्य आय सरपंच आमी गांव करी काय के जान तू ता तू इच्छे पढ़ा लिखा गुनु के सब पाए काम के कर ली
4: जान तो काजे जमा जानते रू मानतर पूरे उन भाते उनके कौन बोलुक सके दे आय कसन
6: सत्य आय निकाय आगत ले आमी सौकार घरे जाऊं कुली भूति कर तो लो उन मनसा के झगड़ा दंद कर ले फिर आम के भले ही हो देता
2: दखा ए बाटे हुन बाटे जो गोट गोठियाले नहीं होए ए नापा जोखा काम तो होली आले सौकार
0: हाँ आले
2: दख ए सन लगले आमी चूना मारून दिलू से
0: हाँ
2: और ए लगले तू चो बेड़ा के तुई दख
0: हाँ
2: और आम चो गांव चो माटी के आमी आपले हिसाब ले दखवाओ
0: आले बुदू तू जान मोके इतरो डाटा कर जितने जाले मैं बोले दखेंदे तुझे टडम के मोचो नाव बोले नड़गा सौकार आए मोके नड़गा सौकार असनी बोल था सुन लीस
2: आले सौकार मचो तुझे से खुद चो बैर नू आए देवले तू ये भी चारून द फन तो फन ची आए गांव चो भूई के तू आप लोग ही कसन बोलू सकिस ना
0: आले तुम चो बोल लो हिसाब ने कब्जा के छाण लेका एदाय दखाऊं दखा तुम चो छेरी नाट के कसन दखा हुआ हस जाले
7: ए ए ए सौकार तू अगर नहीं गोठा वही
0: काय कर से तुई अल करून देखुनो काय कर से
2: लखमा उगायरा ना तुई अले सौकार तुई बोलो उगायरा तो दखा ना गोट की गांव चो लो गांव सोर सुतु ने रतो राय अले सौकार मैं तुचो गोट ले रिस नहीं हुए तुचो काजे हुए दे बे छेरी नाट मांतर आमचो का जाए बाटी चो बाट जाले आमी करून दखावा तेबे जान से गाँव चे भुतियार भाई बहन मन आमी इतरो लोग मिलून मिसून काय रेसिया भूई के जतनालू गोड़का कुसला करुण भाती रेशम विभाग बाटले मिरलो कहुबूटा के लगालू इतरी काम काजे बोले दखा गाँव ने रोजगारी ली और आम के आमचो करलो भूति बोले मिरली दखा ए कोसा कीड़ी पोस्तो काजे ए भूई चो रोपलो कोहु बुटा गच्चे नाई आई रांचो गच मन ले बोले कोसा कीड़ी की आमी पोसुकला सकू आई और असन ए साहब मन आम के सांगला से
3: सत्य सत्य
2: ए बे साहब मन ए दे और आम के ट्रेनिंग दे दे और सांग दे कि आमचो कोसा पोस्तो काजे समूह बना दे और कसन करतो राय काय करतो राय ये सफाई गोट के हुन मन इन भाती हमके सांग दे
4: असर असर आय ने

0: रेडियो स्टेसनले सामुनि वातमने
1: आसनै नै
0: हो
1: आ उसन्जाले सामुन्छु यति बेर मै बोल पुरो पुरो रहिदैन
0: हो का
1: हो ए ए पाक्लु ए पाक्लु ए पिलु
2: हो हो
1: ए सोनसा बाबु बुद्रु ए ए तुमी ए बाटे लेख कर आइ
2: हो हो
1: मै किनी घर बाटे जाउन भाती हुँ आइ हो हो अल देखते रह तुमी आइ
2: हो हो
3: ए चैतु दादा
0: हो
3: हाँ दे दखनु हुन मऊ रुख खाले कौन कौन जाने हाँ दे बस ना सोत
0: हे ओ साहब मना ते नंबर लगाए नु मैं बोले जाए ता
3: मना ताले हाँ हाँ दे

0: गावचो दादा दीदी मन आजी आमचो पुरे शहर बाटले कोसा कमाने के दखतो काजे साहब मन इला से आमचो कोसा कमानी की अबे तीन बरख और तुम ही तो दख साहस की आमी अबे नांगत कमानी करुक धरलु से अबे तुम के जसन जसन पूछ पछारा कर दे उसने तुमी ये साहब मन के सांगा से आले साहब पूछा बे
1: तो आले मैं तुमन मनचो गांव ने इले से सबले पहल आले तुमचो नाम मन के सांगुन दिले नांगत रतिका एनु
0: मैं लख मा
2: मैं काली आए हो
3: मैं सुकाली आए
4: मैं रही बारी आए
5: हाँ बुद्रू
3: आरा तो नहीं लगा
0: मैं सुन साया
1: तो सरपंच तुचो सरपंच बनलो दिन ले गांव चो लोग मन चो बड़ा उदिम पली मन यार गांव चो उन्ती बढ़ती पकाए हुए से मैंने असन सुना दे से आले काय काय तुम चो गांव चो बढ़ती आए काय काय आए सांगुं दक
6: मैं तो सांगते ची रहे से साहब आज ये गोट मन के ए भाई मन सांग दे
7: हाँ मुझे नाव चैतू आए हमें ये गोट के नहीं जानते रलू कि कोसा बोले के वह कमानी दे उख सके बोलते ये गोट के सरपंचो सांगलो के आमी जान लू आरु गांव चो पड़िया भोई ने सरकार चो उठ हिसाब ने को बूटा के मंडालू फिर वे काय रसिया कोसा कीड़ी के पोसून कमानी करूं से
1: हाँ ये तो हाँ अच्छा गोट के सांगलास तुम्हें ये कोसा चो कमानी करूं से बोलते मंत्र दखा घर काजे कहीं असन आमदनी तुमन मन के मेरे से
7: हो से
0: मोचो नाव लखमा है एबे आम के रोजगार काजे दूसर बाटे जाऊक नी लागे
5: आय
0: एबे आमचो काजे गांव ने ची रोजगार आसे और आम के घर ले दूसर बाटे कहाँ जाऊक नी लागे साहब
5: होय
0: और घर काजे बोले नगद आमदनी होय से चे
1: आले भाई मन बाटले तो पक्की नगद गोट के सांग लाए कोसा कमानी चो मंतर ये दीदी मन बलासोत आले दीदी तू ही सांगुं दक
3: हाँ ये मोचो नाम है सुकाली आमी बले रोज जेऊं से आम के कसन कर तो राय काय करुक लागे से इस अप्पाय गोट के नहीं रेशम विभाग बाटले साहब मन प्रशिक्षण देऊन भाती सांगला तेबे आमी सीखुन भाती काम करू से और घर काजे नंगत पैसा कमाऊ से
1: हाँ ये तो सुकली दीदी नंगत गोट के सांगली ये कोसा कमाने भी थी मंत्र ये गोटक दीदी बोले आसे आले दीदी तुचो काय विचार आयल तुई बोले सांगुंदा कि ये कोसा कमाने ची गोट के
4: हो साहेब मोचो नाम आए रायबारी मंत्र इथा यून काम बले करे से और पाछे घर जाऊन भाते खिंडी कादक पढ़ाई लिखाई बले करे से साहब
1: हाँ तो तुम्ही सपाय गांव चो लोग मन ये बुदू चो सरपंच बनतो के बले गांव चो उन्ती बाढ़ती तो करसा सी मंत्र संग संग काय कि तुम खुद आपलान घर चो बले ने आर्थिक उन्ती बाढ़ती करते जाए साथ ये तो खूबे नगत गोट है बले मनुख मन संग संग काय कि बायले लेकी मन बले ने आपलान जीवना चला तो काजे पैसा कोड़ी कमा तो गोटक नोआ वाट की तुम धरलास कितलो अच्छा नगद गोटा है तुम चो सांग तो के मके बले खूबे हरिक लागली आले ते बे मैं जाए से तुम विदा धरे साल जुआर
0: जुआर जुआर जुआर

0: हे नाकाड़ी,
1: ओए साहूकार।
0: मैं नहीं जानते रहे ये कोसाने बले धन चो कमानी हो सके बोलन।
1: हो साहूकार, मानतर ये गांव चो लोग मन ये भी कमानी करुन भाती उजरला।
0: सत्य आय काड़ी, मौके बल ये बेड़ा ने कमानी बुता काजे लापी गांव ले भूतियार मन अनुक पड़े से।
1: सत्य आय साहूकार, ये गांव चो लोग तुचो पूरे चिटपोट नहीं करते रला, ये बे छाती के डेंग करुन भाती हिंडसो।
0: ओ दखनू
1: आरु मैं सुन ले से, ये बे नंगत कोसा उपजाऊन ये गांव चो नर्सरी लोग के इनाम बल मिरली से मने।
0: आए इनाम?
1: ओ
0: असन ने ए ए ए ना काड़ी होते होते सरपंच मन ए ची बाटे है सोतना पूछन दक वहाँ है।
1: ओ पूछन दक, तू ही पूछन दक।
0: हो हो हाँ, राम राम ना सरपंच दादा।
2: राम राम राम राम
3: ए राम राम साहूकार। राम राम
4: राम राम हो राम राम।
0: ये सरपंच मैं सुन ले से और दखे से बोले, ये बे कोसा पोसून बाती बोले गांव चो लोग मन आप लो पाए ले ठिया हो सो।
2: तू ही तो बोलते रही साहूकार, कसन करुण भाती गांव चो लोग मन कोसा के कमानी कर दे बोलून, दक्ष इसका ये बे कसन कमानी कर सोत।
0: हो सरपंच, मैं ची गलत रहे, मचे ही गोड़ फंद होली, मैं ची टडम दखाते रहे।
2: फिर काय
0: मानतर गोट गोट आए
2: आले।
0: ये चेतु अरु लखमा तुम ही बल सुना ना।
4: हाँ।
0: दखाना ये बे पंचायत राज होली से।
4: हाँ।
0: जाले आगे ले मैं सौकार रले, मानतर ये बे मैं समझ ले कि गांव ने कोनी बड़े कोनी नानी नो आए।
2: हाँ।
0: यही लागुन मैं तुमन मन ले माफी मांगे से कि मोचो ले काई बले गलती होन गिली सी, जाले माफी दिया ना और गांव चो लोग मन के बले असमय आने मैं संग दे दे और मोचो बोले बेड़ा खाड़े कमानी नगद चलो मौके बोले संग दिया ना।
5: ए पर सौकार के अकेली ले काई नो
2: आले सौकार, गोट की गांव ने आमी रहूं से मिलुन मिसुन रतो राय। तू ही बोले गांव चो भी के कब्जा कौन रही
4: ने
2: पाछे आम बोलू बोल तक तू छाणू बोले दिलीस।
4: छाड़ लो
2: तू के बोले आमी संग देऊन दे, तू कोनी गोट चो फिकर नहीं कर।
3: अल तू बोले आमचे संग भीड़ कसन काड़ी।
4: सत्य आय, ये सौकार के बल नहीं होए छाड़ी।
3: हो ना यदे आमी सब पाए भाई भाई और भाई भाई नुहाओ भीने
4: भीने भाई।

0: हाँ तो टीरू काय सुंदर हलविना टीका रहे ने
1: okay.
0: धन आय कोसा कोसान बोला हमके धन होय से आय कि नहीं
1: होय से का
0: और कोसा ने कपड़ा बने से आय कि नहीं
1: okay.
0: कितनी जिनिस मन बने से
1: okay.
0: तो चल बिक लेते हम पैसे चाहे आय कि नहीं अरे की कौन लिखूं रोत
1: एक लिखूं रोत श्री मनोज कुमार पानीग्राही और प्रस्तुति रहे बलवीर सिंह
0: अरे तबाग धर लोग चुनाव बल सांग रहे
1: okay. ये तबाग धर रोत श्री शशांक कुमार ठाकुर
0: भरत कुमार गंगादित्य
1: श्री शोभा राम ठाकुर
0: गेनलाल नायक
1: श्री विद्याधर पांडे
0: बलवीर सिंह कच्छ
1: श्रीमती भूमिका दास निषाद
0: और सुश्री सरस्वती रायकवार
1: इतलो लोग अलवी नाटक ने बागदर रोत ने तो दख लेने समय भले आसे ने और मैं बोलते रहे ये चीज संगे गोटो गीत ओले नंगत लागती बोलते
0: धन नाय कोसा बोलतो के पैसा होतो के तू बोले गीत भावली ने
1: ओके okay. तो आले गीत के सुनो पाची गीत कुरिया मंच नाव के सांगवा

0: हाँ तो फूलो एकाए सुंदर गीत के तो सुन लू ने
1: हाँ, एक कौन गाउन रोत
0: एक गाउन रोत बलवीर सिंह का चारुण मंच
1: संगवारी
0: संगवारी मन
1: दक और गोटो गीत आसे ने
0: हाँ का तो
1: अंत एक गीत के बोले सुनो बोल
0: आले सुनो पांच गीत कुरिया मुझे ना के सांगवा
1: आले ने।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8 बजने को है। लीजिए सुनिए मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर छत्तीसगढ़ी में विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: जय जोहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केन्द्र के एनडीए सरकार के 12 बच्छर पूरा होए के मौका में प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम के संग मैं स्मिता शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केन्द्र के एनडीए सरकार हा पाछू 26 मई के 12 बच्छर पूरा करीस। 26 मई 2014 के नरेंद्र मोदी हा प्रधानमंत्री पद के शपथ ले रहीन। प्रधानमंत्री बने के बाद 12 बच्छर के दौरान श्री मोदी हा देश के हित में कतकुन बड़े फैसला करीन है। एमा जम्मू कश्मीर ले अनुच्छेद 370 ला खत्म करना, वस्तु और सेवा कर जीएसटी, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम, अग्निपथ योजना, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण, नागरिकता संशोधन कानून, नवा शिक्षा नीति संग्रह कतकुन फैसला शामिल है। उन्हें श्री मोदी के कार्यकाल में कतकुन जन कल्याणकारी योजना घलो लागू करेगी है। एनडीए सरकार के 12 बच्छर पूरा होए के मौका में भारतीय जनता पार्टी डहर ले छत्तीसगढ़ संग्रह देशभर में 5 ले 21 जून तक 12 साल विश्वास विकास और जन कल्याण के थीम में अभियान चलाए जाए। यह अभियान के उद्देश्य मोदी सरकार के 12 बच्छर के बड़े उपलब्धि, जन कल्याणकारी योजना और विकास के कामला लोगन तक पहुंचाना है। अभियान के दौरान पार्टी कार्यकर्ता मन हा लोगन के घर मा जाके उखर मन ले गोठ बात करके सरकार के योजना के जानकारी दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा केन्द्र मा एनडीए सरकार के 12 बच्छर पूरा होए मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला बधाई दीन है। मुख्यमंत्री हकीन कि श्री मोदी के दूरदर्शी निर्णायक और जन केंद्रित अगुवाई में भारत हा सेवा सुरक्षा आत्मविश्वास और विकास के नवा युग में प्रवेश करे है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स में पोस्ट कर श्री साय हकीन कि पाछू 12 बच्छर में श्री मोदी हा सेवा सुशासन और अंत्योदय के भावनाला केन्द्र में राखिन और निश्चित करिन कि विकास के फायदा समाज के आखिरी मनखे तक पहुंचाए। उमन किहिन की गरीब किसान माइलोगिन युवा वंचित और जनजातीय समाज के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए के जौन संकल्प प्रधानमंत्री हा ले रहिन वहा आज देश में दिखत है। मुख्यमंत्री हकीन की छत्तीसगढ़ के संदर्भ में श्री मोदी के नेतृत्व विशेष रूप ले प्रेरणादायी रहे है। कई बच्छर तक नक्सल हिंसा ले प्रभावित बस्तर और वनांचल क्षेत्र में आज विकास विश्वास और जन कल्याण के नवाधारा दिखत है। सड़क स्वास्थ्य शिक्षा मोबाइल कनेक्टिविटी बैंकिंग सुविधा और शासकीय योजना के पहुंच दूरस्थ जनजातीय अंचल तक निश्चित हुए है, जेखर ले लोगन के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए है। श्री साय हकीन की प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, हर घर जल, जन धन योजना और डिजिटल इंडिया योजना जैसन योजना ले गरीब किसान मातृशक्ति युवा और जनजाति समाज के जीवन में आत्मविश्वास के संचार हुए है। उमन किहिन की योजना के फायदा आखिरी मनखे तक पहुंचाए के प्रधानमंत्री के सोचा शासनला ज्यादा संवेदनशील और जिम्मेदार बनाए है। मुख्यमंत्री हकीन की श्री मोदी हा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र ला सिर्फ नारा भर नहीं रहन दिन फिर ओला व्यवहार और नीति के आधार बनाइन। मुख्यमंत्री हकीन की प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व हा देश ला सिर्फ आर्थिक रूप ले मजबूत नहीं बनावत है फिर सांस्कृतिक आत्मगौरव राष्ट्रीय एकता और जन भागीदारी की भावना ला घलो नवा ऊर्जा देवत है। मुख्यमंत्री हकीन की छत्तीसगढ़ सरकार हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में जन कल्याण सुशासन और अंत्योदय के संकल्प ला आगू बढ़ाए बर प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ये निश्चित करत है कि केंद्र सरकार की योजना के फायदा प्रदेश के आखिरी मनखे तक पहुंचे और विकास के फायदा समाज के हर वर्ग ला मिलाए। श्री साय हकीन की प्रधानमंत्री श्री मोदी के अगुवाई में भारत विकसित राष्ट्र बने के संकल्प ला नवा ऊंचाई तक पहुंचा ही। ता अभी आप मन सुनत रहे हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र के एनडीए सरकार के 12 बच्छर पूरा होए के मौका में प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम। एकरे संग स्मिता शर्मा के जय जोहार। मोदी
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। पेश है कार्यक्रम कूड़े फूल। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए हल्बी गीत। कलाकार है कार्तिक राम बघेल और साथी।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुड़ाई फूल। इस कार्यक्रम में आपने सुना कार्तिक राम बघेल और साथियों के गाए हल्बी गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम पिलामन काजी कोट। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंचतंत्र की कहानी। प्रस्तुति है उर्वशी पानीग्राही की।

पीला मन का जे गोट कार्यक्रम सुनतो सफाय पीला मन के मोचो बाटले खुबे खुबे मया और लाड पीला मन तुम्ही दखा तुमचो काजे आमी रोजे दिना ज्ञान ध्यान चो गोट धरून येऊ आजी मैं असनेची तुमचो काजे कहनी मन धरून इलिसे ए कहनी के तुम्ही सुना और नगद गोट मन के बले सीखा आजी चो पहिल कहनी आए बाघ और कोलिया खुबे पहिल चो गोट आए एक ठन झार ने एक झन बाघ रहते रहे हुन रोजे दिना एक ना एक झन जनावर मन के मारून खाते रहे हुन झार चो सफाय जनावर मन परेशान होन गेला काय काजे बल्ले रोजे दिना कोनी ना कोनी चो जीव के हुन बाघ धरून खाते रहे सफाय मिलून मिसून एक ठन विचार करला और बाघ लगे गला सफाय जनावर मन हाथ जोड़ून बल्ला बाघ महाराज ए जंगल चो राजा तुम्ही रोजे दिना एक जन जनावर के हाक देऊन खासे तो बाकी जनावर मन चो जीव तुमचो काजे बाचे दे

0: एक गोट के सुनून हुन बाघ मान लो और रोजे एक जन जनावर के आप लगे आनुन खादुक मुराला। असने ची खूबे दिन होली। एक दिन कोलिया चो पारी इली। हुन बाघ लगे जानुन बुझुन बेरले अमरली। बाघ रिसे रिस बल्ला, तू इतरो बेरले कहाँ रलिस? कोलिया बल्ला, महाराज मैं तो येते रहे बाटे मोके और गोटोक बाघ मिरला। हुन आपन के जार चो राजा आए बलते रहे। हुन बाघ और रिस होली, मके उन बाघ लगे तू ये बेची ने। असने उन बाघ बल्ला। कोलिया उनके चुआ लगे नेला और बल्ला, महाराज हुन बाघ ये चुआ भितरे आसे। हुन बाघ खाले निहारुन दखला, उनके आपलो महा दखा देला। बाघ बल्ला पक्की एता है और दूसर बाघ आसे। रिसे रिस उन चुआन भितरे डोगाउन दिला। रिसे रिस चुआ भितरे डोगाउन दिला। तो पिला मन, ये कहानी के सुनु नाम के ये सीख मेरे से कि कोनी बले काम भूता के जोन आए तुम्हें सोचुन समझुन और चला खोन कर ले सफाई भूता तुम चो नगत होए दे। तो असने चे आम चो लगे आसे और एक ठन कहानी हुनाए तुम चो पक्की संगवारी चो गोट। तो खूबे आगर चो गोट है, दुई जन पक्की संगवारी मन रला। हुन मन एक ठन झार बाटले हुन दूसर गांव बाटे जाते रला। हुन बाट फेर खूबे लापी रहे, मातर दोनों संगवारी का मजार हसुन बुकलुन जाते रला। हुन मन एक गोर चो बाद मारला कि आमी दोनों संगवारी संगे रवा, कितरो डंड होले बले आमी संग के निछांडू। मातर जसने ची हुनमन झार ने मजीगता आमरला, लाटा बुटा भीतर ले एक जन करिया भालू निकरला। डर काजे एक जन मीत संगवारी तो जीव बचातो काजे तुरते रुख ऊपरे चेगुन दिला। हुनके आपलो जीव चो चिंता रली और दूसर संगवारी के छांडून पराला। हुन दूसर संगवारी रुख ऊपरे चेगुक नहीं सकत रहे, मातर हुन समझदार रला। हुन सुनू रहे कि भालू मरला माने के नीचिए। हुन भूई ने तुरते सोन दिला और ओघाय होला, असन लागली जसन हुन मरलो से। भालू उनचो लगे गला, उनके सुंगला महा करला और कान रेटे काई तो बल्ला और हुन भालू गला। भालू चो लापी जातो के हुन संगवारी जोन रूख ऊपरे चेगु रहे, हुन उतरुन हरिक होते दूसर संगवारी के पूछला, हुन भालू तुझे काने काय बल्ला ना? दूसर संगवारी सांगला कि भालू बल्ला जोन पक्की संगवारी रहुआत, हुनमन अन्नाप चो समय ने आपलो संगवारी के छाड़ू नी पराओत। तो पिलामन दखा, ए कहनी ले आम के ये सीख मेरे से, पक्की संगवारी के अन्नाप चो समय ने तुमके छाड़तोर नुआए, उनके सहायता करतोर आए। और असने ची आम चो लगे और एक ठन कहानियाँ से, ये कहानियाँ परमा और पारदी चो। एक ठन झार भीतरे खुबे परमा मन रला। गोटोक दिना हुन परमा मन आपलो चारा खोजुक निकरला। हुन मन उड़ते उड़ते उड़ते बेड़ा भीतरे उतरला। उथाई भूई ने दखला खुबे चाउर के कोनी पकाउन रला। हुन परमा मन चाउर के बेचुक मुराला, मातर ये तो पारदी चो चाल रला, उठाए आगत ले जाल के पकाउन रहे और हुंचो ऊपरे चारा पकाउन रहे। जसने ची परमा मन चारा बेचुक मुराला, सफाई जाल ने अर्जुन गला। सफाई डरला, मातर परमा मन चो मुखिया बल्ला, तुम्ही नी डरा, आमी सफाई संगे मिसुन प्रयास कर ले बाचुक सकू। जसने मुखिया बल्ला सफाई संगे मिसुन ऊपरे उड़ला और सफाई जाल संगे उड़ला और उड़ते उड़ते अपन संगवारी मूसा लगे अमरला। मूसा तुरते जाल के काटला और सफाई परमा मन नगद बाचला और आपलो उड़ला। तो पीला मन दखा, ए कहानी ले आमके ए सिखुक मिले से कि सफाई मिलून मिसून रले कोनी बले दुख दंड के आमी पार करुक सकूं। तो पिलामन दखा असने ची और गोटो कहानी आसे बेंदरा और मोंगर। एक ठन बड़े रुख रहे, हुन रुख ने बेंदरा पिला रहते रहे। हुन रोजे रुख चो सुआद सुआद पाक मन के खाए और आधो खालो पाक के और आधो खादलो पाक के पानी रेटेर मंगर के बले उन दे। उन मंगर संगे पाक खाऊन खाऊन उनचो पक्की संगवारी होली। उनमन पक्की संगवारी बनला। गोटोक दिन मंगर चो बायले भीती बनला, ए हो भेंदरा चो पाक इतरो सुवाद आसे, ये चो कारजा कितरो सुवाद होए दे। मके चो कारजा के आनंदी आस नहीं। उनचो बायले बल्ला, उन मगर फिर चिंता ने पड़ला। मातर बायले बलू रहे हुनी काजे बेंद्रा के आप लोग पिटकुती बसाउन पानी भीतर ले नेते रहे। फिर बाटे मगर बल्ला, मके माफी देउन देसना संगवारी, मैं तुम के मारुक ने से मचो बायले तुम चो कर्जा के मांगे से ना, मचो बायले तुम चो कर्जा के मांगे से ना। बेंद्रा तो रला खूबे चलाक। हुन तुरते बल्ला, ओ हो ना तुम्ही पहिल कसन नी सांगलास, मैं तो मचो कारजा के रुखे संगावनी ली से। फेर मगर उनके बहड़ाला, बेंद्रा झटाक ने रुख ने चेगला और बल्ला, मचो मुरुख संगवारी कोचई कारजा देले बाहर निकरुक सके काय। मगर फेर लाज के पायलो तो पिला मन दखा, एक कहानी ले आम के ये सिखुक मिरे से कि कोनी बले काम के शांति ले विचार कर ले तुम्ही अड़नाप ले अड़नाप काम ले बले बचुक सकास। तो ये तो होली आमचो ज्ञान ध्यान चो गोट सीख कहानी मन। तो असने ची एक ठन तुमचो काजे मैं गीत सुनाए से, ये गीत के सफाई लोग सुना।
1: हाथ जोड़ो ना।

गीत बले तो सुन लू, तो जातो समय बले होली, तो जातो पूरे पिला मन का जे गोट कार्यक्रम सुनतो सफाए नानी नानी पिला मन के मच्छो बाटले खूबे खूबे मया और खूबे खूबे लाड़।

0: अभी आप सुन रहे थे पंचतंत्र की कहानी, प्रस्तुति थी उर्वशी पाणिग्राही की। कार्यक्रम आप सुन रहे थे पिलामन काजे गोट, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:45 होने को है। हिंदी व अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
2: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
3: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
3: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से ओडिशा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
1: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौधा पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौधा के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
6: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
5: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
7: लगभग 1 साल से यहां से दवाई ले रहा हूं, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का भी सलाह है कि जन औषधि से दवाई खरीदें।
5: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
9: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक धृतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माही में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritubrata Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader D.K. Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parmeshwar becomes Deputy Chief Minister while 12 legislators also take oath as Cabinet Ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. Police file FIR under charges of culpable homicide. Met Department warns of very heavy rainfall in Kerala and Mahe tomorrow. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000 after defeating China's Wang Hongyang. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. The support will be provided to companies to facilitate stable ATF pricing for airlines during the ongoing period of exceptional fuel price volatility arising from the West Asia crisis. Briefing media in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers.
11: ATF price stabilization fund mein
12: a self sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector where over 70 lakh jobs had started to be affected by the ongoing stress in the industry.
11: Because of the stress in the sector wo isse significantly mitigate hoga.
10: The Union Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Region Planning Board for replacement of old trucks and buses in Delhi NCR area. The scheme, with a total financial outlay of 9,585 crore rupees, seeks to incentivize owners of trucks and buses registered in the Delhi NCR region that comply with BS4 or earlier emission norms to replace them with BS6 or electric vehicles. Mr. Vaishnav also informed that the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the construction of a new coastal highway from Rameshwar to Paradeep in Odisha.
11: Odisha mein coastal highway.
12: In Odisha, the phase 1 of the coastal highway was approved today. It will extend from Rameshwar through Konark up to Paradeep, covering the stretch from the southern tip of Odisha to its central region, reaching Paradeep. Additionally, a very important highway project has been approved in Bihar, that is the four laning of the road between Khagaria and Purnia.
11: Khagaria se Purnia ke beech mein four laning.
10: In West Bengal, Social Security Scheme Annapurna Yojana was formally launched in the state today by Chief Minister Shubhendu Adhikari, transferring 3,000 rupees directly into the bank accounts of over 28 lakh women. Five women were symbolically handed approval letters during the ceremony. In a major political development in West Bengal, Ritobroto Banerjee has been appointed as the leader of the opposition in the West Bengal Legislative Assembly. The appointment follows the Assembly Speaker's reported recognition of a rebel group of Trinamool Congress legislators as a separate legislature party. More from our correspondent.
13: Ritobroto, a former CPIM Rajya Sabha MP who later joined the Trinamool Congress, secured the backing of nearly 60 MLAs, enough to cross the two-thirds mark required under the anti-defection law. The move has triggered a major split within the Trinamool Congress. Mamata Banerjee's faction had earlier nominated Shobhandeep Chattopadhyay as leader of the opposition. Speaking to reporters after meeting the speaker, Ritobroto claimed that the dissident legislatures now constitute the real and main opposition in the House. He said his group will act as a constructive opposition, supporting the government when needed, but standing firm against policies they oppose. The development comes amid an intense political crisis within the Trinamool Congress, which has been facing internal dissension following the recent assembly elections. The party had earlier expelled MLA Ritobroto and Sandipan Shaha over alleged anti-party activities. Political observers are calling this one of the most significant challenges to Mamata Banerjee's leadership since she came to power, drawing comparisons to the Shiv Sena split in Maharashtra. Legal battles and further defections are expected in the days ahead. Sandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
10: To strengthen surveillance and infrastructure along the India-Bangladesh border, the West Bengal government has approved the transfer of nearly 32 acres of land to the Border Security Force. At today's cabinet meeting in Nabonno, approval was given for the permanent transfer of this land for building border fences, security posts and other facilities. After the meeting, Minister Dilip Ghosh announced that a total of around 32 acres across several border districts have already been transferred to the BSF. In Karnataka, senior Congress leader D.K. Shivakumar was sworn in as the 25th Chief Minister of the state today. Governor Thavarchand Gehlot administered the oath of office. Dr. G. Parameshwar, who held the home portfolio in the Siddaramaiah cabinet, was sworn in as Deputy Chief Minister. 12 legislators also took oath as cabinet ministers. Several senior Congress leaders, including Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi and Congress President Mallikarjun Kharge, Chief Ministers of Telangana, Kerala and Himachal Pradesh, attended the ceremony. Prime Minister Narendra Modi has congratulated D.K. Shivakumar on taking oath as Chief Minister. In a social media post, Mr. Modi conveyed best wishes to him for his tenure. In a massive fire at a hotel in Malviya Nagar in Delhi this morning, 21 people, including foreign nationals, lost their lives, while 40 others were rescued. DCP of South Delhi, Anant Mittal, said the fire has been successfully extinguished and the injured have been shifted to nearby hospitals for medical treatment. 26 people are currently receiving medical treatment. 10 police personnel who rescued several trapped occupants were hospitalized after suffering suffocation during the operation. The Delhi police has filed an FIR under charges of culpable homicide in the incident. We have a report from our correspondent.
4: The Municipal Corporation of Delhi has also ordered an investigation into the incident. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu has said that beginning tomorrow, a high-intensity month-long enforcement and prevention drive will be launched under the joint leadership of District Magistrate, Deputy Commissioner of Police and Deputy Commissioners of MCD to conduct rigorous fire compliance inspections, audits and sealing of identified non-compliant establishments including hotels, guest houses, nursing homes, coaching centers and other vulnerable premises. Anpamish, Akashwani News, Delhi.
10: President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah have extended condolences over the loss of lives due to the tragic fire incident. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashvani News brings you a special feature on the government's efforts over the last 12 years across key sectors. Today we focus on the measures taken by the government towards the welfare of the middle class.
14: Over the past 12 years, the government has empowered India's middle class through wide-ranging reforms. Simplified taxation and stronger banking, insurance and pension systems have enhanced their financial security. Under the new tax regime, individuals earning up to 12 lakh rupees annually are paying zero tax. For the middle class, specifically, GST has delivered several tangible benefits by simplifying taxes and lowering everyday costs. The Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, launched in 2015, has transformed the lives of crores of people by providing them with secure housing. Out of the total 1 crore 25 lakh sanctioned houses, over 98 lakhs are completed or delivered to beneficiaries across the country so far. Talking to Akashvani News, Abhishek Kumar from Uttar Pradesh said the scheme is ensuring housing for the poor and bringing relief to those living in rented accommodation.
15: My name is Abhishek Kumar. I had applied under the Pradhan Mantri Awas Yojana 2 years ago. After submitting my application, I was allotted a house through a lottery draw. Following the allotment, I have been paying the required installments. Once all the installments are paid, the property registration will be completed in the coming months. After that, I will receive possession of the house. This is a very good scheme as it is helping poor people get access to housing.
14: Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has enabled 43.52 crore health cards, expanding access to health care protection. While Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana scheme is providing quality generic medicines at 50-80% lower prices through Jan Aushadhi Kendras. Talking to Akashvani News, Brahmdev of Bihar said that the medicines at this Kendras are available at very affordable price than the market.
16: My name is Brahmadev Malhaka. I am from Muzaffarnagar district in Bihar. I have been purchasing medicines from here for about a year. The medicines are available at affordable prices. The doctor advised us to buy medicines from Jan Aushadhi and we follow that advice and regularly purchase our medicines from here. If we want to buy the same medicines from outside, they are much more expensive. This government initiative helps solve the problems of the poor people.
14: The Pradhan Mantri Mudra Yojana, launched in 2015, has also evolved into a powerful instrument of empowerment. Under the scheme, 40 lakh crore rupees of loans have been disbursed to the beneficiaries so far. As incomes rise and opportunities expand, India's middle class is actively driving the nation's growth, ambition and future prosperity. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
10: Prime Minister Narendra Modi has congratulated Mette Frederiksen on assuming office as the Prime Minister of Denmark for a remarkable third consecutive term. In a social media post, Mr. Modi said India and Denmark share an enduring partnership founded on mutual trust, shared values and a common commitment to a sustainable future. The Prime Minister said he is looking forward to working closely with Mr. Frederiksen to further strengthen the India-Denmark Green Strategic Partnership and take the cooperation to new heights for the benefit of the people of both countries. United States Ambassador to India Sergio Gore has said 99% of the proposed India-US interim trade agreement has been finalized and both sides are working to resolve the remaining issues. Speaking at the Citi 2026 India conference in Mumbai today, Mr. Gore expressed confidence that the agreement could be concluded within the next few weeks. The Iran conflict has entered a severe new phase of escalation as Iranian ballistic missiles and drones struck U.S. military bases across Kuwait and Bahrain in the early hours today. A drone strike broke through Kuwait's air defenses and hit the main passenger terminal at Kuwait International Airport, killing one Indian national and injuring 63 others. Injuries ranged from blast wounds and amputations to head trauma and cerebral hemorrhages. The Indian Embassy in Kuwait confirmed the death of one of its nationals in the attack, expressing its deepest condolences to the bereaved family and saying the mission is closely coordinating with Kuwaiti authorities to provide all possible support. The Intermeteorological Department has issued an orange warning for heavy rainfall over Kerala and Mahe tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Uttarakhand, parts of northeastern India, West Bengal, Karnataka, Konkan, Goa, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep during the next 2 days. In badminton, India's Ayush Shetty advanced to the second round of the Indonesia Open Super 1000 with a comeback win over China's Wang Hongyang 8-21, 22-20, 21-15. India also secured a mixed doubles victory as Rohan Kapoor and Ritwik Agarwal defeated Chinese Taipei's Yang Po Huan and Hu Lingfang. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritubrata Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal and West Bengal Legislative Assembly. Congress leader D.K. Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parameshwar becomes Deputy Chief Minister, while 12 legislators also take oath as cabinet ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000. That is all in the news at 9. Good night.
17: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:15 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए फिल्म हसीना मान जाएगी से। गीत रचना है अख्तर रोमानी की। संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी। आवाज दिए हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: अब सुनिए फिल्म कश्मीर की कली का गीत। आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। SH बिहारी के लिखे गीत को संगीत में पिरोया है OP नैयर ने।

0: पुरानी फिल्मों से। अभी आपने सुना इस कार्यक्रम का अंतिम गीत। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जगदलपुर को। रात के 9:30 हुए हैं। पेश है शासकीय योजनाओं की जानकारी पर आधारित कार्यक्रम ओवार्ड। इस कार्यक्रम में आज का विषय है श्रम विभाग की योजनाएं। इस विषय पर यशपाल सिंह ठाकुर से भेंट करेंगे बलबीर सिंह कच्छ।
1: रेडियो सुन तो सपाए भाई बहन मन के खूबे खूबे सेवा जुहार। ओवार्ड ने आज आमी बल्ले ने श्रम विभाग ने काय काय आम चुका जे वाट मन आसे योजना मन आसे यही सब गोड बात जना तुका जे आज आम चुता ने इलासे श्री यशपाल सिंह ठाकुर एमनात श्रम कल्याण निरीक्षक जिला बस्तर जगदलपुर छो। तो यशपाल सिंह ठाकुर दक मैं सबले पहले जानुक चाहे से कि जोन आमचो जोन श्रम कल्याण तुम निरीक्षक आस तो असन आमी श्रमिक जोन भाई बहन आसोत गांव ने नाले शहर ने बोले तो यमन काजे बल्ले ने तुमचो जोन विभाग ने आए बल्ले ने काय काय कल्याणकारी योजना मनासे उवाट मनासे।
2: तो सबले पहल तो मैं यशपाल सिंह ठाकुर श्रम कल्याण निरीक्षक बस्तर जिला मुचो बाटले सपाय गांव करिया दारा दीदी और श्री आंसजन मन के मैं जुहार करें से। और मैं श्रम कल्याण निरीक्षक जो पद में आसे बे तो आमचो काम ये हुआ है कि जितलो प्रकार चो श्रमिक जसन के लेबर मन रुआत हुन मन चो सबले आगे हमें पंजीयन करवाऊ।
1: अच्छा।
2: और पंजीयन कर लो पाछे एमन के जो सरकार बाटले जो जो योजना मन चले से जो कल्याणकारी वाट मन चले से उनचो आमी लाभ दिलाऊ।
1: अच्छा।
2: तो सबले पहल आमचो ये काम रुआ है कि हुन मन चो आमी पंजीयन करूँ।
1: अच्छा।
2: तो पंजीयन कर तो काजे आमचो बाटे दुई प्रकार चो प्रवर्ग आसे।
1: अच्छा।
2: एक ठन रुआ है छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल और गोटो का है असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल। तो सबले आगे ये जान तो जरूरी है कि कसन लोग मन चो कसन चीज में फायदा मिल सके। तो जसन की मैं कर्मकार कल्याण मंडल भवन निर्माण सांगले हुता असन रुआ है कि असन लोग मन जोन कोनी भवन निर्माण चो काम कर सोत या फिर कई निर्माण चो काम कर सोत जसन की कोनी भवन बने से तो सबले पहल पाया खोन से पाया खोन तो बीता हुए से फिर उनके बाद रेजा कुली होता काम कर सोत रेजा कुली बाद में फिर राजमिस्त्री उनके आगे बढ़ाए से फिर बढ़े ही आसे कोनी प्लम्बर आसे नल काम फिटिंग करे से कोनी लाइट बीता आसे कोनी पेंटर आसे तो उन जोन बल असन काम कर सोत हुन निर्माण काम ले जुड़ला से हुन मंचो एता पंजीयन हुआ है भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में। और गोटो कर हुआ है प्रवर्ग ये आए असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल ये उसन प्रवर्ग आए जहां लोग मन स्वयं चो व्यवसाय कर सोत छोटे मोटे ये जो काम कर सोत जसन की कोनी चाय ठेला लगाए से कोनी सब्जी ठेला लगाए से कोनी खेतियर मजदूर आए कोनी नाव ठेला चलाए से मतलब खुद चो जो व्यवसाय कर सोत उसन मन चो असंगठित कर्मकार कल्याण में पंजीयन हुआ।
1: अच्छा।
2: तो पंजीयन कर तो का जसन है कि दो तीन प्रकार ले आमी पंजीयन कराऊ सकूं जसन की गांव गांव में आजकल तो असन होली से

0: कि चॉइस सेंटर मन खुल्ले से,
1: हाँ
0: तो चॉइस सेंटर ने जाऊन बले मन आप लोग आवेदन करू सको।
1: अच्छा
0: नाहले दूसरा तरीका है कि आमचो श्रम विभाग जो जिला कार्यालय है हुता बले आमचो ऑफिस हासे हुन मन ये तय हुन आप लोग पंजीयन करा सकते हो।
1: अच्छा
0: और तीसरा एक सुविधा और होली से कि अदाय जनपद चो माध्यम में हर जनपद में जैसे कि आमचो बस्तर जिला में 7 ब्लॉक आसे,
1: हाँ हाँ
0: सातों ब्लॉक में आमचो अदाय कर्मचारी मन बस सोत, तो हुताबल जाऊन एमन आप लोग आवेदन निःशुल्क करा सको।
1: अच्छा हाँ,
0: तो पंजीयन करा तो का जेका है मेन मेन जो नाम के दस्तावेज लागे से हुना है आधार कार्ड, बैंक पासबुक और परिवार चो जो सदस्य आसोत, जैसे कि परिवार में पिला जिला हो दे, पति पत्नी जो हो दे उन मन चो आधार कार्ड और गोटक मोबाइल लागू है।
1: अच्छा।
0: मोबाइल उनका लागे से काय काज की आजकल ऑनलाइन सिस्टम होली से,
1: हाँ हाँ
0: तो जब तक सामने बिता लगे ओटीपी नहीं जाए
1: हाँ,
0: तब तक फिर काम आगे नहीं बढ़े।
1: नहीं बढ़े
0: हाँ, तो सब ले आगे तो ये मंचो पंजीयन हो दे, ऑनलाइन प्रक्रिया है। पंजीयन होलो पाछे गोटोक समय सीमा रू है कि जैसन की 3 महीना होली नाले 1 महीना होली, तो हुंचो बाद फिर ये मन योजना का जे आवेदन कर सकूत।
1: अच्छा
0: हाँ, हुंचो बोल एक टाइम रू है, अलग अलग योजना का जे अलग अलग समय सीमा दिली से, जैसन की भवन सन निर्माण में सांगे समय कि जैसन पंजीयन होली, पंजीयन होलो पाछे पिला मन का जे छात्रवृत्ति है।
1: अच्छा
0: हाँ, असन पिला मन जोन मजदूर माता पिता हो दे उन मंचो पंजीयन होली से और उन मंचो पिला मन पढ़ाई कर सोत स्कूल नाहले कॉलेज में, पहली पास होलो पाछे उन मन जहां तक बल पढ़ते रेगुलर,
1: अच्छा
0: मतलब असन ना कि प्राइवेट घर ले दे सोत उसन मन के नहीं मेरे, जोन रेगुलर पढ़ाई करे से उसन मन के हमें छात्रवृत्ति प्रदान करूंगा।
1: अच्छा
0: और असन बलाए कि अगर स्कूल बांटले नाले कॉलेज बांटले उन मन के छात्रवृत्ति मेरे से तब बल आमचो बांटले मिरु है।
1: अच्छा
0: हाँ, और कक्षा हिसाब ले अलग अलग है, जसन की पहली क्लास पास होला उनचो बाद ले अलग अलग कक्षा स्तर में उन मन के छात्रवृत्ति बढ़ते जे हुए।
1: अच्छा
0: हाँ, और लेकी मन का जे थोड़े ज्यादा है और लेका मन के थोड़े कम मिरु है,
1: अच्छा
0: तो असन टाइप छो है।
1: और इस संग कहीं दुर्घटना बीमा वगैरह बोल रहे हैं?
0: हाँ, ये तो सब ले मुख्य बीमा आम थाने कोटोका से काय काज की मजदूर मनात अब कई घटना होन जाए ऐसे, तो जैसन की कोनी काम करते करते अगर कार्यस्थल में जोन पंजीकृत अगर कोनी मजदूर आसे और उनचो काम करते करते अगर मृत्यु होन गेली, तो उसन लोग मन के उनचो मतलब नॉमिनी जो होए दे उनके 5 लाख रुपए तक भी रुक सके।
1: अच्छा
0: हाँ, और कार्यस्थल में काम करते करते अगर कुछ घटना होली और हाथ पांव टूट फूट होली हमेशा का जो उन अपाइज होलो, तो उसन मन के बल 2.5 लाख रुपया है।
1: अच्छा
0: हाँ, और के भी भगवान ने करो कोनी सामान्य मृत्यु होन गेली काची कि बीमारी से मारे में कोनी खत्म होला, तो उसन मन के बले 1 लाख रुपया मिल सके।
1: अच्छा
0: हाँ, ये बोला है।
1: तो असन कहीं दुर्घटना होली बोले ने फिर एचो जन प्रकरण आए बोलू भी।
0: हाँ,
1: मतलब सांग तो भी है कहाँ उन खबर
0: हाँ,
1: देते हुए थी।
0: तो एचो यही तरीका है कि सबले एक टाइम रहुआ है चो कि 3 महीना चो भीतर आम के आवेदन करते रहे, 90 दिन चुकली बोलने फिर ये चो पोर्टल में फिर समस्या हुआ।
1: अच्छा,
0: तो उनके 90 दिन चो भीतर आम के सूचना देते रहे, ये सूचना एमन अगर खुद के पता जाल तो खुद बले उग सको कोनी बल परिवार ले नाले सरपंच नाले सचिव कोनी बले उन मन चो माध्यम में आमके पता चले दे, तो आम उन मन के दस्तावेज सांगू नहीं हुआ।
1: अच्छा,
0: काय का दस्तावेज लागे दे हुन हिसाब ले उन मन आवेदन कर सको।
1: अच्छा
0: और ऐसे संग संग कुछ कुछ अच्छा अच्छा योजना और बला से, जसन की ये होली और कोनी मेहरार मंचो जसन कार्ड बनली से, और हुंचो जसन पहल पीला होए से जन्म धरे से नाले दूसरा पीला जन्म धरे से, तो उसन पीला मन काज बले 20-20 हजार रुपया सरकार बांटले
1: मेरे
0: मिलुए।
1: से।
0: हाँ
1: अच्छा
0: हाँ, मतलब जन्म
1: धरलो
0: जन्म धर लो पाछे, मतलब 3 महीना जो भीतर उन मन के आवेदन करते रहे।
1: अच्छा
0: 3 महीना ले पाछे फिर काई नहीं हुए, ये जो नियम ही उस नहीं है कि
1: उसने।
0: हाँ।
1: अच्छा
0: और एक बोलूत महतारी जतन योजना, हाँ ये वित्त योजना के महतारी जतन योजना, और गोटो गाय मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना। नोनी सशक्तिकरण योजना में ऐसा है कि जसन की माँ बाप जो नाम में काची नाम ने पंजीयन होली से, और पंजीयन होलो पाछे हुन मन चो बेटी पहला नंबर नाले दूसरा नंबर चुपीला अगर लेकी 18 साल ले 21 साल चो बीच में आसे, तो हुन लेकी मन काज बले आवेदन कर लेने 20-20 हजार रुपया हुन मन के मिलुए।
1: अच्छा
0: लेकी मन के और सियान सहायता योजना गोटो का से, सियान सहायता योजना में मसन है कि अब काम करते करते एक टाइम के बाद आदमी बल सियान होए से है नहीं, तो हुन मन के काम करुक लाए थोड़े से परेशानी बल जाऊ है, तो उसन मन का जो सियान सहायता योजना आसे होता यह है कि जसन कोनी आम थाने जैसन 18 साल ले धरून 59 साल तक जो लोग मंचो हुआ है, 60 साल बाद का है उन मंचो कार्ड खत्म हुआ टाइम।
1: अच्छा,
0: तो 59 साल ले 60 साल से बीच जो सियान हो दे उन मन के बल 20,000 रुपए में रुक सके।
1: अच्छा,
0: ये बोला है।
1: अच्छा,
0: तो ये बड़े बड़े योजना है। ये संग संगे उन मन का जन कल्याणकारी योजना बोले ने साइकिल सहायता योजना है, होता बोले उम्र जो सीमा से 18 साल ले 35 साल तक जो मेयर आर को नहीं हो दे तो उन मन के साइकिल, और 18 साल ले 50 साल तक जो पुरुष मन के उन मन के बल साइकिल।
1: अच्छा,
0: है नहीं। और कोनी अगर सिलाई चो ट्रेनिंग धरला से और ये आम चो कार्ड बल बनाला से तो उन मन के सिलाई मशीन बल दे सकूं।
1: अच्छा,
0: हाँ, सिलाई मशीन बल है। और जसने मन काम करुआत कोनी जसन की निर्माण काम कर सोत तो उन मन का जे औजार लागे से रापा तगाड़ी गैती कोनी बढ़ी आए तो बढ़ी सामान, मिस्त्री आए तो मिस्त्री सामान, जो जसन काम करे से उन मन के उन मन चो एक हार सामान मिलू है।
1: अच्छा,
0: हाँ, उन मन के एक हार एक हार मिलती हुई सामान है।
1: अच्छा,
0: और दूसरा चीज है सुरक्षा उपकरण वाला से हम थाने हेलमेट जूता ग्लव्स टोपी ये बल आम दिवा।
1: अच्छा,
0: आजकल असन बोलिए से कि आगे सामान बल मिलते रहे, बीच बीच में कुछ कुछ योजना में बदलाव हुआ है तो उता सामान नहीं दे उन मन चो उतली जितलो बल पैसा बने से उन मन के पैसा मिल हुआ है।
1: अच्छा,
0: नाले साइकिल सामान नाले पैसा
1: पैसा
0: ये दोनों चीज देख सकूं।
1: अच्छा,
0: और एता कोटो मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास योजना बला से जसन की कोनी जसन रेजा कुली आए नाले मिस्त्री आए हुन आप लोग आपके थोड़े से और बढ़ाऊ चाहे से तो मिस्त्री जो ट्रेनिंग धरतो का जो उनका अगर कोशिश करे तो उनके हमें ट्रेनिंग बल दे सकूं।
1: अच्छा,
0: हाँ, और कोनी मिस्त्री आसे हुन अगर टाइल्स बीती काम सीख तो मन करे तो उनके हुन बल ट्रेनिंग देऊंगा।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो उन मन जो बल थोड़े उन्नति बल हो और थोड़े बढ़ते काजे ये बल जरूरी है।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो ये बल है। और गोटोक मेहरार मन का जाम थाने थोड़े ज्यादा योजना आसे जसन की कोनी असन मेहरार हो दे जो ड्राइविंग लाइसेंस हुन लगा से गाड़ी चलोक जाने हुन और आमचो कार्ड बना ली से और हुन चो उम्र 18 साल ले धरुन 50 साल चो बीच में आसे तो उसन मेहरार मन का जे ये योजना है कि उन मन के ई रिक्शा बोले हमें देख सकूं।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो ई रिक्शा चो जो पहला डाउन पेमेंट हुआ है उन डाउन पेमेंट आम दिवा।
1: अच्छा,
0: 1,00,000 रुपए आम दिवे और 1,00,000 दिलो पाचे उनचो बाद फिर बाकी जन किस्त जो रह दे पाच पाच लो बीती हुन पटक सके।
1: अच्छा,
0: हाँ, और कोटक और एक अच्छा योजना इली से आवास योजना।
1: अच्छा, आवास
0: आवास जसन की ये बेच चले से जी सफाई बाटे आवास तो आम थाने ऐसा ना है कि जोन मजदूर आप लोग पंजीयन करा लो से और पंजीयन करा लो पाचे हुन जो कार्ड बन लो कम से कम 3 साल हो रत रहे तो उसन मन के खुद चो नाम में पट्टा नक्शा खसरा बीवन सबरो खुद चे नाम में
1: खुद चो नाम में
0: हाँ और उसन लोग मन के 1,00,000 रुपए मिल सके। मानता हूं तक नियम ये है कि 1,000 स्क्वायर फीट ले आगर नहीं होता रहे जो जमीन।
1: अच्छा,
0: मतलब घर बना तो का जो जगह दखलो से 1,000 स्क्वायर फीट ले आगर नहीं रहता रहे मतलब लगभग 2 डिसमिल आसपास जाए से उन ग्रामीण क्षेत्र का जे और शहरी क्षेत्र का जे 500 स्क्वायर फीट।
1: अच्छा,
0: हाँ, लगभग 1 डिसमिल आसपास उन चो लग जमीन रहता रहे तो उनके घर बनाते का जे 1,00,000 रुपए आम दूंगा।
1: अच्छा,
0: हाँ, ये बोला है तो ये असन असन कुछ कुछ बड़े बड़े योजना मना से। हाँ, तो ये मन के लाभ धरतो का जी आए कि सबले पहले तो ये मन के पंजीयन करा
1: पंजीयन कराओ पड़े।
0: हाँ, और पंजीयन निशुल्क है।
1: हाँ, बोले कहीं पैसा वगैरह
0: कहीं पैसा ऐसा नहीं लागे। अगर चॉइस सेंटर में करा दे तो उनचो भूख सके उन मन धर दे जो बोल फीस है मानतर का है। आमचो विभाग में कलेक्टर ऑफिस आमचो मेन ऑफिस है कलेक्टर ऑफिस में आमचो श्रम विभाग उतार से तो निःशुल्क तब पंजीयन हुआ है। और दूसरा तरीका ये है कि हर जनपद में आमचो लोग मन बस होत तो हुताले बल जाऊन मन पंजीयन करा
1: सको।
0: और बीच बीच में आमी काया है गांव गांव में जाऊन जाऊन शिविर लगाऊंगा।
1: अच्छा,
0: तो शिविर चो माध्यम में उन मन के जागरूकता बले हुआ है और उन मन चो पंजीयन बल करून दिवा। और गोटोक चीजें आए आम थाने की हर 5 साल में एक नवीनीकरण बल करा तो रहे।
1: अच्छा, 5 साल
0: पांच साल ने।
1: अच्छा,
0: 5 साल पुरली और हुंचो बाद कुछ घटना घटून गेली और उन नवीनीकरण नहीं करा लो उसको तो फिर
1: थोड़े लाभ में रुक नहीं
0: रुक सके। और आजकल जैसे मैं सांग ले कि ऑनलाइन प्रक्रिया होली से तो ऑनलाइन प्रक्रिया में काया अदाय बिना ओटीपी चो काम नहीं हुए तो हुनमन के आप लोग मोबाइल नंबर अपडेट संगातो रहे।
1: अच्छा
0: हाँ काया होली की मोबाइल नंबर अगर बदलून दिला बीच में तो ओटीपी नहीं जाए,
1: नहीं जाए।
0: अब ओटीपी नहीं जाए तो फिर काम भी नहीं हुए फिर।
1: हाँ
0: तो ये चीज के थोड़े ख्याल रखते रहे मन के।
1: हाँ
0: तब फिर मन के लाभ मिल सके।
1: भले आजकल तो कहीं बोल काम काज आधार कार्ड और मोबाइल नंबर,
0: मोबाइल नंबर
1: ये दोनों चीजों को जरूरी।
0: हम थाने आधार कार्ड बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर एकदम जरूरी होली
1: जरूरी
0: होली एकदम मतलब उन सब लिंक रहे हुए।
1: अच्छा तो बोले ये सब आमचो जो लेबर काम कर तो जो और बोले सांगलास ये मंच का खूब अच्छा नंगत वाटा है बोलू
0: है
1: कि नहीं और कहीं ऐसा नास्ता।
0: हाँ योजना में तो और बला से जैसन की ये मन काज में सांगले पीला मन काज जैसन गोटो नया योजना इली से निशुल्क कोचिंग योजना खासतौर पे मेहरार मन काजे और पीला मन काजे हम थाने अच्छा अच्छा योजना मन चलते रहुए तो गोटोक कोचिंग योजना ली से जसन की कोनी माता पिता के नाम में कार्ड बन ली से तो हुंचो जो पहला दु जन पीला मनास होत अगर हुनमन बारहवीं पास होला से और बारहवीं पास होलो पाछे हुनमन जब बल काई कोचिंग करूक चाहसोत जसन की आजकल व्यवसायिक परीक्षा मंडल तैयारी चले से बीएससी तैयारी चले से रेलवे तैयारी चले से तो ये सब जो तैयारी करतो काज अब बाहर जाओ पड़े से मन के और ये सब काज खर्चा बल लागे से तो आमचो बाटले निशुल्क एबे ये मन के फ्री कोचिंग मिरे दे।
1: अच्छा।
0: और यामी नहीं कराऊं दे बकायदा कोटक संस्था ही हुआ है उन मन से कोचिंग कराए दे तो उन पूरा निशुल्क रह दे।
1: अच्छा।
0: और कोनी कोनी माता पिता चौसन पीला मनासो जोन पढ़ाई लिखाई में अच्छा आसोत और उनमन आगे बढ़ुक चाहसोत और उनमन दसवीं बारहवीं में जसन की अच्छा परसेंट धरुन आन दे तो उसन पीला मन के प्रोत्साहन का जब आम थाने 10,000 ले धरुन 50,000 तक सहायता राशि आसे।
1: अच्छा
0: हाँ और कोनी बारहवीं में अगर प्रावीण्य सूची बोलू आज की मतलब मेरिट लिस्ट में ये हुआ कोनी तो उसन पीला मन के बोले आमचो बाटले अच्छा मतलब मिरु है पैसा वैसा और काया जसन कोनी टॉप 10 में आमचो छत्तीसगढ़ में टॉप 10 में अगर कोनी पंजीकृत श्रमिक चो बेटा बेटी इला तो हुन मन के बल 1,00,000 रुपया मिरु है।
1: अच्छा
0: हाँ हुन मन के बल 1,00,000 रुपये मिरु है टॉप 10 में इलो लोग मन के। और कोनी अगर खेल कूद में आगे जाओ चांस कोनी स्टेट लेवल में नाले नेशनल लेवल में कोनी आगे बढ़ते खेलकूद में तो हुन मन के बढ़ा तो काज बोले आम छानी स्कीम मना से।
1: अच्छा
0: हाँ ये बला से तो कुल मिला उनका है कि गरीब तबका चो लोग मनात और उतलो अच्छा पढ़ाई लिखाई नहीं करोग सब करो। तो उन मन काजे काफी कुछ मतलब मदद हम चो बाटले मिरुए
1: मिरुक सके। तो यशपाल सिंह ठाकुर तुम इतलो अच्छा श्रम विभाग चो जोन बले बले ने गरीब दुखी काजे योजना मन आचे सुविधा मन आसे बले ने इतलो अच्छा बले ने हल भी ने गोट बात कर लू गाँव चो लोग मन सुन दे जान दे आरु एचो लाभ धरुकला सक दे कसन बल्ले का है कि असन गोट मन जो गाँव चो लोग मन किया इतलो सरसरा बल्ले ने कहा है कि हल भी ने कोनी अधिकारी कर्मचारी मतलब अमरा तो मुश्किल रहे से आरु रेडियो तो असन है कि एक आराम ये गोट बात करूं से तो पूरा बले ने आजकल तो पूरा दुनिया सुन सो है कि नहीं।
0: हम बल यही चाहूं से कि लोग मन तक ये सब योजनाओं के बारे में पता चलो उन मन बल ये सब जो लाभ धरो काय काज की उन्हीं आए कि पता बल चलू बल है तब बर ले थोड़े ये मन ये तो काजे काय सोचू आत की थोड़े संकोच बल करू आत इतरो बड़े ऑफिस में कसन जाऊं दे आम च संग असन हुआ है कि आम जसन जाऊं समझाऊ बलाऊं कि फलाना फलाना आम चो ऑफिस आसे ता तुम या तुम चो काम फ्री में हो दे मात्र ये तो काज थोड़े संकोच बल करू आत।
1: हां हां नहीं ये जसन की तुम जनपद ब्लॉक स्तर ने बोले ये जो विभाग चो जन कर्मचारी अधिकारी मन रहे सोत तो ये चल बल का है कि गांव चो लोग के खूबे फायदा मेरुक लाए सके
0: तो उन्हीं हमें श्रम संसाधन केंद्र खोले सोत।
1: हाँ हाँ तो अली इतलो अच्छा गोड बार तुम ची योजना मन के सांग तो काज खूब खूब जुहार
0: जुहार।
2: अभी आप सुन रहे थे ओवाट शासकीय योजनाओं की जानकारी पर आधारित कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज का विषय था श्रम विभाग की योजनाएं। इस विषय पर यशपाल सिंह ठाकुर से भेंट किए बलबीर सिंह कच्छ। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: लीजिए सुनिए जलधर और साथियों के गाए हल्बी गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे जलधर और साथियों की गाय हल्बी गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय रात के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम परिचर्चा। इस कार्यक्रम में आज का विषय है विवाह संस्कार की परंपरा। प्रतिभागी है सुमारो राम कौशिक, मंधर राम नाग। संपादक है बलबीर सिंह कच्छ।
1: रेडियो सुनतो भाई बहन मन, आमचो जनजाति विवाह संस्कार जो परंपरा आगे कसंदली आरु एबे कसना से आरु आगे आरु एपचो ने काय फरक दखा दे से बले ने खर्चा पानी ने बले ये सब गोड बात कर तो काजे आजी आमता ने इलासे श्री मंधर राम नाग मुरिया समाज ले आते मन और दाचो पदाधिकारी बले आत और एची संगे सोमारू राम कौशिक सोमारू राम कौशिक एमनात कोया समाचो संभागी संरक्षक बलियात। तो सबले पहले मैं मंधर राम नाग के पूछे से कि आगे जसन की जनजाति विवाह संस्कार ने बोले आम जो जनजाति ने गांव ने जोन बोले लोग निवास कर सो मूल निवासी लोग उनमन चो जोन विवाह बल्ले ने शादी ब्याह करते रहो बोले खूबे कम खर्चा ने होते रहे मंत्र एवे किनिक फर्क दिखा रहे से
2: तो ये बे बोलू बे बलबीर कच्छ जी। तो आजकल शादी विवाह चो दौर खूब चले से मैं देखे से कि खूब परिवर्तन होली। तो ये परिवर्तन में के दखुन बाती मैं कसन लागे से कि आम चो पैसा कौड़ी बिल खूब नुकसान हो जाए और बे मतलब चो खर्चा इता यही से हमी बेटी देव से या बेटी आनू से मैं दोनों वाट दखें सी तो लोग खर्चीला आए आगे असन आमचो जसन जन्म अरे जान तो बेरा ले इतलो ताम झाम नहीं रहे। ये भी जाऊँ से बाजा मोरी तो आगतले रही परंपरा है आमचो आदिवासी समाज में जो बोले आमचो गाजा बाजा रहे। अब गाजा बाजा बोल दका असन गाजा बाजा होली से कि आमचो कान चो कीड़ा बल गिर मने घसर तो सन इतलो आवाज डोकरा डोकरी तो उनमन चु कान फाट तो सन आवाज भी थी गोटोकुन बाजा नहीं सकली से। तो ये बाजाज खर्चा वाले बहुत खूब आए आमचो बाजा मोहरी आगे रे ली तो उन बीती आमचो पारंपरिक बाजा मोहरी रहे उनके दख थ्रू आमचो खर्चा जबल बंद रहे मने सीमित रहे। उसी प्रकार आमी छापर बनाते रहूँ पहले छापर के रूप में छापर ने आमी काय करो आमचो रीति रिवाज परंपरा ने मांडो गोटोक रही मांडो गाड़ भी थी उता गोटोक मऊच ना नहीं असन खंदी कान उता गाड़ू उनचो संग ने एक जो है स्वर्गी रूप चो खंदा कुता गाड़ू आरु ये मैं कहाँ कहाँ तके से एक टेंट वल होली और छापर वाल आम लगे उतलो डारा बुटा वाले नहीं आए आमचो पीलका तो रुक के गोंदून दे और छापर बोले जहाँ उता बिया मंडप आए नहीं उता बना जगह नहीं दूसर जगह बोले आठ गोंदुर माते उनका पाटन दे ये बोले आमच खिनिक आमच पर्यावरण का खिनिक नुकसान होए से। तो उन्हीं प्रकार आमचो जसन की गरीब लोग बलासु सौकार बलासु आमचो उंच बराबर आमी बना थोड़ी हुआ गरीब लोग बोले हैं जमीन की बिकुन जमीन के गाना मारून और बैंक कर्जा धरून माती हमी शादी ब्याह करूँ से मचु हिसाब ने तो ये खूब फरक आशा गए शादी ने आरोप शादी में
1: दे तो अच्छा गोट के सांगलास मंदर राम नाग भाई मैं सोमारू राम कौशक के पूछे से कि जसन की आगे बल्ले ने आरु ये भी बोले जसन की काई बोले काम हो लेने बोले बिया ची शादी नहीं और बोले दोसन सामाजिक काम है क्रियाक्रम हो रहा है बल्लने सपाए मिलन में सुन बल्लन करो जैसन की घर घर ले बल्ले चाउर बलिया है लोन बलिया है जोन बलिया है सगा लोग ये उन बातें धरुने हो तो उतलिन बल्ले निपटते रहे मांतर ये भी दखा दखिन का है कि खान पान ने बल्ले खिनिक फरक ज़्यादा खर्चा हिसाब नहीं हो ऐसे तो एक ही बल्ले का है कि आम चो जोन समाज चो लोग मन क्या है ज्यादा आर्थिक जो बोझ नहीं हो ये चुका तुम्हें कहा है बोलो चाहे
3: बहुत अच्छा गोट है बलवीर खज दादा नाग दादा हम के आज जो युग ने और परे पहले छो जो नीति नियम है उनमें फर्क खूब आसे वैसे, क्योंकि ये भी छो माहौल और आगे छो महल में हमन मन घर घर ले सोलोक छाउर मेरे नीति हिसाब ने इंडिकेशन मऊ नेत्रोत मऊ मंद नेत्रोत और लोन बोले मेरी बोले आए जितरो शक्ति है उतलो गरीबो चाहे या मेरो नवन बाती उता एक भंडार सार उतरे उथाली दखते रहो और सामने भी ताके चाहे लेखी भी आओ चाहे लेखा भी आओ उनके बड़ा अच्छा सहयोग मिलते रहे और कम खर्चा ने नानी असन मांडो बनाते रहो नल कहीं कि हम जो समाज तो कई समाज आसे कोनी समाज तो असनी बोले पानी अर्धी गसन बाती नीति के निपटा रहो निपटाते रहो और कहीं कहीं तो जैसे रुक रही गोटा है जैसे मंदर दादा सांग लो एक मऊ केंदा है एक सरगी केंदा है और जैसे आमचू समाज ने बोले कोया समाज ने बोले वो मऊ रुके जाऊन बाती मुरंग तो फांदा रूढ़ी प्रताई साहब ने गुनिया पेरमा पुजारी उन बाती और अरे भी तो जो मैं परंपरा ओली से अनुकरण करुण बाती कर सोत नीति नीति के दुर्गा समाज में एक है सेमोर रूप हुआ उनके बोला उन बाती गाड़ून बाती पानी रखा तो रुक करते रहो तमचे समाज निम्बल करते रहो लेकिन ए बे नियम कुछ अलग जो गरीब का जो बहुत तकलीफ आ से उन तकलीफ के हम के खुद के सोचू पड़े दे समझू पड़े दे क्योंकि अमीर आदमी तो करे दे गरीब आदमी के तकलीफ आ से गरीब आदमी बोले उठा जाऊ दखलो जाले उन चो बेटा बोलू है बेटी बोलू है उसने शादी करू को हम के बोला उसने करा तो बाप माए बाप परेशान माए बाप परेशान उन बात ही लागा मांग सो सबकारता नहीं हो चाहे बैंकता नहीं हो मांग उन बात ही काम के कैसे हो बेटी छो जिंदगी बनो बेटा छो जिंदगी बनो सोच तो जरूर आए लेकिन तकलीफ तो माए बाप के आसे ऋणी नहीं रहे सोत ये कि लेखा लेखी की बोले समझू पड़े दे हम के गमरिया के बोल समझू पड़े दे बड़े बड़े ठेन ठान उन बात ही बड़े बड़े स्टेज लगान बात ही और उनको बाजा नाचते भी थी लगा हुआ कान पाट तो असन
1: डीजे
3: ये सब लगा सोत तो लोग के एक कार्यक्रम के लगभग आज के एवज में लगभग तो 1,00,000 रुपया खर्चा आसे तो उन तो उतली का जी आए लेकिन और बोले है सामान हम चु गमरिया हिसाब में कुकड़ी है बकरा है जो बोले कान पान जो छिलू है उन बल ज्यादा खर्चा लागे से ऐसा के ओली कहाँ ले ओली ये हम के बोले समझो समझ तो खाजे परे आंसू हम के समाज के सफाए सभी समाज के लोग के ये चीज के ध्यान देन बात ही कहीं ना कहीं एक नियम बनान बात ही समझा तो कोशिश कर ले अच्छा होती कायनु ऐसा हम विचार आसे
1: तो असन कौशिक दादा है तो अच्छा घटू बोले समांतर ये भी जो जोन जोन लेखा लेखी मन पीढ़ी है से तो जब तक ये मन नहीं समझो और आगे जो जोन रीति नीति रुसुम रहे उनके का है कि गांव ने भी जोन बोले पुराना लोग आसोत बाचला से तो उनमन के बोले का है कि उनमन के समझाऊ लाए पाड़े दे सांगुक लाए पड़े दे कि आगे आम चो जन रुसुम है असन डोली सपाए मिलून मिसुन कहीं बोल काम के करते रहू चाहे आर्थिक रूप ने हो नहीं तो कहीं दूसर सामाजिक रूप ने बोले हो तो उतलो बोले न कहीं आर्थिक बोझ भार नहीं पड़ते रहे जसन किए भी दखा दखी ने जसन को जैसे लोग दम आसे पैसा आसे तो उनसे उनके दुकुन बाती दूसर गरीब जुन पीला लेखा लेखी मनात उन्होंने बोले जसन तुम बल्लास की उसने आम चो बल बिया हो तो उसने बिया हो लेन का है कि कहाँ ले पैसा कोड़ी अनुवाद को गरीब माने बस दुई मतलब खीनिक भूई जमीन आसे जाल उनकी भी कुक लाए सके और कहाँ ले अनुआ है
2: कहाँ ले आए की उन कर्ज आवले बैंक कर्ज आवले
1: छूट तो आए थी तो देखा ऐसा ना कि आम चो कहावत बोले आसे कि घरे रांधा नहीं दुआरे भैंसा बांधा है दक ये चीज मन का है कि
2: माने बारी तौर पे ढोंग
1: ढोंग
2: माने एक ढोंग आ एक दिखावा
1: दिखावा है
2: माने आम वाले उन बराबरी करू बोल सौकार बराबरी आम को हर आदमी करू खूब है रही चो बराबरी भाई दक्तराय आप लोग घर चो स्थिति कथन है आम चो आगे चो पीढ़ी कथन रही आम चो दादी पीढ़ी कथन रही उन हिसाब ने दकुन बाती हम ये नहीं कि थोड़े परिवर्तन यही दे बिहा दान में
1: उन तो है
2: घर चो स्थिति दख पड़ू है आम चो परंपरा आम चो कवे रही कौन पीढ़ी ने आम चो जो चले थे उनके अपना धीरे धीरे परिवर्तन करा परिवर्तन हुआ पहनावा है खान पान में है पढ़ाई लिखाई नहीं आए लेकिन एकदम मत्ती वाले नहीं करता रहा है कि आम चो आर्थिक हानि हो घर घर बर्बाद हो क्योंकि आम चो एक तो विकास की ओर हम आगे बढ़ो से तेरह सौ नाम बड़ुक नहीं सकू क्या भी छुटू आ से कर जाके और बोल पीला जिला आस घर एक ले होले तो खर्चा कर ले होती है उंच पाठ कुत्ते आसे उंच और पाठ को तासे उन मन तो अधिक ये बनाओ उन बनाओ बोला आगे बढ़ दे लेकिन हम चो घर परिस्थिति की दकुन बाती ये शादी ब्याह होली अब मैं शादी ब्याह में दखे से गोटो गोटो फटा का इदान पेटिया सनान हो उन चो 10,000 आए 5,000 आए उनके आई ने जला दे उन्हीं खर्चा काम सगा गंगा खोआवा अच्छा खोला नाम दर दे उन फटाका फूट ली
1: गेली
2: तो मचो यही कहना है कि आमी जो भी खर्चे आमची जो नेक रीति है मरनी हो चाहे बिया दान हो कोनी बल कार्यक्रम हो आमी एकदम हवा ने उड़ तो कोशिश नहीं करू अब बलबीर भाई बोला कि
1: घरे रांदा नहीं हाँ, दुआरे
2: भैंसा घरे घरे नहीं रांदा
1: दुआरे
2: भैंसा बांधा माने आम चे एक प्रकार ढोंग है से
1: देखो कौशिक दादा आजकल मैं ये जो शादी बिया ने आए बोलूंगी इतना बोले बोले ने जो नशेली पदार्थ भी थी देख आजकल चले से देसी और विदेशी ये बोल सुना दे से और ये चुन बोल का है कि बोले ने झुगे देह पांच नुकसान तो है से ची संगे संग का है कि आर्थिक बोझ बोलो ऐसे तो ये चुका है तुम चुबाटले का है बोलो चाहे साझे चु प्रतिबंध
3: नहीं ये चुका जे सभी समाज प्रमुख मंच के मैं निवेदन करें से कि जो नीति है जो नियम है
1: नियम
3: उन खर तो का जे जरूरी है तो उनके उतले करा जितरो एक बोतल ने जो निपटता रहा है उतलो ने निपटावा और उनसे बाद उनके बोले जो बोल सियान सजन है नीति साहब ने एक एक चाक दरो पियो तार उनकी उताय खत्म करो तो उनने खाए हुए थे कि ये जो शहर छो बीती बाचे दे और गांव छो बीती बाचे दे हम छो शरीर बोले नुकसान नहीं होए और झगड़ा खोलार बोले नहीं हो तो इस तरीके से एक ही नियम के समझ ले तो बहुत अच्छा आशा पहले असनी करते रहो अरे बोल देखो कोई से जैसे ने दक्षिण दिशा में कांकेर क्षेत्र में अंदरूनी क्षेत्र में बोले हो उन बाटे जो नीति है उतले ही कर सुत
1: अच्छा
3: अरे भोपालपट्टनम वगैरह बोले आजकल जाऊन रहे मैं उतना बोले उन जो नीति है उतनी ही है उनकी जबरदस्ती नी मांगो थारू फालो नहीं कर सुत बस्तर में कुछ जगह तो चले से लेकिन हम छो बस्तर जिला हम छो आसपास में ये चीज ज्यादा चले से ये कि बंद ओथरी जरूरी है बंद कर ले ही ठीक आ से क्योंकि एक तो मामला रात जो है हम की दिन ले सब चीज निपटा ले काई नुकसान आ से
1: तो नुकसान नहीं है
3: रात ही जो मामला बोल ले तो आपराधिक मामला है कुछ न कुछ तो मतवार बोले उन बात ही छेड़छाड़ लेकी लेका के बोल करू छी तो ये बोले बने से ये कि बोले दिन में ये सब चीज होती जाले सब अच्छा होती है सन हम चू सोच लागे से मचे बोल सोच लागे से सब काज अच्छा होती समय ने बिया नहीं होत और साझ ले मामला खत्म कर तो जाओ
1: जाओ
3: लाफी दूरिया काज बोल अच्छा हो दे और गांव और काज बोल अच्छा हो दे दिन ने निपट लबी थी लाइट खर्चा बोल बाचे दे तो हर चीज ने बचता से लेकिन हम चे लोग तो रात के ही काय पता नहीं हर एक चीज बिया हो जतरा हो कई बोले बोल रात ही चीज बड़ा करूँगा ज्यादा तो ये चीज बोले नहीं होता रहा है सन हम जमाए छो विचारो लेने वो ही दे से और बोल लेने जैसे बिया से गोट है हमें ठीकू से नक्की बनवा सबने उसे हुन तो ने उन गोटे खोना रे साल भरने पूरा सड़े
1: सारे से
3: एक रुपया दे हो दो रुपया दे हो जितने यथा शक्ति है उनके पैसा दे उन दे हो तो उनके घर भी तक आज एक सुविधा बोलवा दे
1: देखा ये तो अच्छा गोट के सांगला सोमार कौशिक दादा जैसन की तुम्हें बल्ले दीन ने शादी भी आ भी थी बल्ले ने अगर सोच लेने तो खूब खर्चा बाचे से है कि नहीं
3: हाँ।
1: बोले लाइट वगैरह जोन बोले आए ये चुपल बाचे से जो नशा पानी जो ना ये बोले बाचे से और आगे जो देखा आम चो बोले ने समाज ने बोलू भी बिया ने लगिन होते आठ नौ बजे लगिन होते और ये भी तो सब सांझ बेरा हुए से आरु बिया लगिन होते आरु शाम के तीन चार बजे ले उनको होनो टेक तो बीती होते ज्यादा रात बोल नहीं होते सात आठ बजे ले पूरा खत्म होते तो ये बलगोट परंपरा आम छो कितलो नंगत परंपरा है और असन परंपरा मन के भूते जातो के बोले ने ये तो समाज का जे ही नुकसान है
3: आम छो समाज में गोटक एक शादी होते सबसे कम खर्चा उन्हें भी पूरा लुप्त होली कहाँ ले उदलिया पर आने थे दरुण आंतरे कोई बोल लेगा उनके मात्र कुछ नहीं कर एक कमरा ने डापून देते रहो पड़की डाप तो भी और उतरने उन बाटे डाप रहे लोग एक बोतल में एक टन कुकड़ा ने निपटते
1: रहो
3: तो इस सब ले खर्चा कम मतलब तो बिया होली मने होली पड़की डापला मने डापला तो ये बोले एक नियम रोली उनके तो ये बुलकला
2: अरे बे बिया मंडप ने बोले गोटो के दाई उंचबल गोटो खर्चा बोले आगे का है कि गांव पुजारी ये उन माती होम जोम करे कसा पानी चीचुन देते रहे उनके बेटा भी था चाहे बेटी भी था गोटो नोआ कपड़ा उनसे खांदे
1: डालते रहे
2: ये बे नोआ है आमी उन विधि विधान ने करूं उनसे बहुत बड़ा विधि विधान में है आम चु पुजारी जगह दूसर खाक दे उनसे मैं नाव नहीं धारे उन फल ना
3: सही
2: है नहीं एक दूसर लोग क्या लो उन आम जो लोग नो आए ना आम जो बाग नो आए ना सगा ना तो मंदिर है उन चु बिया ने उन चु खर्चा तो जानुक नहीं है बहुत बड़ा खर्चा है उन चो कई बरन चो है आप लोग के ये लागू आए उन लागू आए उन लागू आए उन लागू आए ये लागू आए हम उन खर्चा जो है ना दस ले धर उन बीस हजार तक जो है हम उन चो
1: अलग ले
2: उपरा खर्चा है उन ये बार सगा कोई मतलब नहीं आया सगा खुआ भी देख ले मोड़ा बांधे जा तो काम है तो ये भी आवल गोट कुत जुड़ ली साम परंपरा ने जो बोले आम चो भाई बंधु आसुद गांव चो जो बोल समाज हो गरीब आम आप लो जित लो बने थे उन हिसाब ने शादी कर लेने शायद आम का अच्छा लगती और आम की अच्छा बल होती
1: अच्छा होती
2: और आम ही आगे बल बढ़ सकते
1: तो देखा आज इतलो अच्छा गोड बात तो होली आम चो बाटले बल्ले ने आमी कसन ले बोलू खर्चा पानी ले बाचुकला सकू आम चो समाज के कसन ले जोड़न बाती रखा सकू और संगे संगे का है कि आम चो जो परंपरा है आम चो रीति नीति आए बल्ले ने कसन बाचुकला सके दे ये सब विचार तो कर लू तो अले आज इतलो मतलब आमी गोड बात कर लू विचार कर लू जनता के सुनन बाती उनमें कहीं ना कहीं असन सोच है दे विचार है दे समाज ने कहीं फर्क पड़े दे तो मंधर राम नाग दादा और सोमर राम कौशिक दादा इतलो अच्छा तुम चो विचार सुनुक मिरली जानुक मिरली समाज चो लोग बोले सुनला होती तो आल तुमके खूब खूब जुआर
2: जुआर।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम परिचर्चा। इस कार्यक्रम में आज का विषय था विवाह संस्कार की परंपरा। प्रतिभागी थे सुमारू राम कौशिक मंधर राम नाग संपादक थे बलबीर सिंह कच्छ। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: लीजिए सुनिए मधुराम और साथियों के गाए हल्बी गीत।
6: हाँ श्री राम।

अभी आप सुन रहे थे मधुराम और साथियों की गाय हल भी गीत। आकाशवाणी का ये चक्तलपुर केंद्र है। रात के 10:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम रजनीगंधा पुरानी फिल्मों से। इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए फिल्म खुदगर्ज से। आवाजें हैं मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की। इंदिवर और फारूक कासिर की लिखी इस गीत को सुरों में ढाला है राजेश रोशन ने।

अब सुनिए नाजिया हसन के स्वर में फिल्म कुर्बानी का गीत। नगमा निगार है इंदिवर और मौसिकार है बिद्दू।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा पुरानी फिल्मों से। कर्ज, इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में। गीत रचना है आनंद बख्शी के, तर्ज बनाए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अब सुनिए आनंद बख्शी का गीत लता मंगेशकर और अमित कुमार के स्वर में। धुन बनाए हैं आर डी बर्मन, फिल्म है लव स्टोरी।

रजनीगंधा पुरानी फिल्मों से। इस कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए इलियाया राजा के संगीत निर्देशन में, फिल्म सदमा का गीत। आवाज है सुरेश वटकर का, शब्द है गुलजार के।

अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा पुरानी फिल्मों से। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 11 बजने को है हिंदी व अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।